चारों तरफ देखो, इनमें भी कोई किसी की माँ है, कोई किसी की बहन है, कोई किसी का भाई है। इस शहर खामोशा में मिट्टी के ढेर के नीचे सब दबे पड़े हैं। मौत से किसको रस्तगारी है, आज इनकी तो कल हमारी बारी है। बेटे, इस फकीर की एक बात याद रखना, जिंदगी का अगर सही लुत्फ उठाना है ना, तो मौत से खेलो। सुख में हंसते हो तो दुख में कहकहे लगाओ, जिंदगी का अंदाज बदल जाएगा। बेटे, जिंदा है वो लोग जो मौत से टकराते हैं, मुर्दों से बदतर है वो लोग जो मौत से घबराते हैं। सुख को ठोकर मार, दुख को अपना। अरे सुख तो बेवफा है, चंद दिनों के लिए आता और चला जाता है, मगर दुख, दुख तो अपना साथी है, अपने साथ रहता है। पहुंच ले आंसू, पहुंच ले आंसू, दुख को अपना ले। अरे तकदीर तेरे कदमों में होगी और तू मुकद्दर का बादशाह होगा। हंस हंस हंस बेटा, हंस और हंस और हंस।

जी हाँ, जाने मन कहलाएगा हमको टाइटल सॉन्ग सुनाई है फिल्म मुकद्दर का सिकंदर से किशोर दाजी ने। नेकंतिन अख्तन से फंतक ये सुंदर सा पिक्चर है इसकी और फिल्म है। कुछ कह गए कुछ सह गए, कुछ कह गए कुछ सह गए, कुछ कहते कहते रह गए। मैं सही तुम गलत, मैं सही तुम गलत, ये खेल में न जाने कितने रिश्ते बहे।

रफ़ी साहब से हमने सुने फिल्म तकदीर से ये सुंदर सा गीत हमको सुना दे कि आकाश पे बैठा हुआ लिखता है वो तकदीर, अब वो तकदीर तो वो लिखते हैं पर बनाते हैं हम। जैसे हम कार्य करते हैं इस जीवन में वैसे ही हम अपना तकदीर बनाते हैं। फॉर द चे इमन पेन दूत फोर दाचे इमान पेन दूत पक ये अंफेल पपीर एंड फर क्रूकल ये हेत फोर दाचे इमान पेन दूत पक ये अंफेल पपीर एंड फर क्रूकल ये हेत गदान खुद प्रोबेर हेत फेल नु ग्लत ते स्ट्रेकन दैट इज नीट मोगलिक है हेत हार्ट फान मेंसन इज अस दिट फेल पपीर आज ये हेत eenmaal gekwetst heb, is het onwaarschijnlijk dat het weer zo wordt als daarvoor. Daarom, voordat je iemand slecht behandelt, denk goed na. Voordat je iemand slecht behandelt, denk goed na over wat je doet.

था घर से, सुनाई हमको किशोरदा जी ने कि ये जीवन है। हाँ सुनने वालों, यही तो है जीवन। कुछ अच्छे बातें हैं, ये है कि माना दुनिया बुरी है, माना दुनिया बुरी है, सब जगह धोखा है, लेकिन हम तो अच्छे बन सकते हैं, हमें किसने रोका है। और ये एक बात भी है कि चलती रहेगी दुनिया हमारे बगैर भी, साहेब चलती रहेगी दुनिया हमारे बगैर भी, एक तारे के टूट जाने से आसमान खाली नहीं होता।

फिल्म अलग अलग से निकाला गया है द नाइटिंगेल लता जी के आवाज में। जीवन की यही है कहानी। ज्ञान ज्ञान ज्ञान यानी कि कैनस, ज्ञान धन से उत्तम है क्योंकि धन के तुम्हें रक्षा करनी पड़ती है पर ज्ञान तुम्हारी रक्षा करती है। और एक बात और है, ये कि कलयुग है, कलयुग है साहेब, यहाँ झूठ का स्वीकार किया जाता है और सच्चे का शिकार किया जाता है।

कलम इम्तहान से सुना दी हमको, किशोरदा जी ने की हो रही रुक जाना नहीं तू कभी हार के। मैं भी कहती हूँ सुनने वालों की, रुक जाना नहीं तू कभी हार के। दूसरों को अपनी अच्छाई दिखाने की ज़रूरत नहीं है, दूसरों को अपनी अच्छाई दिखाने की ज़रूरत नहीं, खुद अच्छे रहो दूसरों को अपने आप दिख जाएगी। रुक जाना नहीं तू कभी हार के, ये गीत से मुझे ये दो शब्द भी याद आ जाता है कि चलने का नाम है जिंदगी और रुकने का नाम है मौत। जैसे बहता पानी में सूरत ऑफ अनवी सख रहते हैं और उसको जो हम इस्तेमाल करें भी तो हमारे जीवन के भी उन्नति, हमारे शरीर के भी उन्नति मिलते हैं, और जो तालाब में रहते हैं जो पानी जो नहीं बहते उसमें तो गंदगी आ जाता है। इसलिए ये दो चीज़ मुझे जीवन में बहुत अच्छा लगा और ये मेरी जीवन की एक सहारा बनी जो आज मैं हूँ। तो अच्छा लगता है, सोचती हूँ कहाँ यहाँ से आपको हम भी बतलाते हैं कि चलने का नाम है ज़िंदगी और रुकने का नाम मौत है। तो रुकना नहीं है बल्कि हमें आगे बढ़ना है।

से प्यार हुआ है अलका याग्निक और उदित नारायण जी की आवाज़ में हम मिलकर सुने सुने वालों की तुमसे बस प्यार हुआ है।

हम सब मिलकर सुने आशा भोसले जी की आवाज में, फिल्म का नाम ताल। इसमें संगीत दी है आर डे बर्मन साहब जी ने।

चोरिया चुराना ये दिल जो हम सपने सुने सुने वालों, और ये सुंदर सा गीत निकाला गया है कुली नंबर वन से। और हम देखें तो इसमें जो अपना गीत का आवाज जो गाए है अभिजीत और चंदना दीक्षित जी ने,

और यहाँ से हम मिलकर सुनेंगे कि इश्क बिना, हाँ जी इश्क बिना सुनेंगे हम, फिल्म ताल से निकाला गया है ये सुंदर सा गीत।

आर रहमान के साज और संगीत में जो सुनने वालों हमने सुने ये सुंदर सा गीत उदित नारायण और सपना मुखर्जी की आवाज़ में

लाइफ क्या है और आर्ट ऑफ लाइफ क्या, पार्थ और अर्थ। जिंदगी में मुश्किलों का आना, जिंदगी में मुश्किलों का आना पार्ट ऑफ लाइफ है, और उनमें से हंस कर बाहर आना आर्ट ऑफ लाइफ है। खुश रहने के मूल मंत्र सुनिए जी, जहाँ कदर नहीं वहाँ जाना नहीं चाहिए, जहाँ कदर नहीं वहाँ जाना नहीं चाहिए, जो पछता नहीं वो खाना नहीं चाहिए, जो सुनता नहीं उसे समझाना भी नहीं चाहिए, जो सत्य पर भी रूठे, जो सत्य बोलने पर भी रूठे तो उसे मनाना नहीं चाहिए, जीवन में तकलीफें आए तो घबराना नहीं चाहिए, मौसम की तरह जो दोस्त बदले उसको भी बनाना नहीं चाहिए।

ट्रेजेडी ऑफ लाइफ फिल्म सूर से निकाला गया है। महालक्ष्मी आयर से सुने वालों हमने सुने कि कभी शाम ढले तो दिल में आ जाना। जो बदल जाए वो प्यार कैसा, जो बदल जाए वो प्यार कैसा, जो छोड़ जाए वो साथ कैसा, जो बदल जाए वो प्यार कैसा, और जो छोड़ जाए वो साथ कैसा।

खामोशी बहुत कुछ कहती है, खामोशी बहुत कुछ कहती है, कान लगा कर नहीं दिल लगा कर सुनो। आईना के सामने खड़े होकर, आईना के सामने खड़े होकर खुद से माफ़ी मांगे, आईना के सामने खड़े होकर खुद से ही माफ़ी मांगे, सबसे ज़्यादा अपने ही दिल, सबसे ज़्यादा अपने ही दिल को दुखाया है औरों को खुश करते कर से। ठोकर नहीं खाएंगे जनाब तो कैसे जानोगे कि आप पत्थर के हो या शीशे का। जो बीत गया उसे जाने दो, जो बीत गया उसे जाने दो, आने वाला है, आने वाला है सुनहरा कल, बस उसे आने दो।

आप सुन रहे हैं फान हिंदुस्तानी रेडियो और यहाँ से हम सुनेंगे मिलकर फिल्म वीर जरा से निकाला गया ये सुंदर सा गीत कि मैं यहाँ हूँ।

अंदर ज़रा से जो सुंदर सा गीत निकल गया कि मैं यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ हूँ। अब देश मोए फ्रूख मेदाख कानी अब्सोल्यूट सेखन, एक दो हेत लेकर ओप मेन गमाक एन दैट माग, एन टेन स्लोटे एट इस योर दाग।

फिल्म ताल के टाइटल सॉन्ग हमने सुने अलका याग्निक उदित नारायण जी के आवाज में। सो बी हैप्पी दैट्स व्हेन अदर लुक एट यू, बी हैप्पी व्हेन दैट अदर लुक एट यू, दे कम आल्सो हैप्पी टू।

में आए हो तो जीना, तो जीने की हुनर रखना हमें ज़रूर चाहिए, कि ज़माने में आए हो तो जीने का हुनर रखना।

चीके की आवाज में हम सब मिलकर सुने सुने वालों, और फिल्म का नाम है जन्नत। फिल्म जन्नत से ये सुंदर सा गीत निकाला गया है। और ओ, कुछ सोचूं तो तेरा ही ख्याल आता है, कुछ सोचूं तो तेरा ही ख्याल आता है, कुछ बोलूं तो तेरा ही नाम आता है। कैसे छुपाऊं अपने दिल के बात को, कैसे छुपाऊं अपने दिल के बात को, तेरी तो हर बात पर मुझे तो प्यार आता है।

से एक बार फिर हमने साथ में मिलकर सुने के आवाज़ में फिल्म का नाम भूल भुलैया से जो हमने यहाँ साथ मिलकर सुने। तमन्ना है मेरी मन की, तमन्ना है मेरी मन की कि हर पल साथ तुम्हारा हो, जितने भी सांस चले मेरी जान, जितने भी सांस चले मेरी, हर सांस पर नाम तुम्हारा हो। दिल से प्यार करते हैं, दिल से प्यार करते हैं, दिल से निभाएंगे जब तक जिंदगी है, जब तक जिंदगी है मेरी जान, तुमको ही चाहेंगे।

इस बार हमने सुने अरिजीत सिंह जी के आवाज में जालिमा। दिल कहता है चुरा लो तुझे तकदीर से, दिल कहता है कि चुरा लो तुझे तकदीर से, क्योंकि दिल नहीं भरता है तेरी तस्वीर से। मोहब्बत का कोई रंग नहीं होता, मोहब्बत का कोई रंग नहीं होता, फिर भी वो रंगीन है। प्यार का कोई चेहरा नहीं होता, प्यार का कोई चेहरा नहीं होता, फिर भी वो हसीन है।

0: साथ में मिलकर सुने को सोनू निगम और श्रिया घोषाल के साथ में कि मैं अगर कह दूं तुम हो, हमारी आंखों में तुम हो, दिल में तुम्हारी तस्वीर है, तुम्हारे लिए दिल तो क्या, तुम्हारे लिए दिल तो क्या, जान भी हाजिर है। कितना प्यार करते हैं हम तुम्हें, कितना प्यार करते हैं हम तुमसे, ये कहा नहीं जाता, ये कहा नहीं जाता, बस इतना जानते हैं मेरी जान, बस इतना जानते हैं मेरी जान कि तुम्हारे बिना अब रहा नहीं जाता।
1: लत मोहे ऐसी लागी

तेरी दीवानी हम सब मिलकर सुने कैलाश खैर के आवाज़ में। तुम पूछ लेना सुबह से, तुम पूछ लेना सुबह से, यकीन ना हो तो पूछ लेना शाम से। ये मेरा दिल धड़कता है, ये मेरा दिल धड़कता है तो सिर्फ तुम्हारे नाम से।

इस बार हम साथ में मिलकर सुने अलका याग्निक जी से और कुमार शानू जो साथ में मिलकर हमको ये सुंदर सा गीत सुनाए। हमारी गलतियों से कभी टूट न जाना, हमारी गलतियों से कभी टूट न जाना, हमारी शरारत से रूठ न जाना, हमारी शरारत से रूठ न जाना। तुम्हारी चाहत ही हमारी ज़िंदगी है, तुम्हारी चाहत ही हमारी ज़िंदगी है, ज़िंदगी में कभी हमें भूल ना जाना।

राजकुमार, राजकुमार एक मशहूर एक्टर था दोस्तों, और राजकुमार का लव स्टोरी मीना कुमारी के साथ कैसे रहा, क्यों रहा, काहे के रहा दोस्तों। राजकुमार का पैदाइश हुआ 8 अक्टूबर 1927 को, मीना कुमारी का पैदाइश हुआ 9 अक्टूबर 1933 तक में। किंग ऑफ डायलॉग फिल्मों में राजकुमार का कवि, जी हाँ दोस्तों, राजकुमार का काफ़ी नाम रहा है। डायलॉग से बहुत दिल चुराया है, आपको याद है, आपको याद है ये डायलॉग, आपके पाँव बड़ी हसीन है, आपके पाँव बड़ी हसीन है, इसे ज़मीन पर मत उतारना, इसे ज़मीन पर मत उतारना, नहीं तो माली हो जाएगा। ये बात, ये डायलॉग है फिल्म पकीसा का, और राजकुमार मीना कुमारी से कहा था ये डायलॉग के बाद। राजकुमार मीना कुमारी के देखते रहा दोस्तों, और वहाँ पर जो फिल्म मेकर्स था वो सभी सोचता था क्या हो रहा है यहाँ पर, इतना प्यार राजकुमार को हो गया था मीना कुमारी के साथ। राजकुमार दिल एक मंदिर में भी काम किया मीना कुमारी साथ, और उसमें होप रॉल था राजेंद्र कुमार का, उसी फिल्म का सॉन्ग दिल एक मंदिर है।

King of Dialogue, राजकुमार। राजकुमार को मीना कुमारी से इतना प्यार हो गया था कि वो मीना कुमारी के साथ फिल्मों में काम करते वक्त अपना डायलॉग भूल जाते थे, सिर्फ उनका चेहरा ताकते रहते थे। जी हाँ दोस्तों, इस तरह से राजकुमार को प्यार मीना कुमारी से हो गया था। जब फिल्म पकीसा का तैयार हुआ, तैयारी का नाम लिया गया, और तैयार करते समय मीना कुमारी का पति कमल अमरोही ये फिल्म को बनाया, तो वो धर्मेंद्रा को साइन किया था इस फिल्म में काम करने को। लेकिन धर्मेंद्रा और मीना कुमारी का प्यार का चर्चा, जी हाँ दोस्तों, उसका प्यार का चर्चा बाहर फैल गया था चारों ओर। तो फिल्म मेकर कमल अमरोही ने सोचा कि मैं धर्मेंद्रा को नहीं लूँगा, राजकुमार को ले लिया धर्मेंद्रा के जगह पर। फिर भी क्या हुआ दोस्तों, अब जानते, जहाँ प्यार होता है वहाँ कोई कुछ नहीं कर सकते, चाहे पहाड़ बीचे में आ जाते हैं उन्हें नहीं रोक सकते हैं। कहते हैं जब प्यार किया तो डरना क्या। फिल्म पकीसा का एक सॉन्ग।

फिल्म पकीसा का फिल्म मेकर कमल अमरोही जो मीना कुमारी का पति थे वो धर्मेंद्रा को निकाल कर और राजकुमार को काम पे ले लिया। फिर भी राजकुमार दीवाना हो गया मीना कुमारी से या मीना कुमारी के ऊपर, तो कमल को बहुत से जलन हो गया। उसके बाद फिल्म पकीसा के बाद कमल ने राजकुमार को फिल्मों में काम नहीं दिया। राजकुमार दोस्तों, राजकुमार मीना कुमारी के साथ कई फिल्मों में काम किया। आपको याद है दिल अपना प्रीत पराया, इस फिल्म में उसी तरह के स्टोरी था जैसे कि फिल्म पकीसा का। फिल्म काजल, राज ने मीना कुमारी के साथ इस फिल्म में काम किया। और किस क्यों काम किया कि इसलिए कि उसके साथ फिल्मों में आप जानते शूटिंग के समय पर प्यार मोहब्बत करने के लिए। फिर भी राजकुमार और मीना कुमारी का फिल्म दिल एक मंजिल का एक गीत है, मैं हम तेरे प्यार में सारा आलम खो बैठे।

राजकुमार, वैसे राजकुमार एक रोमांटिक हीरो नहीं थे, फिर भी उन्हें मीना कुमारी से बहुत प्यार हो गया था। मीना कुमारी शादीशुदा और राजकुमार भी शादीशुदा। राजकुमार को चार लड़के थे, दो बेटा और दो बेटी, फिर भी ये दोनों में आपस में प्यार मोहब्बत थे। रुक जा रात, ठहर जा चंदा।

राजकुमार और मीना कुमारी के लव स्टोरी। वैसे राजकुमार से बहुत लोगों से प्रेम नहीं थे, इसलिए कि राजकुमार हमेशा बड़ा बात कहते थे। पुलिस इंस्पेक्टर से फिल्म एक्टर बन गया और किंग ऑफ डायलॉग, जो जिस तरह से राजकुमार ने डायलॉग कहते थे, आज तक फिल्मों में बॉलीवुड के संसार में आज तक किसी ने उस तरह से डायलॉग नहीं कहता है। अजीब दास्ता है ये, कहाँ शुरू कहाँ खत्म।

दोस्तों मीना कुमारी का मृत्यु 31 मार्च 1962 में हुआ। और जब राजकुमार को पता लगा, जब उन्हें खबर मिला कि उन्हें ब्लड कैंसर है, तो राज साहब ने राजकुमार ने कहा, राजकुमार हूँ मैं, मेरा नाम बड़ा है, इसलिए मुझे छोटी सी बीमारी नहीं हो सकते है, मैं जब मरूँगा तो छोटी सी बीमारी से नहीं मरूँगा। दुख की बात यह है कि 12 अप्रैल 2006 में राजकुमार का मृत्यु हो गया।

काफी का हैप्पी स्टेशन फार हॉर्न हिंदुस्तानी रेडियो और आप सुन रहे सितारों का सफर जो अभी समाप्त हुआ। सिंटी सी शर्माई सी किस दुनिया से तुम आए हो, किशोरदा के आवाज में आप ये गीत को सुनेंगे। उन दिनों में जब ये फिल्म थिएटर दपार में पेश हुआ तो मैं सोचता हूँ लगभग 16 या 17 साल के मैं था और ये फिल्म को मैं 2 या 3 बार देखा दोस्तों, स्पेशल इस गीत के लिए, सॉन्ग के लिए। बहुत अच्छा गीत है किशोरदा का, सिंती सी शर्माई सी किसी दुनिया से तुम आई हो।

कल होना हो, कल होना हो, आज तो है, आज होना हो, ये पल तो है, ये पल होना हो, हम तो है, हम होना हो, हमारा दोस्ती तो है। सुनंदा और आशा परेख का एक फिल्म चिराग, निहरी नीह शस्त्र में जो फिल्म रिलीज हुआ, इसी फिल्म का एक सॉन्ग है पद्मश्री मोहम्मद रफी की आवाज़ में, तेरे आँखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है।

फरमा श्री मोहम्मद रफी की आवाज में, तेरे आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। एक गीत और है दोस्तों, तुम इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है, आप तो ऐसे न थे, फिल्म का नाम है।

आप ही का हैप्पी स्टेशन फार होम हिंदुस्तानी रेडियो और आप सुन रहे प्रोग्राम गीतों का संगम। दिल मेरी ना सुने, कैसा दिल है ये दोस्तों।

ये कैसी बात है, जब दिल मेरा नहीं सुनता तो मैं दिल को क्या करूं। कभी कभी हो जाता है कि दिल बस में नहीं रहता है। दोस्तों, रब मिल गया फिल्म का सॉन्ग है, मोहम्मद इरफान।

हम अकेले इसलिए रहते हैं, हम अकेले इसलिए रहते हैं क्योंकि हमको सबकी तरह झूठ बोलकर अच्छा बनने का शौक नहीं।

दिल सच्चा और चेहरा झूठा, दोस्तों ये तो एक फिल्म था ना, और आप जानते हैं हकीकत में कभी कभी चेहरा अच्छा होता है, दिल झूठा होता है। फिर भी ये फिल्म सच्चा झूठा जो है, ये फिल्म मनमोहन देसाई ने तैयार किया जब तो शशि कपूर को लिया इस फिल्म में काम करने को। लेकिन शशि कपूर ने पूछा मेरा साथ किसने मेरे साथ एक फिल्म में काम करेगा, तो महेंद्र देसाई ने कहा मुमताज आपके साथ इस फिल्म में काम करेगा। तो शशि कपूर ने कहा नहीं नहीं, दूसर एक्ट्रेस को ले लेना तो मैं इस फिल्म में काम करूँगा। तो डायरेक्टर मनमोहन देसाई ने कहा देखो शशि साहब, मैं दूसर डायरेक्टर बदल सकता हूँ, प्रोड्यूसर बदल सकता हूँ, गायक बदल सकता हूँ, मगर मैं मुमताज़ को नहीं बदलूँगा। तो जाकर रजेश खन्ना को लिया इस फिल्म में काम करने को दोस्तों, और रजेश खन्ना और मुमताज इस फिल्म बनाया और ये फिल्म एक हिट हुआ, एक जुबली हिट हुआ। तो शशि कपूर जब देखा कि ये फिल्म एक जुबली हिट हुआ तो शर्मिंदा हो गया और आगे चलकर फिर शशि कपूर मुमताज के साथ काम किया। इसी फिल्म का एक सॉन्ग सच्चा झूठा।

जीएस खन्ना और मुमताज का हिट फिल्म सच्चा झूठा का सॉन्ग अभी आपने किशोरदा की आवाज में सुना। हर एक काम जो आपको रेडियो को से कराना है आप कॉन्टेक्ट कीजिए हमारे दफ्तर से। नील सीफन तक 3 5 3 2 फिर सीफ पर आपको तार करना है।

ये लंबा लंबा गोरा गोरा अक्षय कुमार है दोस्तों, फिल्म रुस्तम का सॉन्ग जिसमें अक्षय कुमार ने काम किया, अतीफ असलम और साथियों की आवाज़ में भी आपने सुना। फाहू हिंदुस्तान रेडियो का प्रोग्राम आप सुन रहे, प्रोग्राम गीतों का संगम जारी है दोस्तों, राजन के साथ। पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर दे, झूठा ही सही, क्या बात है दोस्तों, वो भी सही बात है, चाहे झूठे झूठे फिर भी प्यार कीजिए। फिल्म चौनी मेरा नाम का सॉन्ग है जिसमें देवानंद हेमा मालिनी काम किया दोस्तों। फिल्म हरे रामा हरे कृष्णा जब बना तो उस फिल्म में देवा और हेमा मालिनी भी था। इस फिल्म के बाद इन दोनों में प्यार हो गया, इन दोनों में प्यार हो गया और ताजमहल होटल में ये दोनों बैठ कर कुछ खा पी रहा था, तो वहाँ पर जाकर राज कपूर पहुँचा दोस्तों। राज कपूर थोड़ा से शराब पिया था और हेमा मालिनी के गाल छूने लगा वगैरह वगैरह, तो देवानंद गुस्से में आकर और हेमा को वहाँ पर छोड़कर और चला गया। ये भी होता रहता है।

शह झूठा ही सही फिर भी प्यार कीजिए, जिसका मुझे था इंतजार, फिल्म दोन का सम है जिसमें अमिताभ और सिन्नत अमन ने काम किया। दोस्तों फिल्म जिंदगी जिंदगी अपने पहले फिल्म जिंदगी जिंदगी के फ्लॉप होने के बाद 12 लाख कर्ज में डूबे हुए प्रोड्यूसर निर्मल ईरानी को सिन्नत अमन और अमिताभ बच्चन और चंद्र भारत ये सभी ने एक नई फिल्म बनाने को साथ देने का मौका दिया। और कहानी इस फिल्म में कोई पैसा नहीं लेंगे, तो ये तीनों ने कहा कि ये कोई पैसा नहीं लेंगे अगर ईरानी जी एक नई फिल्म तैयार करेगा। अपने दोस्तों के सलाह पे निर्मल जी ने फिल्म बनाने के तैयार हो गए। अमिताभ बच्चन और सिन्नत अमन ये दोनों ने कहा कि फिल्म में हम लोग काम करेंगे और एक चीज पैसा नहीं लेंगे। तो उसी समय में सालिम और जीवत ये दोनों के पास एक कहानी था, एक फिल्म था जिसने खरीदने के लिए कोई तैयार नहीं होता था। तो ये कहानी कुछ दूसर कहानी नहीं था, ये था हिट फिल्म डॉन। तो ये फिल्म ईरानी जी ने ले लिया और ये फिल्म जोरदार से तला दोस्तों, और उसी साल का तीसरा हिट फिल्म निकला। ये फिल्म दोन जो था ये उस साल का तीसरी हिट फिल्म मिला और ये फिल्म 7 करोड़ 20 लाख रुपए कमाई थी। तो आप समझ गए होंगे कि ये प्रोड्यूसर कितना खुश होगा उस समय पर अमिताभ बच्चन और सिन्नत अमन दोनों के ऊपर। तो इसी तरह से ये फिल्म का गीत जो मैं पेश करता हूँ इस फिल्म तैयार हुआ है।

दोस्तों, आग, पानी और विश्वास जंगल में साथ चल रहे थे। आग ने कहा, अगर तुम मुझे खो देंगे तो धुएं की तलाश करना, क्योंकि जहां धुआं है वहां आग है। पानी ने कहा, अगर तुम मुझे भी खो देंगे तो नमी, नमी माने फोख्त की तलाश करना, क्योंकि जहां नमी यानि फोख्त है वहां पानी है। मित्रों, तब विश्वास ने कहा कि अगर मैं खो जाऊं तो तलाश मत करना, तलाश मत करना, क्योंकि एक बार मुझे खो दोगे तो फिर मुझे कभी नहीं पाओगे। तो मित्रों, इसका निचोड़ है कि विश्वास कभी के ना तोड़ना, धोखा नहीं देना, नहीं देना बहुत बुरी बात है।

हम संसार के साथ कभी रह ही नहीं सकते और परमात्मा से अलग कभी हो ही नहीं सकते।

भाई बहनों, दूसरों की भलाई करना कोई कर्तव्य नहीं है, ये एक खुशी की बात है। ये आपके स्वयं के स्वास्थ्य और प्रसन्नता को बढ़ाता है, जिससे आप सकारात्मक शक्ति के बिना अनुभव करते हैं मित्रों, और दूसरों के लिए कई अच्छे काम करते रहना चाहते हैं।

0: भाई बहनों, हो सकता है कि आप कई चीज़ों में परफेक्ट ना हो, लेकिन आपके अपने छोटे छोटे तरीकों से खास बने बिना कई चीज़ों परफेक्ट नहीं हो सकती। इसीलिए सलाह दी जाती है कि पहले ये सोचे कि आप क्या करना और कहना चाहते हैं, जो आपको चरित्र और भविष्य को निर्धारित करता है। मित्रों, कृपया अपने और दूसरों के हित में इसे ध्यान में रखें।
1: धनी लोग दूसरे को नौकर बनाते हैं, पर संत लोग दूसरों को भी संत ही बनाते हैं।

जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले हम सभी को राम राम करते ही नमस्कार आदाब और सत्यकाल हो। मैं हूँ आपके खिदमत में अनिल सर, जो आज का प्रोग्राम हम आप लोग के करते हैं, कुछ भजन कार्यक्रम हम आप लोग के करेंगे दोस्तों। और सभी को हमारा राम राम, जहाँ तक हमारा आवाज़ पहुँचे, हमारा प्यार भरा दुलार पहुँचे, नमस्कार पहुँचे, अदा पहुँचे, हर एक को हमारा दुआ पहुँचे, सलाम पहुँचे और राम राम नमस्कार। पूरा टीम के तरफ से, द लव फाउन हिंदुस्तानी रेडियो की तरफ से हर एक को राम राम नमस्कार। आज देखा जाए तो भजन का प्रोग्राम है, हम कुछ भजन प्रोग्राम करेंगे। आधा घंटा मैं लेट हूँ और हम भजन करेंगे। एक घंटा का प्रोग्राम है भजन, कुछ शिव मंत्र हम आप लोग के सुनाने वाले हैं और हर एक को एक बार फिर से हमारा नमस्कार हो। हम ज़्यादा वक्त नहीं लेंगे प्यारे दोस्तों, ये भी कहना चाहता हूँ। जो लोग इस वक्त अपने नौकरी पे जा रहे हैं, अपने काम करने के लिए, हर एक को बचा के जाना चाहिए, संभल के जाना चाहिए। जिस घर में दुख है वहाँ पे हम शामिल है, जहाँ सुख है वहाँ भी हम शामिल है, यही हम आप लोग के कह सकते हैं। और हम प्रोग्राम को चलाएंगे, कुछ भजन, कुछ शिव मंत्र हम आप मिल के सुनते हैं। शिव मंत्र

नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय। काफी लोग हैं जो आज पूजा कर रहे हैं, भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं या कुछ फूल अर्पण कर रहे हैं। आज भी शिवा का दिन है। जो जो लोग शिवा के याद करते हैं, हर के लिए ये मैंने आप लोग की सुनाया है, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हम चलाएंगे एक दो शिवा के कुछ भजन है जो आप लोग के मैं सुनाऊंगा। बोल मत जाना, मैं हूं आपकी खिदमत में अनिल सारजू, जो कुछ देर सिर्फ शिवा गणेशा और इनका भजन मैं आप लोग के सुनाऊंगा। और हर एक को शुभ दिन हो और शुभ सुबह हो। हर एक का दिन भगवान ऐसे करे कि आज काफी अच्छा दिन आप लोग के हो। ठीक है दोस्तों, हम चलाते हैं और चलते हैं।

जी हाँ दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे अनुराधा पौडवाल की आवाज में शिव जी का कुछ भजन है जो हम आप लोग के सुनाना चाहते हैं। अभी क्या भजन आपने सुने हैं, जो भी आज इस वक्त अपना पूजा पे ही अपना हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं, फूल को अर्पण करते हैं, हर एक के लिए ये सब भजन हम चलाते हैं। और एक शुभ सुबह हो, शुभ दिन हो, यही मैं कह रहा हूँ। और पूरा टीम की तरफ से, फॉर्म होने हिंदुस्तानी रेडियो की तरफ से, हम चलते ही ओम नमः शिवाय।

ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय। हम चलते ही ओम जय शिवा ओमकार।

कार्यक्रम है और हम आप लोग के मिल के सुनेंगे कुछ शिवा के भजन हैं और कुछ अभी हम गणेश के एक दो भजन चलाएंगे। चलो हम सब मिलके कुछ भजन करते हैं, जो भी अपना पूजा पे है या अपना फूल अर्पण कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, हर एक पूजा करने वाले के लिए इस भजन है।

हर हर हर ओम महादेव, क्या इसमें क्या ताकत है, भगवान में क्या ताकत है। मैं ये मांगना चाहता हूँ भगवान अपना पूरा टीम की तरफ से, फाउन हिंदुस्तानी रेडियो की तरफ से, हर एक घर का दुख दुख करना, हर एक घर की जो बीमारी है दुख करना, इस दुनिया में जो हो रहा है उसे बचा के रखना मालिक, हर एक के दुख दूर करना, तंदुरुस्ती दे, ज्ञान दे, बुद्धि दे, शक्ति दे के लोग अपना चीज कर सकते हैं और हर एक बीमारी से बचाइए भगवान। जो भी कुछ करना चाहता है हर एक चीज पूरा कीजिए, आप ही है, आप तो है दुनिया का सबसे बड़ा, दुनिया के रखवाला आप ही है, शिवा ब्रह्मा विष्णु महेश आप ही लोग है जो इस दुनिया के चला रहे रचा रहे हैं, जैसे चाहते ही वैसे आप रचा रहे हैं, दुनिया को बना रहे हैं और हर एक के घर घर के जो प्रॉब्लम है उसे दुख करना सॉल्व करना मालिक आप ही है, यही मांगता हूँ। हर एक बीमारी से बचाइए। हम आप लोग के लिए चलते ही गणेश के मंत्रा है, विष्णु का मंत्रा है, लक्ष्मी का मंत्रा है, देखा जाए शिव मंत्रा है, दुर्गा मंत्रा है, हनुमान का मंत्रा है, यही सब है जो दुनिया में दुनिया चलाते हैं, इससे बड़ा और कोई नहीं है, इन सबसे बड़ा दुनिया में कोई नहीं है, यही है जो दुनिया चला रहा है। हम हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं मालिक आपसे हर एक को बचा के रखना, संभाल के रखना, इंसान की जिंदगी बहुत गिनती है मालिक, बचा के रखना, हर एक बीमारी से बचा के रखना।

जी हाँ दोस्तों, ये था गणेश का मंत्र। हम सब अंदाज नहीं लगा सकते ही कि इसमें कितना ताकत है। बहुत ही ताकत है, बहुत ही ताकत है। ये मंत्र को हर एक को जानना चाहिए। हमारा हिंदू भाइयों जो है इसे जानना चाहिए। इसमें वो ताकत है जो हम कह नहीं सकते हैं। चलो दोस्तों, हमें चलते हैं हरिओम शरण की तरफ।

ओ दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया हरिओम शरण की आवाज। अभी आप सुन रहे थे, हम आप लोग कले चलते विष्णु मंत्र से। इस पे क्या ताकत है हम सब मिलकर सुनते हैं। मैं हूँ आपकी खिदमत में अनिल सारजू।

सच बात है तेरा लीला हमेशा न्यारी रहेगी। ये था ब्रह्मा विष्णु महेश, और जैसे आपने सुना इस भजन को, जो सुन रहा है वो समझ भी रहा है, यही सब है जो दुनिया चलाने वाला है। दुनिया हम नहीं चलाते हैं, दुनिया ये लोग चलाते हैं, और इससे बड़ा और कोई नहीं है। हमें मानना चाहिए कि यही है दुनिया के रखवाले। हम सदा अपने हाथ जोड़ के इनके पैर पकड़

हमारे प्यारे सुनने वाले भी आप सुन रहे थे हरि ओम चरण की आवाज। दिन भर में एक बार भगवान का नाम लीजिए, लीजिए भाई हमारे हिंदू भाई और बहनों, एक बार लेना चाहिए, 10 बार नहीं लेना चाहिए। एक बार अगर आप अपना दिन में अपन दिन एक बार ले लेना तो भी भगवान आपको सुनेगा। इस वक्त वही काम आएगा, भगवान काम आएगा हमारा। ठीक है दोस्तों, भजन के प्रोग्राम देखा जाए तो एक दो गाने के बाद यहाँ से भजन के प्रोग्राम ख़त्म हो जाएंगे। उसके बाद हम अपना हिले मिले जुले गीत आप लोग के जरूर सुनाऊंगा। मैं हूँ अनिल सरजू प्रोग्राम में, और आपको हम ज़रूर ले चलेंगे

जा मेरी तौबा, पर्दे में रहने दो पर्दा ना उठा लो। मूवी सिकंदर निगमदीन अख्तर सस्त का, जो इसका जो म्यूजिक बजाया गया है शंकर जय किशन और हसरत जयपुरी का, जो हाथ है कलम जो से लिखा गया है वो हसरत जयपुरी है। ठीक है दोस्तों, मैं अगले प्रोग्राम को, अगले गाने को मैंने चुन पे रख चुका हूँ, दम मर दम। चलो हरे रामा हरे कृष्णा। जीनातमन जीनातमन ने काम किया है देव अनंत जीनातमन और आशा भोसले की आवाज से दोस्तों। और देखा जाए ये भी आनंद बख्शी का लिखा हुआ गाना है और म्यूजिक सजाया है एरदे बिरमन। चलो मिलके सुनते हैं एवर ग्रीन लव फ्रॉम हिंदुस्तानी रेडियो से।

दोस्तों दम मारो दम, अभी आप सुन रहे थे दम मारो दम, और हम आपको ले जाते हैं इस वक्त रंबा हो शंबा हो। चलो हम सब सुनते हैं मूवी अरमान, और हम मिलके इसे सुनेंगे दोस्तों। चलो देखते हैं प्रोग्राम में क्या क्या नहीं है।

जी हाँ, रंबा हो शंबा हो मूवी अरमान उषा उत्तम पपिलहरी और इंदिवार आप सुन रहे थे दोस्तों। चलो ज़्यादा वक्त नहीं लेंगे क्योंकि यहाँ याद आ रहा है, देखा जाए तो पपिलहरी का ये डांस नंबर है, याद आ रहा है पपिलहरी है डिस्को डांसर का ये जो गाना है और लायरिक से अनजान जो इस हाथ चलाया है और म्यूजिक पपिलहरी का है। चलो हम आप लोग सुनाते ही डिस्को डांसर और मिथुन चक्रवर्ती ने इसमें काम किया है।

जाए दोस्तों, पप्पी लहरी की आवाज मूवी डिस्को डांसर, इसमें काम किया है मिथुन चक्रवर्ती, याद आ रहा है। चलो हम ले चलते हैं दिलर मेहंदी की तरफ, और देखा जाए तो बल्ले बल्ले है, बल्ले बल्ले चले, बल्ले बल्ले सब सुनते हैं। सुखवार है, वीकेंड आ गए है, रेड पुस हो या ब्लैक पुस हो, उसके तफरा पर रखिए, एक बॉल मारिए, डोसा पकाइए, खाइए और कुछ नाच गाना भी कीजिए, क्योंकि वीकेंड थे दोस्तों। चलो मिलके सुनते हैं दिलर मेहंदी की।

जी हाँ दोस्तों, हो जाए तो बल्ले बल्ले दिलर मेहंदी का आवाज अभी आप सुन रहे थे। हम चलेंगे बोले तारा रा रा रा रा रा रा। चलो सुन के देखे, देखते ही मिलके हम आप लोगों को सुनाते हैं। देखा जाए तो बोले तारा रा रा रा रा भी मैंने गाने को देखा है और यहाँ है वो गाना, हम आपको सुनाते हैं बोले तारा रा रा रा। क्या हुआ यार, देखा जाए तो कुछ गड़बड़ हो चुका है इसमें, देखा जाए इसमें तो है कुछ और। हम इस गाने को रखते हैं, थोड़ा सा कुछ गड़बड़ हो चुका है इसमें।

जी हाँ दोस्तों, जाने जा ओ मेरी जाने जा इस दे बिरमन। जी हाँ दोस्तों, चलो हम घर की तरफ देखते ही तो क्वार्ट फोर फिर है, इसका मतलब है हम दो गाने और चलाएंगे, उसके बाद न्यूज़ बयाम चलेंगे और हमारा कोलेगा, मैं नहीं जानता हूँ कौन सा कोलेगा, लेकिन एक ऐसा कोलेगा फिर से ले लेगा। ठीक है दोस्तों, हम चलते हैं पढ़ते हैं आगे और बोलो तारा रा रा दिलर मेहंदी, पंजाबी गाना है दोस्तों।

अरे बोलो तारा रा रा रा, दिलर मेहंदी को भी आप सुन रहे थे? चलो हम चलते हैं, आप जैसा कोई मेरे जिंदगी में आए तो क्या बन जाए।

दोस्तों, हर एक को हम यहाँ से राम राम कहते ही अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकातुह हो और खुदा हाफिज हो। हर एक को जुम्मा मुबारक हो। हर एक जो हमारा साथ दिया है हम उनको राम राम नमस्कार कहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग प्रोग्राम को सुने हैं, पसंद भी करे हैं। काफ़ी लोग हैं जिसका फरमाइश से मैं दिन तक के ज़रूर सुनाऊँगा। यहाँ से हम जरूर विदाई लेंगे। दिन तक के मंगलवार को हम आपके साथ ज़रूर रहेंगे। यहाँ से हम न्यूज़ रखते हैं, कुछ बयान है, उसके बाद हमारा प्रोग्राम द्वारका ले लेगा राजन द्वारका हमारा कुलेखा जो प्रोग्राम को आगे ले जाएंगे। तो तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए जाने के लिए। राम राम नमस्कार और खुदा हाफिज़ हो।

जहाँ दोस्तों बोल मेरी तकदीर में क्या है, मेरे हम सफर अब तो बता, मूवी हरियाली और रास्ता नई खतीन तो शस्त्र का, जिसपे मनोज कुमार माला जिले ने काम किया है, शंकर जय किशन का म्यूजिक है। चलो हम ले चलते हैं एक बार फिर से हरियाली और रास्ता से निकाला हुआ एक गीत है, एक गाना है जो लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज़ है, और देखा जाए शंकर जय किशन का म्यूजिक है, लाख तारे आसमान पे।

जी हाँ दोस्तों, दिल मेरा चुपचाप जला, हरियाली और रास्ता, नेगेटिव ट्विन सिस्टर का फिल्म है मूवी। मनोज कुमार माला जीना ने इसमें काम किया था। अभी आप सुन रहे थे मुकेश और लता का आवाज। हमने चलते ही एक बार फिर से हरियाली और रास्ता का बोले, कहीं कहीं पे राजा और रानी भी रहता है ना, तो चलो राजा और रानी के बारे में हमको सुनाते हैं। और हरियाली और रास्ता का निकाला हुआ गाना है

जहाँ दोस्तों एक बार मैंने फिल्म से चला दिया था हरियाली और रास्ता का मुझे बहुत पसंद है ये गाना। हम सोचते हैं आगे में आप लोग के भी पसंद है। तो ठीक है, एक था राजा एक था रानी।

जा दोस्तों बोले नाव तो खो गया रह गया पानी। फिल्म हरियाली और रास्ता से भी आप सुन रहे थे, एक था राजा एक था रानी, नेकर जिन टू इंसेस्ट का है, मनोज कुमार माला सिन्हा ने काम किया है। चलो हमें चलते हैं दोस्तों हरियाली और रास्ता का नेकर जिन टू इंसेस्ट फिर से एक बार देखा जाए तो कौन सा गीत मैंने रखा है यहाँ पे, अल्लाह जाने क्या होगा आगे। शंकर जय किशन का म्यूजिक है।

जहाँ दोस्तों इब्तदाई इश्क में हम हरियाली और रास्ता का निकाला हुआ गाना है, काफ़ी अच्छे अच्छे गाने हैं और ये मूवी भी काफ़ी अच्छी मूवी है। हम एक बार फिर चले चलते हैं ये हरियाली और रास्ता।

ये हरियाली और रास्ता 1962 का मूवी है, मनोज कुमार माला सिन्हा ने काम किया है। चलो एक गीत और है, बहुत ही बढ़िया गाना है, बहुत ही अच्छा गाना है, तेरी याद दिल से भुला ना सकूंगा। करोड़ों का दिल जीतने वाला मिलियंस ऑफ हार्ट, मुकेश का गाया हुआ गाना है। चलो हम सब मिलकर सुनते हैं हरियाली और रास्ता का ये निकाला हुआ गाना है, नेकेटिव का है जे। ये फिल्म बिना देखे से उसे देख सकता है, काफी अच्छी फिल्म है, मूवी।

यार दोस्तों, तेरी याद दिल से बोला ना सकूंगी, मूवी हरियाली और रास्ता नहीं कंती द मिलियन ऑफ आर्स नाइट मुकेश की आवाज थी, शंकर जय किशन का म्यूजिक थे, एक आखिरी गाना है फिल्म हरियाली और रास्ता का, हम सब मिलके सुनते ही परवानों की रात, आशा भोसले इस गाने को गाया है, नहीं कहते तो इस शस्त्र का है।

जी हाँ दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे एक आखिरी गाना मूवी हरियाली और रास्ता का। आशा भोसले ने गाया था, मनोज कुमार मलाजीना ने इसमें काम किया है, नई कंचन ट्विंस का है। ठीक है दोस्तों, हम चलते ही मूवी हम आप लोग के लिए चलते नई कंचन वेफन शस्तक में। जोहर महमूद इन गोवा, आंखियों का नूर है तू, ये मुकेश और लता मंगेशकर की आवाज़ है दोस्तों। सुलेमान कल्याणपुर जो इसका सिंगर है, सुलेमान कल्याणपुर और मुकेश ना लता मंगेशकर नहीं है, सुलेमान कल्याणपुर और मुकेश की आवाज़ है। कल्याण जानन जी का ये म्यूजिक है। और देखा जाए आप लोग के हमले चलते हैं नई कंटीन फाइव में, आँखियों का नूर है तू।

हैं दोस्तों, अंखियों का नूर है तू, अंखियों से दूर है तू, जुलेमान कल्याणपुरी और मुकेश की आवाज़ अभी थे। लेकिन 3-5-6 तक का ये गाना है और फिल्म हैगा जोहर महमूद इन गोवा। चल हम एक बार फिर से आपको ले जाते हैं लेकिन 3-5-6 तक में जोहर महमूद और गोवा के एक बहुत ही अच्छा गाना है, अच्छा गीत है मन्ना दे और पद्मश्री मोहम्मद रफ़ी का, और इसका म्यूजिक सजाया गया है कल्याण जी, आनंद जी, अलाला जालाबादी इसका जो लिरिक्स लिखा है दोस्तों। चलो मिलकर हम सुनाते हैं

चले हे चले हे चले हे ससुरार। अभी आप सुन रहे थे जोहर ए महमूद इन गोवा, लोदो दीवाने दिल के चले हे देखो मिल के, महमूद सिमी अग्रवाल और जोहर इसमें काम क्या इस मूवी में। चलो हम ले चलते हैं एक एक ऐसा गाना है फिल्म जोहर महमूद के, जोहर इन महमूद इन गोवा ने कितने फैंस शस्तक में, और देखा जाए तो एक जो गाना अब हम रखेंगे बहुत वही गाना है और हम सब मिल के सुनेंगे। उषा खन्ना गाई से और मुकेश इसका जो म्यूजिक बजाई से कल्याण जी आनंद जी है, और वहीं जलाबादा जलाबादी का ये लिखा हुआ गाना है। हम आप लोग के सुनाते हैं दोस्तों एक ऐसा गाना जो हम बहुत दिन न सुन ली है और बहुत मिल के सुना, काफ़ी लोग जो प्रोग्राम को सुनते हैं, और अभी ये गाना आप सब के नाम है दोस्तों।

न कोई रहा है ना कोई रहेगा जोहर महमूद इन गोवा नेकन तीन फैंस सस्ता का गीत था दोस्तों। हम थे आपके आपके साथ अनिल सरजू जो पूरा प्रोग्राम को आपको सुनाया है और उम्मीद है आप लोग के ज़रूर पसंद है ये प्रोग्राम। ठीक है दोस्तों अभी ठीक है यहाँ से हम कहते ही अपना आप सबको राम राम नमस्कार।

0: De kinderen zaten vermoedelijk 4 jaar opgesloten in een klein kamertje. De procureur-generaal stelde dat uitstel van ingrijpen fataal zou zijn geweest. En dan het weer. Vanochtend verloopt grotendeels bewolkt met in het oosten en zuidoosten eerst wat zonnige periode. Gedurende de ochtend neemt de bewolking overal toe en trekt een zone met regen zuidoostwaarts. En de temperatuur stijgt naar 23 tot 25 graden. En tot zover het nieuws op Fahon Hindustani Radio.
1: Muziek en informatie. Bij Fahon Hindustani Radio.
2: Har dil se hamara nata hai. Har dil se hamara rishta hai. हर रोज की तरह हमेशा की तरह आपसे आज भी होगी कुछ प्यारे प्यारे बातें और सॉन्ग्स हम चलाएंगे जो आपको पसंद है जहां तक ये आवाज पहुंचे और हर एक सुनने वालों को हमारा राम राम नमस्कार अदाए बरस और सत्यकाल हो। मैं हूं आपके खिदमत में अनिल सारजू जो आपके साथ देंगे और कुछ पुराने पुराने गाने हम आप लोग के जरूर सुनाएंगे। जहां पे जिस घर में दुख है या मातम है पूरा फाहुन टीम उसका दुख में शामिल है। जहां पे खुशी है वहां पे भी हम साथ है। दुख और सुख में हर एक को सदा साथ देना चाहिए वैसे हम भी आपके साथ है। चलो दोस्तों हम प्रोग्राम को आप चलाएंगे। एक घंटे तक हम कुछ हिले मिले जुले गीतों से आपको जरूर सुनाने वाला है। मिलकर हम सब सुनेंगे आज का प्रोग्राम और हर एक जरूर इस प्रोग्राम को पसंद करेंगे। मैंने कुछ गाने चुन के रख चुका है। मूवी हम जफर जिसमें जितेंद्र शर्मिला टैगोर ने काम किया, लता मंगेशकर और मुकेश ने इस गाने को गाया है। देखा जाए इसका म्यूजिक जो बजाया गया है वो ही आनंद बख्शी और लाइरिक्स आनंद बख्शी और म्यूजिक है कल्याण जी आनंद जी। हम मिलकर सुनते हैं किसी राह पे किसी मोड़ पर। इसमें थोड़ा से कुछ गलत हो गया है देखा जाए तो। देखते क्यों आवाज नहीं आता है इसमें से।

सभी को राम राम नमस्कार और ढेर सारा दुलार पहुंचे, जहां तक ये आवाज़ पहुंचे वहां तक हमारा पैगाम पहुंचे और ढेर सारी मोहब्बत पहुंचे। दूर दूर से लोग प्रोग्राम को सुनते हैं। मैं हूं आपके खिदमत में अनिल सरजू, जो कुछ हिले मिले जुले गीतों से हम आप लोग के सेवा करेंगे। मैंने कुछ गाने चुन करके लाए हैं, कुछ पुराने गाने हैं और उम्मीद है आप लोग के ज़रूर आज का रेडियो प्रोग्राम फाहून द्वारा ज़रूर पसंद आएगा। आप सब चुन है द एवरग्रीन लव लव फाहून हिंदुस्तानी रेडियो पे, और मैंने चुन करके रखा है मूवी।

0: के मिल के सुनाते ही जितने लोग प्रोग्राम को सुनते हर एक के लिए ये गीत मैं पेश करता हूँ नामोस रेडियो फामुन।
1: मैंने देखा नहीं, तुम बंसी भी बजाते हो?
2: हाँ हाँ सुनाओ।
1: अरे अरे अभी नहीं, ये तुम भूल गए हो, तुम छुप कर जा रहे
2: हो। खुशी के मारे मैं तो भूल ही गया था।
1: खुशी? किस बात की खुशी?
2: न जाने क्यों
1: राजू, तुम बहुत अच्छे हो।
2: बापू और उस्ताद के बाद एक तुम ही हो जिसने मुझे अच्छा कहा।
1: तुम्हारा अपना और कोई नहीं है?

मेरे हम सफ़र, मेरे हम सफ़र, मूवी मेरे हम सफ़र, किसी राह पर किसी मोड़ पर। चलो दोस्तों, अगले गाने को मैंने चुन पे रख चुका हूँ, रख दिया है आपके लिए, मूवी हीरा हीरा हीरा तमन्ना एल्बम, मूवी हीरा तमन्ना है और सिंगर है किशोर कुमार और लता मंगेशकर। फिर से लाई दीक्षा आनंद बख्शी के, और देखा जाए म्यूजिक है लेबल शरगमा। चलो दोस्तों, हम आपके सुनाते हैं जिसमें काम किया है देवानंद और जीना तमन्ने। पन्ना की तमन्ना है कि हीरा मुझे मिल जाए।

जी दोस्तों, मूवी हीरा पन्ना किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज है। ब्याह सूर्य थे दोस्तों, आनंद बख्शी का लिरिक्स और आप जानते ही राहुल देव परमन का म्यूजिक। ठीक है दोस्तों, हम आगे चलते हैं प्रोग्राम। आप ही तो हम हैं, आप नहीं तो हम नहीं हैं, और आप सब चून हैं द एफ अगेन लव फॉर्म हिंदुस्तानी रेडियो पे। मैं हूं आपके खिदमत में अनिल जरजू। हम आगे प्रोग्राम चलाते हैं। मुकेश जी का एक गाना हम आप लोग को सुनाना चाहते हैं, जो प्यार से गाया है। जिस गली में तेरा घर ना हो बाल माँ, मूवी कति पतंग तक का है। और देखा जाए म्यूजिक डायरेक्टर है एरदेव बर्मन। एक बार फिर से आनंद बख्शी का लिखा हुआ गाना है, और हम आपके नाम करते हैं क्योंकि आप प्रोग्राम को सुनते ही जितने गाना या गीत हम चलाते हैं बस आप सबके नाम है। दूर दूर से लोग प्रोग्राम को सुनते हैं और बहुत पसंद करते, मुझे काफ़ी अच्छे लगते हैं। ऐसे ही सुनते रहना, ये गीत भी आप लोग के नाम है मूवी कति पतंग के, जिसमें जितेंद्र आशा परीक ने काम किया है।

जी हाँ दोस्तों, जिस गली में तेरा घर ना हो बालमा, मूवी कति पतंग मेरी कंतिन एनन सैफन तक का ये फिल्म है जिसका आपने अभी गीत को सुना है। और जो जो सुनता है हर एक गीत जो मैं चला रहा हूँ बस आप सबके नाम है। चलो दोस्तों, हम अगले संस को लगा चुके हैं अगले गाने को और देखा जाए, देखिए तो कौन मूवी दो कल्याण नहीं कहती नाथन शस्त्र का है यार। और देखा जाए, तुम्हारी नज़र क्यों खफा हो गई, कभी कभी हो जाता है चना, नज़र भी खफा हो जाते हैं लोग, लोग से जुदा हो जाते हैं तो क्यों खफा नहीं हो सकता है। पद्मा श्री मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर का आवाज़ है, म्यूजिक डायरेक्टर रवि। हम आपको सुनाते हैं, मिल के सुनेंगे, तुम्हारी नज़र क्यों खफा हो गई।

जी हाँ, हमारे सुनने वाले एक हसरत थी कि आंचल का मुझे प्यार मिले, मुकेश की आवाज थी। चलो दोस्तों आगे ले चलते ही, ना जाने क्या हूँ। बहुत विशाल गाना है, यह गाना है लता मंगेशकर का, मूवी दर्द है नहीं कंती एनन तख्त का। न जाने क्या हुआ जो तुम छोड़ लिया, छू लिया। ये गाना हम सोच रहे सब कोई जाने और सब कोई के मुँह लगे, लता मंगेशकर का आवाज़ है और सब कोई सुने खोई जा मिल के फोन हिंदुस्तानी रेडियो पे। आप सब चोन है दोस्तों, मिल के सुनेंगे। न जाने क्या हुआ जो तूने छू लिया।

ना जाने क्या हुआ जो तूने छू लिया। मूवी दर्द 1981 का, जिसमें हेमा मालिनी राजेश खन्ना ने काम किया है। तो चलो दोस्तों, हम आप लोग के लिए चलते हैं मूवी प्रोफेसर 1983 का, जिसमें सामी कपूर और कल्पना ने काम किया है और गायक और गायिका है पद्मश्री मोहम्मद रफी और द क्वीन लता मंगेशकर। म्यूजिक शंकर जयकिशन और लाइरिक्स से सई लेंद्रा।

जी हाँ प्यारे सुनने वाले, मैं चली मूवी प्रोफेसर 1962 का। चलो आगे ले चलते, दूरी ना रही कोई, लता मंगेशकर की आवाज है। और देखा जाए जी हम दोस्तों, लता मंगेशकर म्यूजिक, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, लाइली से कफीन आजाद मुत के जो लिखा गया है, हाथ और कलम उसी ने चलाया है। चलो मिलके सुनते हैं रेडियो फोन के जरिए से।

लता मंगेशकर। लता मंगेशकर एक एहसास है जिसे महसूस किया जाता है, बयान नहीं। ये एक नाम है जिसे सुनते ही मेरे दिल में सुकून और चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। टू मी शी इज इथीरियल, समवन फ्रॉम अनदर वर्ल्ड, लार्जर देन लाइफ, नो लेस देन अ गॉडेस, अ देवी। दिस वन नेम इवोक्स अ मिलियन फीलिंग्स इनसाइड मी। आई हैव कोल्ड फीट, वीक नीज, अ नॉट इन माई स्टमक, I smile on my lips and tears in my eyes. In other words, I feel alive when I hear this name, Lata Mangeshkar.

जी हाँ दोस्तों, तुम मुझ में समा जाऊँ, मैं तुझ में समा जाऊँ। द क्वीन ऑफ लता मंगेशकर की आवाज़ थी और कर्तव्य मूवी का नाम है और रेखा और धर्मेंद्र पाजी ने इसमें काम किया है। चलो दोस्तों, हम आप लोग के सुनाते हैं तेरे इश्क का मुझ पे हुआ है असर।

तेरे इष्ट का मुझ पे हुआ है असर। आशा भोसले पद्मश्री मोहम्मद रफी की आवाज से मूवी नागिन निकली सेशन ज़ैफ़न तक का है। ठीक है दोस्तों, मैंने वक्त से पूछा मेरा क्या कसूर था। वक्त हंस के बोला कसूर तो कुछ बड़ा नहीं था, बस तूने हर किसी को दिल से अपना समझ लिया और जिए इस दुनिया में सबसे बड़ा कसूर होता है। जहां हर रिश्ता दिल से नहीं निभाया जाता है, हाय तुम दिल से जीते रहा है और लोग मतलब से याद करता है, दिल से नहीं। ये ऐसा होता है हमारे प्यारे सुनने वाला, शायद बोलने में कुछ गलत हो गया। ये ऐसा होता है। आपकी खिदमत में मैं हूँ अनिल जारजू और आप सब द एफगे लॉ फाहौन हिंदुस्तानी पे चुन है। देखा जाए तो अभी हम आप लोग के

कला न जाने ऊंच नीच, कला न जाने जांच, सरस्वती माता दीजिए हमको अपनी आशीर्वाद। तमाम रेडियो फोन की सुनने वालों को हमारा एक बार फिर से राम राम नमस्कार, प्यार भरे लाभ सस्तीकाल। जॉनी नंबर वन है हमारा नाम। आज का देश और विदेश के समाचार सुनाना है हमारा काम, यही है हमारे मोहब्बत भरी प्यार की पैगाम। दोस्तों आप लोग को तो पता चल चुका होगा कि यहाँ से हम अपना सुरीनामी देश का और विदेश का समाचार भी आप लोग को सुना देंगे। तो हमारे प्यारे प्यारे मौसी लोन, मौसा लोन, नानी लोन और नाना लोन, आजी आजा और परिवार लोग, आप लोग के पता है कई साल से हम समाचार को और सुनाते हैं और यहाँ पर बताए गए हैं कि आप लोग को शायद याद होगा कि 2023 में यानी 2023 में पेकिंग सारोन में तो जाने आदमी ब्लॉक ले ले फ्राखवाखन पितृक पे जान रहा और वहाँ पे बहुत जबर सबन अक्सी हो रही कलेरा डाम बंद कर दे रहा और कितना ट्रैकर में आगे लगा दे रहा, लकड़ी जर गया, बहुत आफत मचल रहा। ये पिकिंग सरोन के बात है मई 2023 में हमारे जनता और जो शायद कोई न्यूज ना जानत हुई होश ना हुई तो तरी से हम बताई दे कि हुआ पे पिकिंग सरोन में भैया टगवल भी भइल है, स्कौतु पहुँचल है। जो स्कौतु पहुँचल तो ओसी के आदमी दागे सिपाही के और सिपाही दागे उस सब के भैया और बताए गए है कि वहाँ पर स्कौतु दागे दुई आदमी मर गए रहा, तुई लेकन वहाँ पे सबन ले के रहा ले ली तौरप के पुलिसी ब्यूरो के मारतीवारियों में धरल रहा और वहाँ पर दोस्तों दो आदमी मरल रहा। पिकिंग सरोन एगो दोरपू हैगा दौरस खबीत में जहाँ पे ग्रासालको हैगा मरीपास तुंग है बहुत ऑन रिस्ट का वहाँ पे दोस्तों है ब्लेक द ट्वी वेरक नीम ग्रासाल को खैसल स्वारन दौर ओम स्तांदल लिंगन खैसल कल रहा दूसर कोई दुई को कम करतन के ग्रासालको के दोस्तों और बताया जैसे नाम से पुलिस ऑफ एन मोमेंट फर्स्ट क्राइम फेस्ट तक तेघन और बोले ग्रासालको के दुई को अनमी के समान का बोले हैगा खैसल कर ले रहा हमारे जनता और बतावे हैगा उही में दगवल भइल है ओसी से बंदूक ऐसी से सिपाही के बंदूक और दुई आदमी ओमा मर गए रहा दोस्तों और जब मर गए रहा तो कर बारे में जड़ जबरदस्त साग गए फोर द रेक्टर कि सिपाही लोग के चाहे बन्न होवे के तो एमा इंदर दाद भैया इसको तो लोग के साग गए है दोरो और जो नरमियन दुई को मरल रही एगो नाम रहा मार्टिनस वाल्फियाखर और एक वक नाम बा इफान नेल्डो डेगस्टील ते दोनों सिपाही दाग के मार ढाले रहा हुआ दोस्तों तो ओकर ना बस्तांतन जो रहा फॉर द रेक्ट लेगे कि सिपाही लोग के चाहे बन होवे के तो एकर बार में अब जाए के सखवा रोंत भइल है फॉर द रेक्टर सखवा गइल हैगा पुलिसी उपतरी ने डेपिकिन सरोन सुरीनाम में और चारों स्कौतुन जो रहा बस कुल्डग फ्राई खस प्रोकन हुई गया भैया चारों स्कौतु के और रेक्टर फ्राई खस प्रोक कर दी से और ये रेक्टर हैगा सिंथिया क्लेन बोले हैगा बवीसन फॉर क्लारिंग से मैं से अख्त द बत्रोकन अखेंतन दारफो निस्त्रावर आठ मिला के रहा
और बोले आठों के फ्रई खसप्रू को ही गए हैं। बोले ओमदत इसब दागी से उसब के कि नोत वेर में रहा। बोले दगवल उधर से होत रहा इधर भी होत रहा। यही के मारे में बोले द सेफन अखेंदर वर्दन फरदाख फन खबरई फन डिसप्रोपोर्शनल खवेल्ट। बोले उसब दागे रहस को उतन। बोले नानू उडखरा दागे ओकर खात रेखतर इसब के फ्रई खसप्रू का करी से। बोले इसब नोत वेर में अपन के दागी से। बोले द दाखतन वारन दोचलाग दुनु मर गए रहा। स्वार में सांदंग में दोत खफोलक एं दोत दो शुल ते लास्त खलेक एक रूपल कस्कूतों को पर कर ले रहा। फुरवारलेक बोले 12 महीना के जहल खाईस्ट मेत अन प्रूफस्टेट फन 3 तेन आंसीन मार्टिनस वॉल्फ्यागन सेन 4 अगेंटन फ्रई गस्प्रूकन फन अले फेटन इन दे साक रोन इवाल्डो देगस्टिल ओरदेल दे रेखते दात गेन स्प्राके वास फन दोचलाग। वेल अखते दे rechter bewezen dat 3 agenten schuld hadden aan dood van Dijksteel. Bolle inderdaad die 10 sipahioke dag is. Bolle toch bewezen verklaring niet strafbaar volgens de vonnis. Was sprake van een noodweersituatie. De agenten hebben wel geschoten, maar deden dat volgens de rechter binnen hun bevoegdheid als politieambtenaren. Gelet op het geweld en grimmige omstandigheden. Op dat moment mensen toch ja wat aanwezig. Rechter bolle hega. Rechter kwam daarop tot ontslag van alle rechtsvervolging op de 10 sipahien bij wie dood door schuld bewezen werd gemaakt. Dat betekent dat het feit juridisch wel bewezen is, maar de verdachten daarvoor niet strafbaar zijn. Mensen, to do het mee merken hebben ja, Rivaldo, Aurigo, Aure, Vibraan, Bataite. लेकिन सबके सिपाही छोड़ दी से हमारे जनता जन सिपाही ना रेख्तर सबके छोड़ दी से। बोले सब दागी से अपने बचाओ खातिन नोटवेर के। बोले ओशो दगल होतरा ऐशो दगल होतरा। बोले जैसे सिपाही ना दागत अपने मर जाते तब तो बोले उस सब नोट साक रहा दागे के। और बोले मधुई आदमी बोले मर गए है हमारी जनता। एक औरत भैया गईले वैदम बॉस ब्रुक पे ना हबड़ा होत रहा नानी। गईला कूदे भैया गईला कूदे ऊपर से वैदम ओतो और ओतो ना बुताई से ओतो लेके गईला और ऑन बहेर ओतो हुआ छोड़ दे से और हुआ पे बताई गई है रात के वैदम बॉस ब्रुक के पास कूद गए है औरत मशीन ओतो के कुछ समय ना रहा बुतावे के। और 5 सवेरे सिपाही गईल है पुलिस ब्यूरो हरमान गुदिंग क्रीक 5 मेल्डिंग पाई से कि वो ओतो वैदम बॉस ब्रुक पे हैगा जो उनके मोटर ड्राई हुए है। और बोले बेटा आंस कम स्ट्रॉफन द वेस्ट इन आर ऑटो पाइस में बस्तूर्दर ना पाइस है तरवेल द मोटर नोह ड्राइडर। द कैमरा बिल्डन इस फॉल्स पुलिसी का केकन दैट द बस्तूर्दर फ्रॉम द ब्रुक इस कस्प्रोंगन। और वहाँ कैमरा लगा वाले ऊपर देखान के औरतियाँ पानी में कूद गए हैं। लेकिन यहाँ पे नहीं बताए गए हैं कि उसका लाश मिला है कि ना। वन ब्रुक की पसे कूदियो भैया तो कम में आशा है कि तुम्हारा लेक मिलेगा। तुम पाई तो जानो भैया एनपीएस में चल गए है गा। पहले रहा पुलिस बोन सिपाही में रहा अब पार्लियामेंटारियर हो गए है गा। यानी कि अतोम पाई पार्लियामेंटारियर हो गए एनपीएस के। और बोले इन सूरीनाम दी ओवर अ बस वर्गुनिंग बस के कन। बोले सब्सिडी फ्रॉम द ओवरहेड ऑनफांगन मार गेन बसन हैवन। हियर अंडर फॉलन ओ पर्सन इन बिपाल फंक्शन बक्लेन। बोले एक एक गो आदमी लोग के बोले सब्सिडी मिले। बोले के बस हये ना हैगा। बोले कैसे हो सके हैं तो सन्ना में तो आदमी काम भी ना करे पैसा पावे भैया। और मिस्त्रासी हुआ पे ऐसे बोल दी एक को बुन देख करे भाई तेज बखरोती महांदलिंग में। एक बारे में एक स्पूदक महांदलिंग आयल है। बोलेगा फान द काल प्लुक वेत ओम दे इसे पर्सोनन अंत पकन की इसे पर मेन के जहीं पकड़ाई के। बोले दे मांग नो आबी बस। बोले सेंस यार एन दाग होनन वे दर फर्कुनिंग वर्दन फर्कोक। बोले बस है ये ना फर्कुनिंग बिका है। बोले अन मान नो आबी बस एन एक कांसो 20 फान से आनवेशन ये हैं मेंसे दी अन बरूप एरफान हैवन खमाग एन दारो मुद द काल प्लुक वेत कोमन ओम दत वे मेंसन हैवन दी de functies zijn gegaan, busvergunning hebben verkocht en
miljonair zijn geworden. Hoe ze vergunning aanvragen kerkje. Of bus of vergunning. Sub maanden we. Of beter kun subsidie bouwen we. Bolle één persoon heeft 10 busvergunningen. En elke man ontvangt hij 10 maal de subsidie van mama Sranang. En dan... En de potisma erbari, zei de NPS'er. Dat wil ik dat vergunningen bus jenna hebben. Of beter vergunning maken, vergunning wat bedden we of subsidie op een dorp houden. Volgens de politicus moet de regering beter gaan kijken naar de subsidiebeleid. En alleen degenen subsidiëren die dit nodig hebben. Te bolle gaan. Atompai, or bolle DNA leden AB Jones NDPK or Ivanello Plein NPSK dienden in december al vorige week een wetvoorstel van ondernemen. Bolle hega bekeker bare me OWVV, zogenaamde kaalplukwet in het mogelijk moet maken en veroordelen volledig te ontnemen van de wederrechtelijke verkregen van voordelen. De Navia kaalpluk TL kaalplukwet dus aan de is op keke je je kaalpluk kare, want is op keke karie hem hier kaalpluk, want hoe heb je koei paisa paige toch kuch hier na paie kunchi, Suriname met loon jano bhaiya kaalpluk wet naam hebben ze, maar uiteindelijk wordt het niet meer gebruikt. ये बात है हमारे प्यारे प्यारे जनता. आप देखो एनडीपी के बारे में यहां एनपीएस और एनडीपी भैया अपने में बोले हैं एनडीपी बोले हैं बोले हैं बोले इन अन खसीन स्कूल टास प्रोजेक्ट एगो सरनाम में खोली से रखेरिंग सिमोंस और रिसलान के बोले सामन खोली से बके क्वालिसी खनोट एनपीएस आउटफोरन अल्टांस दैट इज gebleken uit de discussie die aan me die Dunu partijen hebben gevoerd tijdens de begrotingsbehandeling. Op dit moment is het schooltaalproject ondergebracht bij het ministerie van een jeugdontwikkeling en sport. Op het eigen betaal waarvan de minister uit de gelederen van de NDP voorkomt. Obole hega to jeugd kedele ba de bakiw NDP ke he, waarvan NPS bi kwalisi me ba. Obole begrotings behandeling me NDP AB Jones bole he, ki schools projectwa jone onder minister Jos ke naam pe chahen jai ke. Ob NPS bole Jos ke minister NDP ke he, ta janta sochik NDP pa maanti se. Obole u NDP na maanti se ga. Bole NPS Diana Leed, plein bolehega voor stelke die zich aan die projecten, chahiga 10 minister kies gezamenlijk chahi uitvoer kereke, bolehega Minofke, ouro hega ukar jane sociale zaken ke. Of zo saaf ook he. Bolle NPS beheert alle drie ministers hebben raakvlakken met het schooltassenproject. Jos gaat over jeugdigen, Minof over educatie en zo saaf onder sociale zwakkeren. Alle drie hebben de schooltassen nodig, laten we onder één budget het project uitvoeren. Er komt dan gezamenlijke aanvraagformulier waardoor er geen overlappingen plaatsvinden. Wat nu gebeurd is, is niet efficiënt en effectief mensen. Dit is ook een goede man. Ik heb een JB Paisal. Ik heb een JB Paisal. Ik heb een project. Ik heb een Lantik. Ik heb een lid. Rosala Costino zei dat het schoolproject begonnen is tijdens de Bouterke regering in 2010. Ik heb een sport- en jeugdzaken. Ik heb altijd gekregen. De NDP toen ook minister van Onderwijs. Maar hij heeft bewust gekozen om het toen sportzaken te doen. Ik heb een NPS. DNA, Putin Atompai niet terugvinden in deze stelling. 2010 is dat zo gebeurd, maar als we het evalueren, moeten we het toch achten anders doen. Bolle NDP, fractielid, de Absap Koitemange, appa naam bataan, bhaiya, ki hum batali bati, jone hum stemu apai, to bhaiya, ee sababad, koi na dekhe, janta ke chahi mile ke, chahi dekhawe ke, ki ke baate hai, jone namua u banawe, aise batia hai. हमारे प्यारे प्यारे जनता अब देखो भैया
कहा बोले अमेरिका को और हम जाए तो लोग जाने हैं और यू बाइडन एक्स और प्रेसिडेंट रहा और ट्रम्प के देखिया का बोले भैया प्रेसिडेंट ट्रम्प के बोले हैगा डेमोक्रेटिक पार्टी खाला इन मैरीलैंड स्कैरप ओके अनफॉल करी से 83 यार के हो गए जो बाइडेन पॉलिटिकल रिफाल ने अंदर मीर अ नार्सिसिस्ट हैगा करप्ट एंड लूसर बोली से बाइडेन के ओके भैया है स्प्रा फ्राइडे आवर इन द हनोवर टेनिस बे इनकम्स वार में हेल्प वेट इन गस्कामल फॉर द डेमोक्रेटिक पार्टी इन आनलोप नार द टुसेंटेसे वर्कीसिंग फॉर नोवेंबर और बतावे इन से ongeveer 10 मिनट के toespraak met Biden. Kijf puntelijstje die Trump volgens zijn valt. Hij richtte zijn kritiek onder meer op de Amerikaanse opstelling tegenover de NAVO en Rusland. De bari baan Joe Biden 10 minuten mee. En Trump ke boli se. Want hoe heb je die verkiezing gehad? Ja, hij hoeft na. तो ये सब बात हो रहा है। देखो भैया अमेरिका फुर अनफालन अमेरिका फिर अनफाल करी से ईरान के ऊपर आज रिएक्शन अनफाल ओपन स्केप एगो बोर्ड के ऊपर अनफाल करी से तो बोले अमेरिका बोले लुक अनफाल करी से ईरान के ऊपर एगो बोर्ड पे अमेरिका के मिलिटेर करी से मेरे ओस्ट में बोले द अनफाल इज फॉल्कन सेंट्रम रिएक्शन ऑफ द अनफाल ऑफ अ फ्रैगशिप गिस्ट्रेन काल एगो फ्रैगशिप पे बोले वार द अमेरिकनसे प्रेसिडेंट ईरान फॉर फ्रंटवर्डलक हाउट ईरान एगो बोर्ड पे दागे रहा तो आज अमेरिका उल्टा दागे से ई सब का करे भैया दो रोज अन अन फ्रेडर स्लाइस करे अति रोज में लड़ाई शुरू कर दे है तो अमेरिका के बड़का खफेक्स फ्लिक टाइकन जोन है Geil hè, Iran ke opslagplaatsen voor raketten en drones hebben gebombardeerd. Ja, ik dacht is hoe ze op opslagplaats en drone ke op de radarposten langs de Iranse kust waren volgens Senskund het doelwit. Iranse staatsmedia berichten bolle de omgeving van een pier bij de kustplaats strik was getroffen door een projectiel. Te is op akkoord bij de vrede met de bolle de bhaiya. Aye ma vice-president joh hai, premier joh hai ga fancy. Bolle hai ga aanval bhai le hai bolle geweld met geweld wordt besteden. Bolle u je geweld karke bot daage ga to hum log ka desh daage. Bolle als het Iran het oneens is met hoe de wapenstilstand wordt gehandhaafd. Moeten ze telefonisch contact opnemen. Schrijft hij op. Bolle jo eens laten bolle hum log ka bel kar. Bolle na ja bot to daage. To ekar baare mein तीन को drones konden worden neergehaald, zegt Trump. Bolle Amerikaanse president wie in sociale media posts niet gemeld waarna de Iranse aanvallen plaatsvonden. Ik op Britse maritiem organisatie hegaan, obolis hegaan, bolle Oman werd geraakt door een projectiel. Ja, de waarschuwker is de Iranse autoriteiten, waarschuwker is hebben na een aanval gewaarschuwd dat schepen die buiten de door Iran vastgestelde route varen geen garantie hebben op een veilige doorgaan. Ook zegt Iran dat de gevolgen van het gevaren, dat het varen via geautoriseerde routes, de verantwoordelijkheid zijn van de eigenaren, de exploitant en de kapitein van het schip. Op de Iraanse staatstelevisie berichten dat 3 tankers na een waarschuwing van de garde zijn omgekeerd omdat ze hadden geprobeerd om de ongeautoriseerde wijze door de straat Hormuz te varen. De boord joh net mee chalawe bhaiya us sabke risiko bara bhari bhai. Chala jaye Venezuela kor bhaiya jahan Maduro ke pakad ke America ban kari se. आप लोग तो जानो भैया हुआ पे और तू जाने Maduro जो रहा बहुतस के बहुत बड़का दोस्त रहा जो समय पे बहुतस लुकान रहा कोई सोए रहा चल गए Venezuela में एवं बेड वाले दी में से दिस्ता स्क्रीफ और खनान और दोनों पटत रहा और आज Venezuela में इतना बड़का दुख है और सरनाम कुछ ना करे भैया तो बड़ी दुख के बात है कि ओकर देश में
इतना ढेर आदमी मरल हैगा, दौड़दन दुबला आर्थविंग भइल हैगा, फिर तीन होंदे देर तक भैया बोले दुबला आर्थ इस अफ्कलोपन तो मिनिस्टर फिर तीन होंदे देर तक गो इन द स्वास्थ्य खतरों कुन कुन्स्ट्रांत जो ने ला ग्वारा में जहाँ पे पलवार लोन लाश हुई गए भैया आदमी लोन सब पेन के नीचे वहाँ आदमी खोजा है नॉट ओवर लीफन दे terwijl veel bewoners klagen over een ontoereikende hulpverlening. Hoe ze kunnen na hebben, hulpverlener. De Venezolaanse autoriteiten maakten zaterdag bekend dat 1430 admi mergen zijn. Doei go zware aardbeving bij de boedwaarke. Bole hega 7,2 en 7,5. Bole hega bevinding hadden van de magnitudes. Bole veroorzaakte grote schade onder... और एक बारे में जो तो ओके जनता के दुख है वहाँ पे फैमिली है वो फॉक्स मीस रेसेंट और बोले हैगा 68,900 आदमी लाश हुई ना पावे है और बोले है अंताल गवंदन is afgelopen tot meer dan 3200. Duizenden mensen hebben hun woning verlaten, mensen. Of bole na de schok. De eerste cruciale dagen na de ramp zijn voorbij, maar redderswerkers blijven zoeken naar tekening van leven. En ja, wat hij gezegd dus en ik er bare mee bole bahut moeilijk hega door de beschadigde wegen mee chale ke jai ke bole internationale luchthaven jo hega aur we Caracas mein lip schade ook mensen waardoor aanvoer van hulp en personeel vertraging heeft gelopen. Sukerwaar ke 4,9 krachtdragen geregistreerd voor de noordkust van Venezuela. De nashock werd gevoeld onder meer Caracas. Op de Europese Unie 5 miljoen euro deze noodhulp vrijgemaakt via de Europese mechanisme voor civiele bescherming, reddingsteam, brandweerlieden en medische personeel gemobiliseerd. Ook satellietbeelden worden gebruikt om de schade in kaart te brengen. Tot 5 miljoen paisa Europa deze gaan brandweerke of reddingske help kreke. Op de dubbele aardbeving geldt als een van de zwaarste rampen door Venezuela met heil heeft. Amerika registreert heeft 150 miljoen aan noodhulp van Venezuela gemobiliseerd. Amerika 150 miljoen dollar noodhulp diga kabelen Venezuela ke. Daarvan gaat 50 miljoen naar de organisatie in direct ingetroffen gebied actief, waaronder het wereldvoedprogramma van de Amerikaanse en internationale medicaal korps. Bolle 100 miljoen bestemd voor het gezamenlijke noodfonds van de Verenigde Naties. President Rodriguez had vrijdag telefonisch overleg met Donald Trump en de Amerikaanse minister Binnenlandse Zaken. Wat jij zegt, ik kijk hier hoe ik hulp. Lekker in Suriname, ik heb aan hem gehoord, Parilla Bahia, ki Suriname, ki koi geil hai, aur Venezuela me koi madad kare hai, koi madad kare hai. Want Suriname me Venezuela kalmi bhi bahut rahe lagal hai, jo samay pe मदुरा हुआ पे खाई पानी ना रहा तर्मी भग के वेनेजुएला में रहा और जो समय पे अमेरिका वेनेजुएला का मदुरा ले गया रहा उस समय पे हम लोग के प्रेसिडेंट सुरीनाम के ना एंस रहा और आज देशों में दुख परल है दहोर एक निमंदर ऊपर सेख कि कोई एक साका चाउर हुआ पे जाए के दे दे कोई हेल्प जाए हुआ पे खोजे के दोस्तों. En dat vind ik heel jammer, jammer, jammer, jammer. Zoveel mensen zijn daar. Namelijk dood mensen. Hamjaila, ex-voorzitter van de DNA en tegenwoordige minister van Binnenlandse Zaken van Suriname. Omarinus van BK, bole, bhaiya, begrotingsbehandeling met anonieme bole, admi bataai se ke kehia chori kare. Ke nak kare he bhai, batia tari batao. Volgens bewindsman bole he ego melklijn jahi khole ke waar bredere opschoning van overheidsapparaat na bij de controles grote verschillen zijn geconstateerd tijdens de personeelbestanden het aantal daadwerkelijke geïnteresseerd
geïdentificeerde landsdienaren doen en mij gare bijte buitenland me he spoor na sapke paisa or lanti bhare he de manager voor bole to click line go khol or nahi go webshop khol ke koi chugli kare hum log ke lage jo ne admin ke hum log pakad sakila aur bole he ga minister couple kare he introduction van de melt lane aan bole anoniem bhi batai sake he minister uitvoer om personeelsadministratie van de overheid op orde te brengen, bhaiya. Omange apan personeelsadministratie in orde brengen kare. Want administratie Suriname ke waarde na hai bhai. Usab apan nawa nawa systeem na gebruik kare of hebben ze dat niet. Tegenwoordig kan alles mensen, alles kan het via computer, maar dan moeten ze namelijk goede ICT'ers daarvoor hebben die al die programma's en de invoering van elkaar kan krijgen. Bullen de introductie van de kliklijn leiden tot vragen vanuit Nationale Assemblee. Diverse assembleeleden ondersteunen de aanpak van misstanden, maar vroeger ook aandacht voor de bescherming van melders. Zo werd erop gewezen dat meldingen via WhatsApp mogelijk de identiteit van de melder kunnen prijsgeven. Oh, bole, hey, ik heb een melder kreeg ook een naam boven water, hij heeft beloetjeet na hoi. En bole, WhatsApp ze kreeg het ook zo, bole, en mijn jan jij. De bole, het moet een manier zoeken, kieuwen mijn keer naam voor na awe. Volgens B is de kliklijn bedoeld om fraude, misbruik en andere onregelmatigheden sneller aan het licht te brengen, mensen. Ye ma ap ye kaam mange he kare hum jai tere apel doren ke oor bhaiya ego 51 jarige admi Utrecht ke ha ye admiya ka kare se bhaiya ye upar se ye bawarder raha gevangenis bawarder raha se naam me bole sipahi yani sipir hiya pe bhi bole he baki ye ego gevangenis hai ga newer slice me te ye admiya raha hua ke sipir bawarder raha aur ghus ke jai ke ego aurat ke jahliya ke 2003 me okar cell me ghus ke jai ke aur oke ka bole hiya batae ab that moment je gail hokar jahl me waar de andere gedetineerden aan de lunchen ik woon gaat raha aur ye be bhitar me raha die dag bleef de vrouw in haar cell omdat ze niet goed voelde aurat ya na matra jai khaye aur apna jahliya me raha tab bole na de jai ke aur isi peer okar muh band karke oke hua krach kreeg ze dosto tegen haar gezegd dat ze haar mond moest houden. Nou, bullet op een moebanker over wat er was gebeurd, omdat ze anders kon worden overgeplaatst. Bullet je toen ze wat heet dat ook een oude gevangen aan dit herop hem loon. De vrouw deed 2010 met aangifte kreeg ze gaan. Op bullet 2022 met ze qua pas beklaag procedure geel hem, waarbij iemand het OM via een gerechtshof vraagt om toch over te gaan tot vervolging. Volging op Olega. M ging naar de schorsing weer aan het werk in de gevangenis. Hij heeft de verkrachting altijd ontkend. Volgens de rechtbank is er juist sterk bewijs voor de zaak. Zo zag een mede gedetineerde haar huilen, naar een vriendin toe rennen aan wie ze later haar verhaal deed. Ook belde ze een penvriend overstuur op over de gebeurtenissen. De rechtbank oordeelt daarom dat de gevangenisbewaarder zich schuldig heeft gemaakt aan de verkrachting. Maar oké, Jalmilele Bhaiya, grove wijze heeft misbruikt. Daarom legde de rechtbank de man een gevangenisstraf van 3 jaar en mag hij 5 jaar lang niet de gevangenisbewaarder werken. Ook moet hij vrouw ruim €10.600 aan schadevergoeding betalen, mensen. Je bent Utrecht ke bhai ki gevangenis barwaarder ee to pakdai ge hai baki kitne hain jo jai ke ye sab kaam karke chal rahe hai aur koi naam na lewe hai batawe na hai ki ka bhail hai aur ka na bhaile hamare janta ye sab baat hai to ek geet hum aap log ko suna dete hain.

और दोस्तों हम अपना प्रोग्राम को लेकर आगे को बढ़ाते हैं। तो जनता हम चलते हैं और आगे को तो हम जाते हैं। आप लोग जानो अबोपर भैया सांपी एगो है, अबोपर है तो भैया अबो पार्लियामेंटारियर है, एथार सांपी है। बोले है जोन फेनोमेन रहा, मतलब कि फेहा पे के और आए फेनोमेन रहा। बोले अब वही ओलीफांत और आए ओलीफांतन सिंड्रोम जोन है। बोले अब पार्सल सी ड्रोन हुई है। बोले जो फेहा पे आएला तो बोले जितरा जितरा जगह रहा सब आदमी के निकार के अपन जगह धरी से। अब बोले ये रख रिंग वाल तो बोले एक को न तुरक ड्राई करी से। बोले वारफान ओके चाहना सब ड्राई करे के तुरक। बोले एक को बुन न ड्राई करी से जैसे कि बोले है वानिका में परमारिबो में। बोले एरू रहा पहले मिनिस्टर रिफ्यूल ऑन ट्विकलिंग के। बोले जो फेल उठावत रहा अब बोले ओके हटाई के। बोले संतोखी बोले धर दे रहा ओवे में। अब बोले अबोब आल है बहेर रहा एरो के। अब बोले अफ खपाक ओके लगे से लेके ओवे के दे दे रहा। अब बोले ई का बोले है ई नौका रे खरी वन जो रेसलान सी वन के। बोले कुछ ना दराई किसे या मर खुनुं मैं रखे दादिर बसलो इतने रखे प्रयुदसी मोथ रेसलान नित इस फरांदर सेलफ ओ एरो के पैसवा जो रहा फिर होने से इवने डर तक मिलियून और एसर दी और सेशन सेस्टर कॉमा से इवन हाफ मिलियन एसर दी ओ बखरूतिंग में दे जिसे ओ वे के ओ वे फेल ऑफ हाल करी। अब बोले हैगा मायन फन बर्मन इन डिस्ट्रिक्ट एन एक्सेट्रा बेड एरो टॉयज होरन। बोलो एरो में रहा दिस ग्राफ दैट वे डिड नॉट डोर खान मेड द सिंड्रोम। बोले हेड ऑरियन सिंड्रोम इज ऑफ मिस्किन वर्थ एंड न्यू पार्स सिंड्रोम। मा मिनिस्टर ओ वे एरो के निकार के उधर देसवा एनडीपी फ्रैक्सी परमेश्वर क्यूर्ड इस फ्रैक फान सांपी अफ एस्टेल दैट एर गीन ग्रापा मुदन वर गमाक मेड टू टू स्पेलिंगन ऑफ वर्डन अस पार्स सिंड्रोम अंडर इज इट एंड द सुक एक डू हेड रिस्टक। En laten we het rustig houden. Want als wij gaan beginnen, dan gaat het niet leuk zijn. Al dus, ja, Rabin Parmeester, ken haar moeilijk al, hè. Imam en minister, Michelle Huur van RO, merkte op dat de commissariaten inderdaad meer middelen nodig hebben voor vuilophaal. Zij stelde achter de oproep van haar partijgenoot te staan. Vuilophaal voor RO betekent vuilophaal in alle districten met uitzondering van Paramaribo. Bullen de middelen zijn niet toereikend. 1 miljoen SD per commissariaat is absoluut niet toereikbaar. Ik deel ook de mening dat de vuilophaal weer decentraal moet plaatsvinden. Ik er bare mee bole he. Want sabto mange paiswa ook lage awe dosto. Want paiswa ook lage aai tab dekho sab kaise apan kaam kare he. Aur sab to ki sab ovi me dhar de ra. Aur ovi me se. Aur eru me aur i sab terek na darai kaise. Ohi eru ne. Ka bole ohi pe chhod di se. Ne. ओवी लगे जो फेल उठावे है बाल फफान परमारी बो मवानिका के बदूल करे हमारी जनता। ये बातचीत है। तो अब हम जाए भैया, कोई भला कभी सोचे रहा कि रेसलान में ओ तो कितने लना मिली भैया स्कार सो ये है वंत एन फन द ग्रोस्ट एक्सपोर्ट रहा खस के और तेल के रेसलान जो हसत रहा वही अपन वापन जितना चीज किरत रहा मक्का करी से का उक्रेन बनाई से लंबा ड्रोन बनाई से भैया जो हजारन किलोमीटर उड़ के जाए के अब उल्टा रेसलान के जो ओली रफिनार रही है सब दागे भैया इतना दागी की अब एक्सपोर्ट छोड़ अब रेसलान के अपन तेल ना रही है पर जनता के लंबा लंबा रही है। जैसे हम लोग भी बहुत के तेज पे तेल स्कार से होता रहा कि हम लोग बेंसिन पंप लगे खड़ा होते ही तेल खाते ऐसे ऐसे लंबा लंबा रही अब रेसलान में हुई है। रेसलान में भैया बोले है का ब्रांस्ट ऑफ द कॉर्टन दौर फॉर ड्यूरिंग द उक्राइनसे अनफालन ऑफ अंडर मेयर रशियस ओली रफिनार द रेयन। और बोले इस बेना आल रिश्यूस एंड इन मिडल्स लिमिटेड इनस्टॉल ऑफ द हुफेल है ब्रांस्ट ऑफ द मेंशन मोहन कोपन
ook in de hoofdstad Moskou staan lange wachtrijden bij de benzine stations. Ja, ik er maar mee. Poetin après verklaar kreeg. Oekraïne bolle het jablek toe jagarawan na rokie hem lukke. Bolle tablek hem lukke doro dagen. Want Oekraïne kake ze bij je banaai ze fabriek. Ja, op een eigen drone banaan zelf export kare lagele Oekraïne. Op parka parka banaai ze ga John Hajaren. John makkelijk ze Oekraïne ze urke. Oud jij ke op Rusland ke ulte bombardeer kare bij je. Toen op Rusland met crisis vergadering bij lega. Poetin heel daarom verlaag. Ik ook crisis vergadering kan ze. Op een hoge plaatsen betrokken over de brandstoftekorten. Op een hega. Begin deze maand deed Rusland de uitvoer van kerosine en benzine al in de ban. Bolle bij de tankstationen staan wachtrijen mensen. Partijcongres. Poetin sprak vandaag ook op het congres van de Partij Verenigde Rusland. Daar zei hij dat het land momenteel een moeilijke tijd doorbracht, mensen. Maar daar ook van leert ki is het probleem in Oekraïne mee bhi hai bhaiya. Hua to thanda mein sabke ghar ke daagi se hazaran typical aadmi maral hai Putin daagi se. Aadmi log ke ghar mein farwar mein na raha, pani na raha, khana peena na raha. Ekar desh mein Ukraine kari se ka ki hua ab tel na hai. Ab president Putin baklaag kare hai ook over de druk van westerse landen die de land sancties opleggen. Europa bole hai ga an Europa bhi sancties aflek karisega. Rusland mee. Amerika bhi herstellen de afgelopen week weer sancties tegen Russische olie. Die sancties waren tijdelijk opgeheven toen er door de Iranse blokkade van de straat Hormuz geen olie vervoerd kon worden. De EU versoepelde de sancties overigens niet. Poetin toespraak kwam enkele uren na de Oekraïnse drone al van in de regio Krasnodar mee. Al hoe economie maral wie he. Brand uitbraak in een raffinaderij. Al Zelensky Oekraïne ke bole hega. Bole he bekend dat ook een raffinaderij in de regio Yaroslavl was aangevallen. We zetten onze operaties voor die het vermogen van Rusland verzwakken om deze oorlog te voeren. Schreef Zelensky. Obole elke lange afstand aanval is een vermindering van de middelen die de Russische oorlogsmachines heeft en een nieuwe stap richting vrede. Enkele dagen geleden Zelensky aan dat hij een plan voor een aanvalscampagne van 40 dagen had goedgekeurd om Rusland te dwingen. Bole dwingi kare he ki tu jagarwa rok hamlo kelege se bole ye hamlo doro daga baki jagarwa na roke bhaiya o jana rukyo. तो अबे तो तरी मनी तेल मिले है ओहो ना मिली तब तो आदमी भूखे मरी दे स्वामी तो और रुसलान अबे दोरो लड़े है अब देखो भैया टी ड्रियन फाइव तक को आदमी के पकड़ी से फ्रांकराइक में जोन इस केंद्र मिस ब्रेक मटेरियल डाउनलोड कर ले रहा फ्रांकराइक में भैया और फॉर स्प्रेड कर ले रहा 33 आदमी को 37 से 79 यार तक बतावे डाउनलोड कर ले रहा kinderpornografische bestaan op het internet. Dat is gemaakt door de beruchte Australische pedoseksueel Peter Scully. Bolle op gedownloade bestaande zijn beelden te zien van martelingen en verkrachting van 3 kinderen. Het gaat om 2 meisjes van destijds 11 en 12. Ik wil 18 maanden keer. Obbele de beelden werden in 2012 door een Scully gemaakt op de Filipijnen. Het materiaal circuleerde 14 jaar rond op het dark web. Op het eigen dus de 52-jarige Ukabena staat bekend als een van de ergste kindermisbruikers van deze tijd. Hij werd 2015 Filipijn met een pakalise hebben. Oké, gevangenisstraf en mensenhandel. Oude verkrachting van minderjarigen kwam hij 2022 nog 129 jaar gevangenis bovenop. Ook zijn Filipijnse vriendin en 2 componenten werden schuldig bevonden aan kindermisbruik. Obolege opsporingssoftware download in Frankrijk werden gedetecteerd met hulp van Amerikaanse opsporingssoftware. Het zogenaamde Chill Protection Systeem. De arrestatie vond plaats in het departement. Obolege de speciale afdeling van de politie is in onderzoek mensen. Toen je in Frankrijk waren mee.
तो हम बोले आप लोग को हम बताई कि कैसे यमी खर्मी क्रांत भैया भगे मेरी अफ्रीका के साइड अफ्रीका के कपड़ी लोन भगे देशवा छोड़ के भैया मिखरांतन बोले है गा स्पानिंग रोंदे इली खाले मिखराचिस आइट अफ्रीका लूपस नल ओप न्यू अ न्यूवा अंती मिखराची बवीकिंग एस दात मेंसे सोंदर गेल्दिगे verblijvers kunnen het land uiterlijk 30 juni verlaten. In de verschillende gebieden worden huizen van migranten in brand gestoken en winkels geplunderd. Migranten uit onder meer Malawi, Mozambique en Zimbabwe slaan of vlucht Oesebra Zuid-Afrika mee. De regering van Mozambique meldt dat 5 Mozambique-burgers zijn gedood. Over 29-jarige Admibi. तो हुआ पे सब भग भग तो जाने हैं जैसे बांग्लादेश के आदमी जाइए इंडिया में लुकान रहा भैया जब से मोदी सरकार आए ले सब भंगले हैं ऐसे ही फ्रंकराई यानी कि साउथ अफ्रीका के बातचीत हो रहा है फ्रस्टासियन आर्म वेकन बतावे हैं डेमोस्ट्रेशन फॉर ऑल लोग पर फन ओम खान जैन तो ये बात है साउथ अफ्रीका के दोस्तों कि हुआ पे अब सब आर्मियन के भगे के है हमारे प्यारे प्यारे जनता अब तेल के प्राइस साका भइल है भैया बाकी यहाँ तो आज कोरोत फिन दगा उल भइल है तो बोले दालंद ओली प्राइस बीट फॉर लिफ्टिंग मार ब्लेव क्रूशियल फॉर इकोनॉमियन सो आज गुयाना त्रिनिदाद एंड सुरीनाम बोले ये तेलवा सस्ता जाए कि देशों के कम तेल को मा आए बोले न ऑन्टविकलिंग जो इंटरनेशनल तेल के बारे में बोले इकोनॉम बोले गायना त्रिनिदाद तो वही को बोले तू कॉम्स्ट के जो तेल उतरनामे मिले है बोले स्पानिंग है रोंद स्ट्राद हॉर्मुस में बोले लेकिन अफ तो नहीं मन कि ओली ट्रांसपोर्ट ग्रोथ दिल से हरफात बोले ये तेल उन फिन जाए लगल है तो बोले प्राइस सका हुई से ओली प्राइस इन द अफ्लोपन दागन तुरक फालन नार द नीफो फॉर द recente crisis in Midden Oosten. Bole je tel wat cool je is als taal. Het is een paitje aan mijn eigen bijna. De kabel oliemarkt internationale. Ke voorzichtig bole he. Bole Amerika, Iran mogelijk. Bole Pino. Elkaar gesprek begeel he. Tegelijkertijd blijven beleggers alert. Omdat straat van Hormuz. Waar ongeveer 1/5 van de wereldwijde olie export passeert. Een van de belangrijkste knelpunten in de modele. Energievoorzieningen blijven elke verstoring van de olieprijs opnieuw sterk doen oplopen mensen. Toen hoi ik hier aan het nieuws aanplukken betreft, Amerika vindt dat ik zoek er deze, jane Rusland, jane ki Iran mee. Dus mogelijk dat die olieprijs weer omhoog gaat. Alles is mogelijk mensen totdat die oorlog is. एक बाप और बेटवा के बात है भैया एगो नीदरलैंड्स एंड स्पेन्स पॉलिसी एगो 44 यार के आदमी के और एगो 22 यार के ओकर बेटवा के पकड़ी से ई सब ड्रग्स हैंडल करता पैसा वेतवास करता भैया बपुआ के स्पाय में पकड़ी से बेटवा के हालात में पकड़ी नीदरलैंड में बपुआ भैया स्पाय में से बन होके खोजत ओके घरवे में जाए के पकड़ी से तो यहाँ बताए गए हैं सर रेस द फाक इस स्पाइन जाना था लुक्स लीफ हमारा सबके भैया और बोलेगा नीखन फिर तक यार का रूरमोन पे रहता और एक एन अंतिम तक यार का फ्राउ अब का पाक उग में से दानास वेट न फर्दाख्त इन बेल्की उग आन खाओदन तो इस सब के भैया ऑनकफेर 5 मिलियन रहा 4 पंदन में वार्डे फन ऑनकफेर 5 मिलियन दार वेदन 5 फुर्तेगन अलस इस बसलाख कनोमन नीदरलैंड trof de politie ook contant geld van 1,5 kilo goud aan. Spanje nam de politie meerdere telefoons in beslag. Op collega 5 personen worden verdacht mensen. Op het AW uit witwassen van criminele gelden 3 in Nederland. Opgepakt verdachten worden 2 juli voor gelijk natuurlijk mensen. Zo gaat het een beetje. Kala dhanda kariyo. Beko Iran ja, pin Qatar mee. Gesprek kare. जा है गस्प्रेक करे भैया कतार में वूस दाख के नर कतार अम तो प्रातन कि जितना उस सबके तखूत फ्लोर भैले चाहे सबके छोड़े के दिशा इन वोट फूर द इनांस मिनिस्टर बोले हैं स्टीफ विटकॉफ बतावे मंगलवार के समान आएंगे कतार में और हुआ पे समान बातचीत करेगा मैं ईरान मेल द रखेरिंग फान द इमीरात
onder de bemiddelaars is premier Qatar Mohammed bin Abdul Rahim El Thani. Qatar speelt net als Pakistan een belangrijke rol in de relatie tussen Amerika en Teheran. Zo exploiteerden de twee landen samen een groot gat.

आखिरी समाचार आप लोग को सुनाएंगे भैया। सूरीनाम की ओर हम जा रहे हैं। फरियारी हुए भैया तो खबाक कटा है, खबाक कटा है सूरीनाम में, बोले तार्थ का कटा है। और यहाँ पे एगो आदमी अपन औरत और बिटिया के काटार दाख के रोज भैया ये बातचीत हुए है, मिसांदल भइल है, ये मिसांदल भइल है भैया। फरियारी रहा एक बिटिया भैला 18 बरिस के, तो ओकर फरियारी रहा तुतली फौ कनाल वेख के बातचीत है। एगो त्वेन फे तक यार के औरत के और त्वेन त्वेन त्वेन तक यार के बिटिया के बाप या आदमी भूखी से छुरी से भैया पहले ताकताकी भइल है, वो द विसलिंग भइल है, ट्यूशन द फ्रो एंड नमान उतरे में एस्कालेर हो गए झगड़वा इतना जाना कि छुरी से अदमिया औरतिया के भूखी से और बोले बिटियों के हाथ में भूखी से दोनों गैल है भैया और गैल है अने का बोले हिसिकन हिस में और बोले अख्तिन यार रख दिया रखवास एफनील उकर 18 बजे के फ्री दिन भी आयला ओहू सब ऐसी दिन तो अमी माँ के ओहू सब में सांदल भइल है ओहू सब के चोट लगल है। तो तू ये फिर तक यार रख औरत 22 बरिस की बिटिया एम्बुलेंस सब के ले गए है गांड फ्रॉ लिपस्टिक वंदन ऑफ ऑन हर बीन एंड्रो मार डॉक्टर वेन इन हर आर्म कस्टोकर ओवर द एनस्ट फन फॉर वार्निंग इज फॉर आल्सो नीड बकेन ना द इंसिडेंट फॉर द फर्दाखते द प्लांट्स है री वेग इन द ग्रीस ट्यूटा हरियर फन सेन फ्रॉ औरत ये के ऑटो लेके और उछल गए है। तो दोस्तों इसी गीत से है हम आज के समाचार आपको जो सुनाए हैं और खत्म करते हैं। एक घंटा करीब हो चुका है दोस्तों, सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम नमस्कार और प्यार भरी अदाब। सत श्री अकाल जॉनी नंबर 1 है हमारा नाम।

बालमुआ के बालम और बालमुआ के बालम के बाद हम क्या लाते हैं दोस्तों, भोजपुरी सॉन्ग के मूड में आज हम हो गया है फिर से एक और हो जाए शिवानी सिंह का।

और पवन सिंह पावर स्टार पवन सिंह का भोजपुरी सॉन्ग है। अब लोग को हम कुछ मिक्स मक्स चलाएंगे, कुछ भोजपुरी कुछ बॉलीवुड सॉन्ग। और यहाँ पे नील कमल सिंह और क्या सुनाते हैं लड़की, ये लड़की क्या है दोस्तों, लड़की दीवानी।

दीवानी नील कमल जिंगा ये सॉन्ग है। तो अगला गीत क्या है दोस्तों, पवन सिंह अस्यल्पा राज का ये सॉन्ग है।

और दोस्तों पवन सिंह का ये सॉन्ग है जो आप लोग को सुनाए हैं और आगे चलते हैं तमन्ना बतिया। तमन्ना बतिया क्यों?

ही देंगी। बोले पहले सॉरी तो बोल। तो सॉरी कब बोलेंगे दोस्तों? जब सॉरी के कुछ काम, तो सॉरी बोलना कब? जब आप कुछ कसूर करेंगे।

0: कि एक बरसाती में रहने वाला।
1: और ये सॉन्ग थी दोस्तों, ये सॉन्ग थी दोस्तों।

और चना दूर गरम बाबू मई तो लाई है कौची मजेदार लाए ही। और उस्तादों के उस्ताद हरीश बाले का गीत आपको हम सुनाए है दोस्तों। तो कुछ आज लोकल सॉन्ग आपको हम सुनाएंगे। तो हम चलते हैं राम प्रसाद राम खेलावन के ओर, वो क्या गाते हैं।

और कठिनी भिनी छोरा। तो ये गीत हम आप लोग को सुना दिए हैं हमारे दोस्तों। उसके बाद हम चलते हैं और पातर मोरे लग्या रॉबी गोगार इस गीत को गाए हैं। चलो सुना जाए।

सुगनवा तू और पांती मोरा ले जान, सुगनवा तू कुछ लोकल सॉन्ग आप लोग को हम आज सुनाएंगे हमारे यारो। तो कुछ बैठक गाना और लोकल सॉन्ग अपने पुराने पुराने कलाकार सुरीनाम के हम याद करते हैं और उसमें से एक कलाकार थी श्रीमती औधराजी घिसई डूबे उस्ताद हरीश बाल के साथ मेरे साथ साथ श्री राम प्रसाद राम खेलावन और मेरे ख्याल से ढोल बजाए थे रकीब ने। दोस्तों आओ सुना जाए।

औरो सरजू में करो स्नान श्रीमती औधराजी घिसई दूबे उस्ताद हरीश बालक साथे साथ श्री राम प्रशांत राम खेलावन रकीब जी भी उसमें उस्ताद को उस्ताद है दोस्तों। तो हम चलते हैं उस्ताद देवा के ओर। देवी दीन घोरई इसका असली नाम है और जिसे लोग देवा के जान से जानते हैं, बहुत मशहूर थे अपने जमाना में, अभी तक उसका गीत बहुत लोग पसंद करते हैं। तो आओ चला जाए उस्ताद को उस्ताद देवा क्यों रे।

पुकारा करे देवी दीन गुराई, जिसे लोग डेबा के नाम से जानते दोस्तों। और इसे पुराने उस्तादों का गीत आप लोग को हम आज सुनाएंगे, उसके बाद हम चलते हैं और बैठक गाना। और उस्ताद वो है जगदीश, जगदीश है दोस्तों। और ये कौन जगदीश है जो गाए है चिरैया बिन बोले, चिरैया बिन बोले, और ये जगदीश गाए है दोस्तों। तो जगदीश का ये सॉन्ग आओ सुना जाए।

और चिड़ैया बने बोले मैं ना जाऊंगी, भैया बोले हम ना जाऊंगी। तो उसके बाद हम चलते ही एक गीत है, ये गीत बहुत मशहूर थे, सूरीनाम देश में बहुत मशहूर गीत थे, और वो है शुकी अक्कल का दोस्तों। और हम खुद ही इस गीत को बहुत दिन हो चुका है नहीं सुना है, और आज रेडियो फाहून के माध्यम से हम आपको सुनाने चाहते हैं, और वो है सुकी अक्कल का ये जोंग है।

Als er maar een goeie is, dan gaat het om wie dan ook mensen. Tja he, jo bhi mile, lekin acha hona chahiye. To ye baat hai, suki kal ka zong, dosto, koi zamana mein. Aur wo ani bodha. शायद पुराने लोग की तो पता होगा, हमारा यंगर को शायद मालूम बहुत कम होगा, लेकिन आनी बोधा भी अपने ज़माने में अपने समय पे बहुत पॉपुलर थे भैया। कौन ऐसन जगह पे आनी बोधा का गीत नहीं होते थे, तो आप लोग को हम चलते हैं एक गीत की ओर। फन आनी बोधा का ये सॉन्ग है।

और याहू दोस्तों, क्रिस राम खरवान की आवाज में आप लोग सुना है, और जितने हमारे लोकल उस्ताद है सबके नाम लेकर हमारे उस्ताद को उस्ताद क्रिस राम खरवान आपकी सुनाए हैं। तो हम चलते हैं बैठ गाना रिमिक्स।

दोस्तों दोस्तों दोस्तों, और हमारा बैठक गाना के प्रोग्राम तो हम जोर तोर से चलाते हैं, और एक हो जाए कृष्णराम खिलावन की जोंग।

दोस्तों कहते हैं कि दूसरों के दिल में आप जो स्थान रखते हैं वही आपकी वास्तविक दौलत कहलाते हैं।

और सुनने वालों, मनुष्य को ठंड और घमंड दोनों के विचार सहना चाहिए, क्योंकि दोनों ही परिस्थिति में इंसान अकड़ जाते हैं। लता मंगेशकर जी की आवाज में हम सब सुनेंगे एक सुंदर सा गीत जो उन्होंने एक कॉन्सर्ट में गाए थे।

जिंदगी एक सफर है सुहाना, ये सुंदर सा गीत हम सब सुने। और सफर, जिंदगी और सुहाना, ये तीनों चीजों जो साथ में हैं, तो कहा जाता है दोस्तों कि सबसे तेज वही चलता है जो अकेला चलता है।

सबसे तेज वही चलता है जो अकेला चलता है, लेकिन दूर तक वही चलता है जो सबको साथ लेकर चलता है।

कुछ सुंदर सुंदर गीतों के साथ जरूर मैं आपके साथ देंगे। और जो किसी से वादा किया होंगे, तो अगर आपने वादा किया है तो जरूर उस वादा को भूलना नहीं।

दोस्तों कहते हैं कि अगर छोटी छोटी बातों को बड़ा बनाओगे तो आपका बड़ा परिवार छोटा होता जाएगा।

एक वक्त जीवन में ऐसा भी आता है जब इंसान को अपने सच्चे और अच्छे होने पर भी पछतावा होता है। दोस्तों, कभी इस बात पे ध्यान दिए है आपने, या कभी आपने ऐसा कुछ किया है जो आप निभा नहीं पाए? क्योंकि कभी काल के हम कहीं किसी से वादा भी कर लेते हैं और वादा को नहीं निभा पाते हैं, तो क्यों ना वही गीत की ओर हम बढ़ते हैं।

आशा भोसले एंड किशोर कुमार, ये सुंदर सा गीत में और जो अपने कलाक से प्रदर्शन दिए देवानंद और हेमा मालिनी ने। कहते हैं कि झूठ बोलने से पाप लगता है, झूठ बोलने से पाप लगता है और सच बोलने से आग लगता है। दोस्तों, ये फाउन हिंदुस्तानी रेडियो है, शहर जिसे हम दनहाक कहते हैं वहां से ब्रॉडकास्ट किया जाता है।

दोस्तों, ये कहा जाता है कि उम्र कितना भी लंबी क्यों ना हो, हमारे उम्र कितना भी लंबी क्यों ना हो, लेकिन जिंदगी रोज कोई ना कोई सबक जरूर सिखाती है।

दोस्तों, ये तो आप सुने होंगे कभी कि जिंदगी की हर ठोकर ने बस एक ही सबक सिखाया है। जिंदगी की हर ठोकर ने बस एक ही सबक सिखाया है कि रास्ते कैसा भी हो, सिर्फ अपने पैरों पर भरोसा रखो।

अनुराधा जी के आवाज़ में हम सब सुने रहे ना रहे हम। दोस्तों, ये कहानी भी शायद आप सुने होंगे कभी कि शीशे की अदालत में पत्थर की गवाही। शीशे की अदालत में पत्थर की गवाही, कातिल ही लुटेरा।

ये सुंदर सा गीत छूकर तेरी मन को। और दोस्तों, ये मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि समय एक ऐसा घड़ी है जिसमें ब्रेक भी नहीं और रिवर्स गियर भी नहीं, यानी कि समय पीछे को कभी नहीं जाता है, आगे को बढ़ते रहे और बढ़ रहे हैं और बढ़ते रहेंगे ना। समय पे ध्यान देते हुए एक गीत आपके साथ चलाएंगे और फिर हम आपसे विदा लेंगे।

क्या खूब फरमाए हैं बॉलीवुड लेटेस्ट सॉन्ग्स के साथ। मैं हूँ आपका सेवक संजय और कुछ ऐसा नया नया गीतों के साथ आपके साथ जुड़े रहेंगे। आप सुन रहे हैं फाहून हिंदुस्तानी रेडियो, इंटरनेट द्वारा दुनिया के हर एक प्रांत में सुना जा सकता है।

दोस्तों, कहा जाता है कि सुख चाहते हो तो रात में जगाना नहीं, शांति चाहते हो तो दिन में सोना नहीं, सम्मान चाहते हो तो व्यर्थ में बोलना नहीं, और प्यार चाहते हो तो अपनों को छोड़ना नहीं। बात के लिए मैं संजय आपके साथ जुड़ गए हैं। कुछ बॉलीवुड न्यू सॉन्ग्स के साथ

फिल्म साहिबा से निकाला गया। ये फिल्म जो 2025 का सॉन्ग्स में बिलोंग होता है और बॉलीवुड में जो हर साल में लगभग लगभग 2000 फिल्मों बनाया जाता है, जब देखा जाए कि 2017 में कहा जाता है कि इंडिया से सिनेमा 1986 स्पेलफिल्म्स जो बनाए थे, वारफन het grootste aantal 364 in het Hindi was,

थ्री टू से निकाला गया ये सुंदर सा गीत जो बॉलीवुड 2025 के सॉन्ग लिस्ट में बिलोंग होते हैं।

खेल खेल फिल्म का नाम और दलजीत के आवाज में ये सुंदर सा गीत सुनने को प्राप्त हुआ। दलजीत जो एक पंजाबी सिंगर

2024 में अपना कॉन्सर्ट एम्स्टर्डम डोम में भी दिया। और दोस्तों, किसी ने कहा है कि आप अपना दिन इतना सुंदर बनाइए, इतना खुश रहो कि दुनिया वाले भी परेशान हो जाए कि इसे किस बात की खुशी है।

0: 2025 में रिलीज हुए ये फिल्म। सुनने वालों, हमारे देश में भी कुछ पुरानी फिल्मों जो चलाया जाता है गर्मी महीना में और बायोस्कोप में, तो कुछ फिल्मों के नाम अभी मैं आपके साथ जरूर शिकर करेंगे बायोस्कोप में। और जैसे पुरानी फिल्मों का नाम मैं शिकर करता हूं तो शोले, सिलसिला, इस प्रकार की फिल्मों, खास करके इस साल सूरीनाम में भी ऐसा कुछ किया जाए। तो अगर आपके मन में भी ऐसा फिल्म फेस्टिवल देखने का इच्छा है अगर आपके पास इंटरनेट है तो जरूर गूगल महाराज पे और सर्च कीजिए कि इस साल कौन कौन सा फिल्म आपके लिए रखा जाएगा। क्योंकि हमारे देश में ऐसा और प्रोग्राम को बनाया जाता है और इसी तरह से सूरीनाम में भी अगर आप वेकेशन से गए होंगे तो गर्मी महीना में हर साल की तरह इस साल भी कुछ कार्यक्रम को रखा जाएगा।
1: यीशु के बगैर ये शंभू

0: स्वराज के बारे में आप हमसे ज्यादा सोचती हैं।
1: क्योंकि सखी इस महल में नहीं अपने श्री के मन में रहती है।
2: अरिजीत सिंह जी के आवाज में ये सुंदर सा गीत सुनने को प्राप्त हुआ। एक फिल्म जो रिलीज हुआ 2025 में, विकी कौशिक जी ने अपना कला से अभिनय किया।

सुनने वालों, ये भी एक गीत निकाला गया 2025 फिल्मों में से। समय के ओर जब देखा जाए कि किस ओर बॉलीवुड भी जा रहे हैं, और कहा जाता है कि 2024 में काफी बड़े बड़े फिल्मों निकले।

समय से सब कुछ मिलता है, समय से सब कुछ मिलता है, समय से पूर्व की चाहत और दुख का कारण बनती है। एक और बॉलीवुड का प्लेलिस्ट 2025 के ओर हम बढ़ेंगे।

हाउसफुल फाइव से निकाला गया ये सुंदर सा गीत कॉमेडी फिल्म जिसमें अक्षय कुमार, अभिषेक बच्चन, रितेश देशमुख, फर्नांडिस, ढेर सारे फिल्म एक्टर्स इस फिल्म में अपना अभिनय दिए हैं। दोस्तों, शायद आपने कभी ये प्रश्न नहीं किए होंगे, पर यहाँ जब देखा जाए कि बॉलीवुड एक ऐसा बड़का फिल्म इंडस्ट्री है जिसमें कहा गया है कि लगभग एक फिल्म में 4 गीतों के साथ मिनिमम रखा जाता है, और हम जब गिनती में देखें कि 500-600 फिल्म तो साल में बनी जाते हैं, और उसे जब हम 4 से जोड़े तो लगभग 2400 गीतों का तैयारी हो जाता है साल भर में। उसे हम जब आगे जोड़े लगभग 15 साल से तो 36,000 सॉन्ग्स हो जाते हैं।

एस 2025 में से निकाला गया ये सुंदर सा गीत। द फर्स्ट सॉन्ग रिकॉर्डेड इन इंडिया बाय गौहर जैन इन 1902। गीत जो रिकॉर्ड किया गया 1902 में। एंड द फर्स्ट बॉलीवुड फिल्म अलम आरा 1931।

शायद इस बात को भी आप जानते होंगे। उस समय के बाद जो हमारे समय आते थे, इन दे यारे 60, दे यारे 70, दे यारे 80 एंड 90, जिस समय कैसेट टेप्स के समय कहा जाता है, ऑनलाइन स्ट्रीमिंग तो बस 2000 से शुरू हुआ। सैदी के बाद

आप खुश हो अच्छे बात है, आपकी वजह से कोई खुश हो ये सबसे अच्छी बात है।

दोस्तों सॉरी बोलने में कंजूसी मत करना। कोई कभी ऐसा होता है। ऐसा होता है कि अपना हार मानने को नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है कि 70 साल से भी ज्यादा होने पे एक दूसरे से और बिखर जाते हैं। बस यही कि सॉरी कहना नहीं आता है। तो दोस्तों सुन लो, इसमें कंजूसी ना करे। यहां तक था मैं आपका सेवक संजय। कुछ बॉलीवुड सॉन्ग्स 2025 के लेकर, शायद हमारे समय का नहीं हो, पर हम इसी समय में जी रहे हैं। Wish you a very good day.

सभी सुनने वालों को मेरी ओर से नमस्कार। मैं हूँ आपकी सेविका बबली आसरा। मैं आज आप सबके लिए एक प्रोग्राम लेकर आई हूँ जो धर्मेंद्र जी के ऊपर है।

सुनने वालों, आप सभी को मालूम है कि धर्मेंद्र जी अब हमारे बीच नहीं रहे। वो एक इतने महान कलाकार थे कि मैंने सोचा आज उन्हीं की जीवनी के ऊपर मैं आपको कुछ सुनाऊं।

तो मैं अपना प्रोग्राम शुरू करती हूँ सुनने वालों। धर्मेंद्र जी का पूरा नाम धर्मेंद्र सिंह देओल था। वह 8 दिसंबर 1935 फगवाड़ा कपूरथला जिला में पैदा हुए। एक छोटे से गांव सानेवाल में पैदा हुए।

धर्मेंद्र जी ने लुधियाना के लालटन कला स्थित सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल से 12वीं पास की। इसके बाद वह एक्टर बनने का सपना लेकर मुंबई पहुँचे।

धर्मेंद्र हिंदी और पंजाबी फिल्मों के एक अभिनेता थे और इनके बेटे बॉबी देओल और सनी देओल भी अभिनेता हैं। धर्मेंद्र जी ने अपने कैरियर में कई हिट फिल्में दी, जिनमें शोले, धर्मात्मा, लोफर, यादों की बारात, फूल और पत्थर, जंजीर, बर्निंग ट्रेन, गुलामी, आग ही आग, तहलका, यमला पगला दीवाना जैसी कई हिट फिल्में दी, जो एक्शन, रोमांस और कॉमेडी का बेहतरीन मिश्रण है, और उन्होंने ही मैन के रूप में अपनी पहचान बनाई। और उनकी अच्छी फिल्मों में चुपके चुपके, सत्यकाम, हकीकत, यादों की बारात भी शामिल है।

सुनने वालों, ये जो आपने गीत सुना ये फिल्म थी ब्लैकमेल, और इसमें धर्मेंद्र जी और राखी गुलजार ने काम किया था। उस टाइम पे ये फिल्म चली और इसका गाना भी खूब चले, और धर्मेंद्र जी एक चॉकलेटी हीरो कहलाए। सब लड़कियाँ उनकी इतनी दीवानी हो गई क्योंकि वो इतने खूबसूरत लगते थे।

धर्मेंद्र ने हिंदी सिनेमा पर 6 दशक तक राज किया। 60 सालों के भीतर उन्होंने 300 से अधिक फिल्में की। शुरुआत में रोमांटिक हीरो तो फिर एक्शन हीरो के रूप में भी वे खूब सफल हुए।

0: के कैरियर की सबसे हिट और हिंदी सिनेमा में अमर हो चुकी फिल्म शोले में उनका वीरू का रोल आज भी याद किया जाता है। इस फिल्म में धर्मेंद्र और अमिताभ बच्चन की जोड़ी लोगों ने इतनी पसंद की सुनने वालों कि उसके डायलॉग आज भी लोगों को याद आते हैं।
1: जो मजनू ने लैला के लिए किया था, रांझा ने हीर के लिए किया था, रोमियो ने जूलियट के लिए किया था। सुसाइड, सुसाइड।
2: अरे भाई, ये सुसाइड क्या होता है?
3: अंग्रेज लोग जब मरते हैं तो उसे सुसाइड कहते हैं।
2: लेकिन ये अंग्रेज लोग मरते क्यों हैं?
3: वो
2: अरे भाई, बात क्या है, तुम सुसाइड क्यों करना चाहते हो?
1: ये मत पूछो चाचा, तुम्हारे आंसू निकल आएंगे। ये बड़ी दुख भरी कहानी है। इस स्टोरी में इमोशन है, ड्रामा है, ट्रेजेडी है। ये बसंती है ना, इससे मेरा लगन होने वाला था चाचा, लेकिन इसकी बुढ़ी मौसी ने बीच में भांजी मार दी। अब मैं इस दुनिया में नहीं रह सकता। गांव वालों, तुमको मेरा आखिरी सलाम। गुड बाय, गुड बाय।
2: अरे भाई, ये गुड बाय क्या होता है?
3: अंग्रेज लोग जब जाते हैं तो गुड बाय कहते हैं।
2: लेकिन ये अंग्रेज लोग जाते कहाँ हैं?
1: गांव वालों, मैं जा रहा हूँ। भगवान, मैं आ रहा हूँ। रुक जाओ, तुम लोग जोर देते हो, थोड़ी देर रुक जाता हूँ।
4: अरे वाह, अरे तुम कैसे दोस्तों, तुम यहाँ बैठे हो?
5: क्यों, क्या हुआ?
4: मुझे क्या मालूम क्या हुआ, वो देखो तुम्हारा दोस्त कहाँ चढ़ गया। देखो,
1: मेरा दिल भर चुका।
4: देखा, देखा तुमने?
5: हाँ देखा, कुछ नहीं होगा। जब दारू उतरेगी तो ये भी उतर आएगा।
4: क्योंकि मैंने एक से एक जाले देखा, मगर तुम्हारे जैसे पत्थर का दोस्त नहीं देखा। जो
1: इसलिए मैं जानते करूंगा, लेकिन एक बात सुन लो गांव वालों, जहां कोई प्रेमी जान देता है वहां भयंकर किस्म की मुसीबतें आती है।
2: कैसी मुसीबतें आएंगी?
1: अकाल, सूखा, चेचक, हैजा, और ये सब इस बुढ़िया की वजह से आएंगी। इस बुढ़िया की वजह से। देख लेना गांव वालों, When I dead, police coming, बुढ़िया going jail, in jail, बुढ़िया चक्की pissing and pissing।
2: अरे मौसी, हाँ कर दो, नहीं तो ये जान दे देगा।
4: अरे कैसे हाँ कर दो देना नाथ जी?
1: अरे गांव वालों, इस बुढ़िया से दरखास्त की कोई जरूरत नहीं। अब मैं रुकने वाला नहीं हूँ, मैं जानते करूंगा। एक, दो, तीन।
4: मौसी, मौसी हाँ कह दो ना।
6: तो कोर्ट कचहरी का चक्कर हो जाएगा मौसी।
4: अरे भैया, मैं तो कभी कोर्ट कचहरी नहीं गई।
6: हाँ कह दो मौसी।
4: हाँ, जीरो, ठहर जा, मैं तैयार हूँ।
2: मौसी ने हाँ कह दी भाई, नीचे आ जाओ, आ जाओ।
1: मौसी से कौन शादी करेगा सालो? मुझे तो वो धन बसंती से शादी करनी है। बसंती से?
4: वीरू, मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ, अब नीचे आ जाओ।
1: अरे गांव वालों, सुना तुमने भाइयों, मौसी भी तैयार है, बसंती भी तैयार है, इसलिए मरना कैंसल। मैं नीचे उतरता हूँ मौसी। मौसी जी, मैं नीचे उतरूंगा।
0: सुनने वालों, अभी आपने ये जो डायलॉग सुना, ये फिल्म शोले से लिया गया, और ये मौसी वाला डायलॉग इतना हिट हुआ कि आज जब भी शोले का नाम लिया जाता है तो लोग इस डायलॉग को खूब पसंद करते हैं। सुनने वालों, अब मैं आगे चलती हूँ। सुनने वालों, धर्मेंद्र को किस फिल्म ने सुपरस्टार बना दिया? 1960 के दशक में वह दिलीप कुमार और राजेंद्र कुमार के बाद तीसरे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता थे। उन्होंने उस दशक में 15 हिट फिल्में दी और 25 सफल रहीं, जिसमें फूल और पत्थर धर्मेंद्र जी की सुपरस्टार बना दिया।

धर्मेंद्र जी ही मैन के नाम से मशहूर हुए। उन्हें पद्म भूषण और फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया।

0: धर्मेंद्र ने अपना फिल्मी करियर भले ही साल 1960 में शुरू किया था, मगर फिल्मों में आने से पहले वो शादी कर चुके थे। धर्मेंद्र ने साल 1964 में प्रकाश कौर से शादी कर ली थी, यह अरेंज मैरिज थी।
1: होठों पे रंगत है, दिल में मोहब्बत है, क्या जिसमें औरत है, बस जन्नत ही जन्नत है।

धर्मेंद्र के कुल 6 बच्चे हैं। पहली पत्नी प्रकाश कौर से सनी देओल, बॉबी देओल, विजेता देओल और अजीता देओल हैं, जबकि दूसरी पत्नी हेमा मालिनी से ईशा देओल और अहाना देओल हैं। उनके 2 बेटे सनी देओल और बॉबी देओल अभिनेता हैं, जबकि बेटियां विजेता, अजीता, अहाना फिल्मों से दूर रहती हैं। एक बेटी ईशा देओल फिल्मों में काम करती थी।

धर्मेंद्र जी ने 1980 में जब हेमा मालिनी से शादी की तब वो शादीशुदा थे। उनकी पहली पत्नी प्रकाश कौर थी जिनसे 19 साल की उम्र में उनकी शादी हुई थी। उन दिनों ऐसी अफवाहें फैली कि एक्टर ने इस्लाम धर्म अपना कर हेमा जी से निकाह कर लिया।

बॉलीवुड के एक्शन किंग के नाम से मशहूर अभिनेता निर्माता धर्मेंद्र ने अपने अभिनय की शुरुआत फिल्म दिल भी तेरा हम भी तेरे जो 1960 में बनी थी उससे की। इसके बाद वह फिल्म बॉयफ्रेंड 1961 में सहायक भूमिका में नजर आए।

धर्मेंद्र जी की कुछ अन्य फिल्में हैं अनपढ़, जिसमें उन्होंने माला सिन्हा, बलराज सहनी और बिंदु जी के साथ काम किया।

सुनने वालों, आप सबको तो पता है कि उस ज़माने में धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की जोड़ी बहुत हिट हुई और उनकी फिल्में भी खूब हिट हुई, जैसे शोले, आसपास, सीता और गीता, जो भी उनकी फिल्म आती, ड्रीम गर्ल, चरस, इन सब फिल्मों में उन्होंने अभिनय किया और वो सब फिल्में हिट साबित हुई सुनने वालों।

उस समय धर्मेंद्र जी की जोड़ी सिर्फ हेमा मालिनी के साथ ही नहीं, राखी गुलजार, आशा पारेख, अनीता राज और भी बहुत सारी अभिनेत्रियाँ जिनके साथ हिट हुई। और सबसे पहले तो उनकी फिल्म मीना कुमारी जी के साथ बहुत हिट हुई थी। धर्मेंद्र जी ने अगर शुरू में बहुत सारी हिट फिल्में दी तो आखिर भी उन्होंने बहुत सारी हिट फिल्में दी। जैसे 1990 से 1992 तक उनकी सफल फिल्मों में नाकाबंदी, वीरू दादा, हमसे ना टकराना, कोहराम, तहलका शामिल है, जो एक मुख्य अभिनेता के रूप में उनकी आखिरी हिट फिल्में साबित हुईं।

24 नवंबर 2025 को इस दिग्गज अभिनेता का निधन हो गया, जो एक कम 90 साल के थे।

धर्मेंद्र के एक भाई भी थे और वो उन्हीं की तरह एक्टर थे। धर्मेंद्र के भाई का नाम अजय सिंह देओल था और उन्हीं के बेटे हैं अभय देओल, वो भी फिल्मी एक्टर हैं।

सुनने वालों, ये जो अभी आपने गीत सुना, ये फिल्म दो चोर से लिया गया। इसमें धर्मेंद्र जी और तनुजा ने काम किया। धर्मेंद्र जी की आखिरी फिल्म है 21, जो एक वार ड्रामा है और जो 25 दिसंबर 2025 को रिलीज़ होने वाली है, जिसमें उन्होंने परमवीर चक्र विजेता अरुण खेत्रपाल के पिता का किरदार निभाया है। लेकिन दुर्भाग्यवश धर्मेंद्र जी का निधन फिल्म की रिलीज से पहले ही हो गया और वो इस फिल्म को नहीं देख पाए। सुनने वालों,

अपने निधन से पहले धर्मेंद्र जी अपने फार्म हाउस में रहते थे सुनने वालों, और वहीं पे वो थोड़ी खेती बाड़ी करते और ताज़ी ताज़ी फल सब्जियां उगाते और उसी को ज़्यादातर वो उपयोग में लाते थे। अब बॉम्बे वाले घर में वो थोड़ा कमती रहते थे क्योंकि फार्म हाउस में खुली हवा, खुला वातावरण उनको काफ़ी पसंद आता था सुनने वालों।

फिल्म यमला पगला दीवाना 2011 में प्रदर्शित हिंदी हास्य फिल्म थी, जिसमें धर्मेंद्र, सनी देओल और बॉबी देओल ने काम किया। सुनने वालों, धर्मेंद्र जी ने चरित्र भूमिकाओं में भी काम किया। 1990 के दशक में उनको एक स्वर्ण युग कहा जाता है। ऐसी भूमिका में उनकी पहली फिल्म थी सोहेल खान की रोमांटिक कॉमेडी फिल्म प्यार किया तो डरना क्या, जिसमें उन्होंने सलमान खान, काजोल और अरबाज खान के साथ काम किया।

उनकी अन्य फिल्में हैं कैसे कहूँ के प्यार है, किस किस की किस्मत, लाइफ इन मेट्रो, जॉनी, गद्दार। 2023 में उनकी फिल्म आई करण जौहर की रॉकी और रानी, जिसमें उन्होंने शबाना आज़मी जी के साथ काम किया।

धर्मेंद्र जी ने हिंदी के अलावा पंजाबी और बंगला फिल्म में भी काम किया है। सुनने वालों, राजनीतिक, धर्मेंद्र ने 2004 से 2009 तक राजस्थान के बीकानेर से भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा सांसद के रूप में भी कार्य किया। धर्मेंद्र जी ने फिल्मों का निर्माण भी किया। सुनने वालों, 1983 में धर्मेंद्र जी ने विजेता फिल्म्स नामक एक प्रोडक्शन कंपनी की स्थापना की, जिसका नाम उन्होंने अपनी सबसे बड़ी बेटी के नाम पर रखा। 1983 में रिलीज़ हुई अपनी पहली फिल्म बेताब में विजेता फिल्म्स ने धर्मेंद्र के बड़े बेटे सनी देओल को मुख्य भूमिका में लॉन्च किया। यह फिल्म उस वर्ष की दूसरी सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म थी। 1990 में उन्होंने एक्शन फिल्म घायल का निर्माण किया, जिसमें सनी देओल ने भी अभिनय किया था। इस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म के फिल्म फेयर पुरस्कार सहित 7 फिल्म फेयर पुरस्कार भी जीते। इसे संपूर्ण मनोरंजक प्रदान करने वाली सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी मिला। 1995 में धर्मेंद्र ने अपने छोटे बेटे बॉबी देओल और ट्विंकल खन्ना को लॉन्च करने के लिए बरसात फिल्म का निर्माण किया, जो उस समय तक बनी सबसे महंगी भारतीय फिल्म थी। यह फिल्म सुपरहिट साबित हुई और आज तक यह पहली और एकमात्र ऐसी फिल्म है जिसमें नए कलाकारों को लिया गया था।

सुनने वालों, अभी मैंने आप सबको थोड़ा सा धर्मेंद्र जी के बारे में बताने की कोशिश की। मेरे को लगता है कि आप सबको जरूर अच्छा लगा होगा। आगे फिर अगली बार कुछ और बताने की कोशिश करूँगी सुनने वालों।

जीवन में सभी चीज़ें एक साथ कभी नहीं मिलती। पैसे हैं तो रिश्ते कम हैं, रिश्ते हैं तो पैसे कम हैं, दोनों हैं तो सेहत कम है, और अगर तीनों हैं तो जीवन कम है। सभी सुनने वालों को मेरी ओर से नमस्कार।

स्वीट क्लिप सागर मालिक के आवाज में द चैप्टर। आज से बेहतर कुछ भी नहीं क्योंकि कल कभी आता नहीं मेरे प्यारे सुनने वालों, और आज ये पल कभी जाता नहीं।

ही रंग से और रंगूंगा। इस बार आपके लिए फिर से एक सुंदर सा गीत चुनकर रखी हूँ और चले मिलकर हम इसे श्रम

0: चक्रतुंडा महाकाया सूर्यकोटि संप्रभा निर्विधिनम कुरु मे देवा सर्व कार्यशु सर्वदा। रूबरु मिलने का मौका नहीं पा रहा हूँ, अतः शब्दों से अपनों को नमन कर लेता हूँ। प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी रूप में श्रेष्ठ होता है, इसलिए आपकी श्रेष्ठता को हार्दिक से नमस्कार करता हूँ। फाउंड रेडियो के सभी सुनने वालों को हार्दिक से नमन करते हुए एक बार फिर हम सब उपस्थित हो गए स्टूडियो में कार्यक्रम ज्योति का प्रकाश लेकर। और हमारे साथ कोई खास साथी, नाम क्या है आप खुद ही बता दीजिए।
1: साथ साथ मैं भी यहाँ से संजय जी स्वीकार कीजिए सेविका शांता की प्यार भरी नमस्कार ज्योति का प्रकाश प्रोग्राम में।
0: अभी शांता जी वही गीत चला देते हैं क्योंकि हमारा माइक तो ठीक ठाक चल रहा है, आप इधर उधर अपना माइक कर रहे हो।
1: अच्छा,
0: पर कार्यक्रम में राजेंद्र सिंह जी अभी आने वाले हैं और अनुराधा जी भी भारत से जुड़ने वाले हैं, तो क्यों ना पहले चला देते वही गीत जो हर हफ्ता के तरह, कि तेरा राम जी करे बेड़ा पार उदासी मन काहे को डड़े।
1: ये भी साथ साथ जैसे आपने कहा तेरा राम जी करे बेड़ा पार, ये ज्योति का प्रकाश के एक जान से हैगा।
0: बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। ज्योति का प्रकाश के एक जान से, क्योंकि जब शुरू हुआ था ना कहते कई साल पहले के हम लोग शुरू किए ये, हाँ, कार्यक्रम, और हम सब बैठते थे एक साथ में और ये गीत हर बार, ये कुछ 7 मिनट के गीत है भी,
1: फिर भी लगता है
0: फिर भी ऐसे ही 2 मिनट के लगता है, पर बिल्कुल ये ज्योति का प्रकाश का जान को चला दीजिए
1: जी।

0: करे।
1: तेरा राम जी करे बेरा पार, उदासी मन काहे को डरे। आज त्वे युली त्वे दायसन सेशन ट्वेंटक हो चुला
0: बेरा पार।
1: और आप सुन रहे हैं फाउन हिंदुस्तानी रेडियो
0: करे तेरा।
1: कार्यक्रम ज्योति का प्रकाश, अभी आप शांता के द्वारा और मास्टर जी राजेंद्र जी और अनुराधा जी के आवाज में सुनेंगे।

0: तेरा राम जी करे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को डरे। तो शांता जी, क्या आपको पता है कि मौसम कैसे है आजकल?
1: मौसम एकदम परफेक्ट है, एकदम परफेक्ट। इसमें कुछ कहने के और बोलने के और कुछ तुलना करने के नहीं है।
0: क्योंकि देखिए, अभी देखा जाए कि 2019 में, 2019 में ऐसे ही गर्मी हुआ था हॉलैंड में, जो ये प्रोग्राम बन रहा है 2026 में,
1: हाँ।
0: और इसे चलाया जाएगा शायद 2028 में भी और 2030 में भी। पर फिर भी कहने के तात्पर्य यह है, 2019 में ऐसे ही गर्मी हुआ था और तब उस समय लोग पानी पी पी करके और बस कोई भी अपना काट लिया। पर अब यहाँ पर आज के न्यूज में बोल रहा है कि कल कितना प्रोफेंसी में कौदर रोत है।
1: ओ, और आया से रोत हो गया,
0: रोत हो गया।
1: हाँ, कल कन्या वोंस तक था, कन्या वोंस तक से शुरुआत हो गया रहा कौदर।
0: 40 खराद हॉलैंड में होने लगा। तो अभी मैं इंडिया से बात हो रहा था मास्टर जी के साथ,
1: हाँ हाँ,
0: तो वो जो राजस्थान में थे और अभी फोन करने वाले है वो, क्योंकि वहाँ का गर्मी और यहाँ का गर्मी अब तो लग रहा है कि दोनों एक ही जैसा हो गया।
1: दिगड़ी जो है, खराद जो है, वो एक ही सा है, पर वातावरण जो है भारत का और हॉलैंड का फर्क है
0: वातावरण।
1: हाँ, कारण कि भारत में सभी सड़कों के किनारे में बहुत सा पौधा लगा है, पेड़ लगा है, तो पेड़ का अनुसार वो सड़क जो है उसको ठंडा रखता है, जो मैं नहीं पिघले, और वहाँ पे काफ़ी भी हरियाली है
0: ऐसा।
1: हाँ, और यहाँ पर हमारा नीदरलैंड में वही देखकर यहाँ पर भी बहुत सारा हरियाली लगाते हैं।
0: और देखा जाए कि कहीं नहीं, कितना खरादर पे आसफाल्ट भी गलने लगता है ना।
1: आसफाल्ट सिर्फ नहीं, हमारा बैग जो है, हमारा चप्पल जूता, वो सब गलने लगता है,
0: गलने लगता है।
1: और पहिया जो गाड़ी का पहिया, वो सब भी गलने लगता है।
0: अभी हमें ये बात, आपसे बात कर रहा हूँ तो ये ख्याल आता है कि 2019 में एक फोटो जो अखबार पे आया था, तो वो फोटो था एक सेबरा पात लगे, पर सेबरा पात गल के वो बिल्कुल सेबरा हो गया था, ऐसा सूरत हो गया था कि सेबरा पात के दलाइंच सैन आते सो रेस, पर सब गल के एकदम सेबरा बन गया था।
1: तो सोचो,
0: ऐसा है कि अच्छा, जैसे आप कह रहे हैं कि बिल्कुल मैं सहमत हूँ आपसे कि पेड़ पौधे को लगाना और ताकि ये गर्मी से हम सब भी बच पाएंगे, क्योंकि गर्मी से बचने के लिए छाया का
1: आवश्यकता बहुत आवश्यक है।
0: और छाया जब नहीं रहेगा तो हाँ, तो कम से कम एक चीज है, हॉलैंड एक देश भी है, दरहाफ में
1: जी,
0: दरहाफ जहाँ से ये कार्यक्रम बनाया जाता है, एक शहर एक हॉलैंड देश में, और जबकि ये कार्यक्रम 188 देशों तक सुना जा सकता है, पर जब देखा जाए कि खून दनहाख,
1: हाँ।
0: तो उन्होंने दनहाख में सिर्फ कई हजार पौधे लगाए जो इस साल, और ऐसे भी अन्य प्रांतों में हॉलैंड में खूब पेड़ों यानी कि पौधे को लगाया जाता है,
1: हाँ।
0: ताकि हमारा जो कैसे बोले है, जो ओजोन ना,
1: हाँ।
0: गर्म तो रहे और हमारा वातावरण के वातावरण में ठंडाई भी पहुंचे।
1: हाँ, क्योंकि ओजोन लाख जो है, आप जो कहते हैं ना, वो अपने आप बिगड़े नहीं, संतुलन वो अपने आप नहीं बिगड़ा है, वो हमारे इंसान, हम ही सब ने उसको बिगाड़ दी है। तो इसी कारण हमको वो तकलीफ सहना पड़ता है।
0: क्योंकि पहले होते थे गाड़ी A93 चलाता था, हम लोगों ने A92 वाला गाड़ी होते थे,
1: हाँ।
0: और आज अब A92 तक ये चलते हैं गाड़ी, तो अब भी मैं हम कहते हैं कि हाँ सैनिक एकदम ना
1: ना, गाड़ी छोड़ो, कितने से बदरइफ चल रहा ना, जो खेमे से स्तोफ अस्तोत कर रहे, ना सिर्फ हॉलैंड में, पूरे संसार में, तो वो सब मिलकर जो है आकाश जो है उसको खराब कर देगा। तो रेक्सरेस जो सोनस्त्राल जो ना ठीक है प्रकृति खातिर, हम लोग खातिर, हम लोग तो प्रकृति के अंश है ली, तो असर देगा अपना,
0: असर देगा अपना,
1: हाँ।
0: पर शांता जी, मौसम के छोड़ो, हॉलैंड एक छोटा सा देश है ना, छोटा सा देश है पर फिर भी दुनिया पे बड़ा बड़ा ऊंचा नाम से
1: जी,
0: दुनिया पे बड़ा ऊंचा नाम से। और कल मैं एक कार्यक्रम में थे जो कि अब देखो जो गुलामी किए हुए और जो कहते हैं जो अफस्काफिंग फ्रॉम द स्लावनाई केती कोती,
1: हाँ वो तो
0: वो भी एक, यहाँ पर कुछ
1: एक जुलाई के होता है ना,
0: नहीं
1: केती कोती हाँ,
0: तो उस पे भी होलान में कुछ उस पे भी कोई कहीं कहीं कार्यक्रम बनाया जाता है क्योंकि उसे हमें भूलना नहीं चाहिए
1: ना, वो इतिहास है,
0: इतिहास है। पर उसी में कुछ बातें मैं सुना कि मुझे ऐसा लगा कि देखो होलांद एक ऐसा देश है जहाँ पर जो कसेटा रिकॉर्डर होते थे ना,
1: हाँ।
0: जो नैसे ड्राई करके उन पतलू से ड्राई करते थे, आपको पता वो कहाँ पर वो किसने उसे पाया, कैसे वो उत्पत्ति हुआ,
1: कसेट कहाँ से उत्पत्ति, मेरे ख्याल से फिलिप्स कंपनी
0: जी, और देखा जब जाए
1: हाँ, और कसेट उसका है कैसे बोलते उसके कॉम्पैक्ट बहुसिंग में तन मैग्नेट बांध दी तुसन दो क्लाइने स्पूल्स लोप, और बहुत सोचने वाली बात है कि दिमाग उसने कैसे दोहराए कि एक बांती में स्त्रीकीय घट है उसमें दोनों तरफ गीत भरा होता है और वो माखने जो ना दिखाता है उस उसका असर ऐसे है।
0: अब ऐसा जब कहो तो हम लोग ज्योति का प्रकाश में भी कितने कार्यक्रम बनाए हैं। अब देखिए जाए जो इलेक्ट्रिक ऑटो से
1: दे,
0: अब तो इलेक्ट्रिक से फ्लिक तो कभी है, और हम लोग कितने उमेम से गहराई में जा करके कि अगस्त्य ऋषि के ये सब दत्सिंग फन अगस्त्य ऋषि, और ये देखा जाए कि जो कसेटा रिकॉर्डर है नेखतिन द्रियन सेस्तक
1: सितंबर नेखतिन द्रियन सेस्तक में इसका मतलब पैदाइश
0: हो गया
1: हाँ,
0: तो कितने लोग का जन्म भी हो गया था उस समय पे जो हमारे रेडियो सुन रहे हैं, पर नेखतिन द्रियन सेस्तक में उसका पैदाइश हुआ और इंजीनियर लॉ ओटन्स ने इसको और यानी कि इनका अपना दिमाग से इसे सोच करके निकाले जो कि आल्स होफ प्रोडक्शन ऑन्ट्विकलर बाय फिलिप्स में काम करते थे,
1: बिल्कुल
0: ना
1: जी।
0: और इसी पे जब और गहराई में जाओ जाई तो देखो कि उकरे बाद में निकल कसेटा के बाद में निकल सेदे ही ना
1: सेदे हाँ,
0: तो सेदे दैट इज ओके नेदरलैंड्स ऑन्ट्विकल नीदरलैंड्स ऑन्ट्विकलिंग उस पे जब देखा जाए कि ओकरे बाद में सेदेई के बाद में निकल जोन वाला पे फिल्म भी रख देते थे लोग देखने वाला देई फेदेई
1: हाँ,
0: और फेई सेदेई ये सब चीजों सब जान लें कि दुनिया पे होलांद ये सब कभी पे बड़ा तेज था और अभी तक तेजी है क्योंकि कितने देशों यहाँ से चिप आईडी वाला जो चीज है द्वार अलमाल नहीं दलाता उन देखकर, तो ज्योति का प्रकाश भी तो दनाख से बनता है ना,
1: हाँ दनाख से तो बनता है, पूरा संसार सुन रहा है,
0: पूरा संसार सुन रहा है, तो क्यों ना एक गीत की ओर बढ़ते हैं क्योंकि अभी कार्यक्रम में अनुराधा जी जो हम सब के ज्वाइन करने वाले है और आज के उसका संदेश है गुरु दक्षिणा, पर पहले एक गीत की ओर बढ़ते हैं और फिर अनुराधा जी को हम सब लाने को कोशिश करेंगे जो भारत से हम लोग के साथ जुड़ने वाला है। सुनने वालों आप सुनते रहना कार्यक्रम ज्योति का प्रकाश जो हम सब यहाँ मिल करके और आपके लिए रख रहे हैं।

0: सुनो वालों, हम सब जुड़ गए हैं हमारे मास्टर जी जो भारत से हम सबको साथ और अपना जिनके द्वारा ये कार्यक्रम को बनाया गया है ज्योति का प्रकाश, और मास्टर जी जो इस समय हम लोग के साथ जुड़ गए हैं। मास्टर जी, आपको हार्दिक से स्वागत किया जाता है।
1: साउंड रेडियो के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। जैसे कि सबको पता है कि वीरवार को हम कुछ ना कुछ नया लेके आते हैं, इस बार भी हम कुछ नया लेके आए हैं, जीवन की सच्चाई। और जीवन की सच्चाई में आज बहुत ही मनमोहक, बहुत ही मनमोहक चीज सबको सुनने को मिलेगा। और वो है कि जैसे हम बड़े होते जाते हैं और समझदार बनते हैं, हम धीरे धीरे एहसास होता है कि 300 और 3000 या 2000 लाख की कीमत की घड़ी सब एक साथ दर्शाती है। लोग सोचते हैं कि 300 की घड़ी का टाइम अलग है और 3000 की अलग है, 3 लाख की अलग है, लेकिन सबका एक ही टाइम है, केवल उसमें क्वालिटी का फर्क है। तो हमारे पास 100 का फर्क हो या 500 का, अंदर सब कुछ समान होता है। चाहे हम 5 लाख की कार चलाएं, चाहे 50 की, रास्ता और दूरी एक ही है और हम उसी मंजिल पर पहुंचते हैं। तो ये जीवन की आज सच्चाई है। हम जिस घर में रहते हैं, चाहे वो 300 वर्ग फुट का हो या 3000 वर्ग फुट का हो, अकेलापन हर जगह समान है। आपको एहसास होगा कि आपकी अंतरिक्ष जो आंतरिक खुशी है इस दुनिया की भौतिक वस्तुओं से नहीं मिलती। आंतरिक मतलब अंदर की जो खुशियां हैं, ये जो दुनिया है वो भौतिक वस्तुओं से नहीं मिलती। आप फर्स्ट क्लास या इकोनॉमी क्लास में उड़ान भरे, अगर विमान नीचे गिरता है तो आप भी उसके साथ नीचे ही जाते हैं। इसलिए मैं आशा करता हूँ कि आपको एहसास होगा, आपके पास दोस्त भाई और बहन है जिनके साथ आप बातें करते हैं, हंसते हैं, गाते हैं, सुख दुख की बातें करते हैं, यही सच्ची खुशी है। जीवन की एक निर्विवाद सच्चाई है, अपने बच्चों को केवल अमीर बनने के लिए शिक्षित ना करें, उन्हें खुश रहना सिखाएं। जब कोई बड़े होंगे तो उन चीजों की लागत नहीं, मूल्य की जानकारी भी होगी। अब इसमें है एक प्रश्न है कि जीवन क्या है। जीवन को बेहतर समझने के लिए 3 स्थान है, अस्पताल है, जेल है और शमशान है। अगर आपने अपना जीवन बेहतर समझना है तो 3 स्थानों पर जाइए। कौन कौन 3 स्थान है? अस्पताल, हॉस्पिटल यानी सेकंड हाउस, जेल और शमशान घाट। अस्पताल में आप समझोगे कि स्वास्थ्य से अच्छा कुछ नहीं है। जेल में आप देखेंगे कि आजादी से कितना अमूल्य है, आजादी का जो मूल्य है वो कितनी ज्यादा है। और शमशान में आपको एहसास होगा कि जीवन कुछ भी नहीं है। आज हम जिस जमीन पर चल रहे हैं वह कल हमारी नहीं भी हो सकती। चलो अब से विनम्र निवेदन बने और हमें जो मिला है उसके लिए अपने माता पिता और जो मिला अपने माता पिता और किसका आशीर्वाद हमें लेना चाहिए?
0: अब आप ही बता दो मास्टर जी।
1: रिश्तेदार और पड़ोसी, मित्र, मेरा समाज, मेरा देश, सभी से प्यार, ऐसा हम सोचते हैं। क्या आप इस संदेश को किसी और के साथ साझा करेंगे? तो जरूर करेंगे। चलो विनम्र निवेदन बने उसके लिए अपने माता पिता और परम पिता को धन्यवाद करें। ये हमारी शिक्षा है आज की। दूसरी चीज जो हमको जीवन, दवा रहित जीवन यानी विदाउट मेडिसिन लाइफ, हम जीवन जीते हैं लेकिन दवा के सहारे। तो क्या क्या हमें करना चाहिए जो हमें दवा ना लें, ये बहुत बड़ा संदेश है इस चीज में। और जो फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के श्रोता हैं, अगर वो सुन रहे हो तो कागज कलम निकाल के नोट कर ले, क्योंकि ये चीज एक बार सुनने को मिलेगा, याद रखना जरूरी है। तो सबसे पहले लिखें, जल्दी सोना और जल्दी उठना दवा है, ये एक मेडिसिन है। अगर आप जल्दी शाम को सोचते हैं और जल्दी सुबह उठते हैं। दूसरा है ओम या राम का जाप दवा है, जो हम जाप करते हैं वो भी एक दवा है। ये बात हमारे आ गई तीसरे नंबर पे, योग, प्राणायाम और व्यायाम, ये बहुत बड़ी दवा है। सुबह शाम टहलना भी दवा है। उपवास यानी फास्ट सभी बीमारियों की दवा है। सूर्य का प्रकाश भी दवा है। मटका पानी पीना भी दवा है। ताली बजाना भी दवा है। खूब चलना भी दवा है। भोजन की तरह चबाकर पानी पीना भी दवा है। आफ्टर मील वज्रासन में बैठना बहुत बड़ी दवा है, यानी उल्टे पांव बैठना, उसको वज्रासन बोलते हैं, सब लोग जानते हैं जो लोग योग करते हैं। खुश रहने का निर्णय भी दवा है। कभी कभी मौन भी दवा है। हंसी मजाक भी बहुत बड़ी दवा है, संतोष यानी जो कुछ हमको मिला है उसमें संतोष करना वो भी दवा है, मन और शरीर की शांति दवा है, ईमानदारी और सकारात्मकता दवा है, निस्वार्थ प्रेम भावना भी दवा है, सबका भला करना दवा है, ऐसा कुछ करना जिससे किसी की दुआ मिले यह दवा है, सबके साथ मिलजुल कर रहना दवा है, परिवार के साथ खाना पीना और घुलना मिलना भी दवा है, आपका हर सच्चा और हर अच्छा दोस्त भी बिना पैसे के पूरा मेडिकल स्टोर दवा है, मस्त रहे, व्यस्त रहे, स्वस्थ रहे और खुश मिजाज रहे यह भी दवा है, हर नए दिन का भरपूर आनंद लेना भी दवा है, और अंत में किसी को प्रसादी के रूप में या संदेश भेजकर काम करना सुख भी यही दवा है, प्रकृति की महानता को समझना यानी नेचर को समझना वो बहुत बड़ी दवा है, ये सब औषधियां बिल्कुल निःशुल्क उपलब्ध है, जो भी ये सब दवा है इनका कोई पैसा नहीं लगता है, निःशुल्क है, बस सवाल यह है ये सब जानने के बाद क्या आप भी दवाइयां लेना शुरू करेंगे या फिर वही पैरासिटामोल और टेरामाइसिन, क्या आप दवा लेंगे या नेचर की दवा लेंगे या पैरासिटामोल और टेरामाइसिन लेंगे, तो ये आपके ऊपर है। साउंड हिंदुस्तानी रेडियो के जो श्रोता है इस बात को सुनकर उनके मन में जरूर एक प्रसन्नता हुई होगी कि हमको पैरासिटामोल और टेरामाइसिन नहीं लेना है, बल्कि जो ये दवाई रेडियो फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के माध्यम से बताई गई है ये जरूर लिया करें और बाद बाकी सब दवा छूट जाएगा। मैं आशा करता हूँ सब लोग इस प्रकार की जो बातें सुनते हैं फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के श्रोता वो इन दवाइयों का उपयोग करेंगे और जो सिकन हाउस वाली दवा है वो छोड़ के इस दवा पे आ जाएंगे तो उस दवा की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों ना संजय जी हमें सुंदर सा नगमा सुने और आगे का कार्यक्रम आगे जारी रहेगा।
0: पर मास्टर जी, मेरा हम सबका भी दिल करता है आपसे कुछ बात करने का, शांता जी भी मैं देख रहा हूँ कुछ कहने का इच्छा कर रहे हैं, पर ये कहने के तात्पर्य यह कि आप ये सुंदर सा संदेश रखे मास्टर जी और कहने के है ये भी कि योग तो योग जो 24 घंटा में कम से कम एक घंटा जो हमें लेना चाहिए अपने शरीर के लिए ना,
1: हाँ।
0: तो उस पे क्या कर सकते हैं लोग?
1: देखो सबके पास 24 घंटा सबके पास है, उसमें से हमने एक घंटा अपने लिए निकालना है यानी योग प्राणायाम और ध्यान। कितना मिनट? 20 मिनट योग, 10 मिनट प्राणायाम और आधा घंटा ध्यान मेडिटेशन। तो इससे क्या होता है कि योग से हमारा शरीर ठीक रहता है, प्राणायाम से मन ठीक रहता है, प्राण वायु बढ़ती है और ध्यान से हमारा मन शांत हो जाता है। तो जो तीनों चीज है योग प्राणायाम और ध्यान, जब तीनों मिल जाते हैं तो हमारा शरीर प्राण यानी हमारी आयु और मन तीनों शांत हो जाते हैं और हम विदाउट डिजीज यानी बीमारी नहीं रहता, मन प्रसन्न रहता है, आत्मा भी खुश रहती है, हम इस प्रकार जीते हैं। और ये सब सीखने के लिए गांधी सेंटर में सब लोग उपलब्ध हैं, जो लोग वहाँ ये सब सीखना चाहते हैं नीदरलैंड में फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के श्रोता वहाँ जाके सब लाभ उठा सकते हैं। इस विषय में अगर और किसी को कुछ जानकारी चाहिए तो हम चर्चा जारी रखेंगे अगले प्रोग्राम में। लोग अपना सवाल पूछ सकते हैं कि योग कौन कौन सा करना चाहिए, प्राणायाम कौन कौन से करना चाहिए, ध्यान में क्या करना चाहिए, हम और डिटेल में इसको बताएंगे। लेकिन लोगों की पहले इच्छा जागरूक होनी चाहिए और फाउन हिंदुस्तानी रेडियो में फ़ोन करना चाहिए कि हम जागरूक हैं और हमें ये सब चीज़ सोचने को मिल जाए तो कैसा रहेगा। तो आप अपना प्रश्न जरूर रखिए, हम इसका उत्तर आपको घंटे भर तक देते रहेंगे, तब भी पूरा नहीं होगा क्योंकि योग जो है बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, अगर पूरी ज़िंदगी भी लगे रहो तब भी कम ही कम है। तो आप जितना ज़्यादा इसको पूछना चाहें समझना चाहें हम लोग उपस्थित हैं, और फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के जो कार्यक्रम हैं वो इसीलिए रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठाएं, नई नई चीज़ें सीखें। और जो ज्योति का प्रकाश है, ज्योति हमारे जो अंदर है शरीर के माइंड के, उसको प्रकाश यानी उजाला हो जाता है इसको प्रोग्राम को सुनने से। तो हम इस प्रोग्राम को माध्यम से लोगों को और जागरूक करेंगे, यही हमारी एक उपलब्धता रहेगी। संजय जी इस प्रकार से हम कार्यक्रम कर सकते हैं
0: मास्टर जी। और एक सुंदर सा गीत शांता जी ने पिटारा से निकाल करके छोड़ने वाले हैं मास्टर जी।
1: छोड़ दो पिटारा से नगमा।
0: तो नगमा जगदीत सिंह का आवाज में हम सब सुनेंगे। और मास्टर जी, कुछ और संदेश अभी देखना है, क्योंकि वज्र आसन आपने कहा है और जल्दी से सोना जल्दी से जागना, इस पे थोड़ा से कुछ और चर्चा कर देना। पर पहले क्यों ना पिटारा से निकाला हुआ शांता जी का और गीत हम सब प्लेयर पे रख चुके हैं जगदीत सिंह के आवाज में।

0: ये सुंदर सा गीत जो जगदीत सिंह के जी के आवाज़ में हम सब सुने दोस्तों, और मास्टर जी जो हम सब के साथ जुड़े हुए हैं भारत से, और कुछ और संदेश हम लोग के लिए रखना है कि जल्दी सोना जल्दी जागना ये बड़ा सिंपल सा बात है, पर इसमें महत्वपूर्ण बात, इसमें गहराई क्या है मास्टर जी। और दूसरा है कि जो आपने आज कितने संदेश दिए उसमें से बस हम सब हम सिर्फ दो ही निकाले हैं कि वज्र आसन है क्या।
1: हाँ, जैसे हमने 26 प्रकार की आज बात बताई है, और इसमें से दो मेन चीज है वज्रासन। जैसे हम लोग भोजन करते हैं, भोजन करने के बाद हम लोग कुछ नहीं करते हैं, या तो चलो या तो बैठो, तो हम लोग लेटो नहीं बैठो नहीं, चलो चल सकते हो तो, जैसे शाम को भोजन करा तो क्या करें, हम क्या करते हैं कि उल्टा पांव, यानी उल्टा पांव बैठ जाना, उसमें 5 से 10 मिनट वज्रासन। तो इसका मतलब अगर हम 10 मिनट बैठते हैं तो 10 मिनट 5 किलोमीटर का वॉकिंग माना जाता है। तो हम जैसे बैठते हैं वैसे उल्टा पांव बैठ जाए तो वज्रासन उसको बोलते हैं। उससे क्या होता है कि हमारा पूरा पैर मुड़ जाते हैं और सारा हमारा फोकस जो डाइजेशन सिस्टम है, यानी भोजन को पचाने में सारी ताकत पैरों के नीचे न जाके डाइजेशन में चली जाती है, और जब डाइजेशन में चली जाती है तो हमारा शरीर एकदम भोजन को पचा देता है और जल्दी से बहुत हल्का हो जाता है शरीर, पेट ज्यादा नहीं फूलता। मैं देखता हूँ कि लोग खाना खाते और लेट जाते हैं, इससे क्या होता है कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, और कोलेस्ट्रॉल बढ़ते बढ़ने के साथ साथ फैट बनता है, फैट पेट में फैट जमता है, और जब फैट जमता है तो बहुत सारी बीमारियों का जन्म होता है, किसी को डायबिटीज होता है, किसी को कोलेस्ट्रॉल हाई कोलेस्ट्रॉल, और ये जो मेन प्रॉब्लम आजकल हार्ट अटैक, इसी का सब नतीजा है। तो हमें इसको ठीक करने के लिए वज्रासन करना है, योग करना है, योग प्राणायाम। योग कैसे करना है, योग हम लोग सुबह सुबह कर सकते हैं खाली पेट, या तो शाम को भी कर सकते हैं, और जो प्राणायाम है वो भी योग करने के बाद सेकेंड राउंड है, और जो मेडिटेशन है वो थर्ड राउंड है। जब योग प्राणायाम हो जाए इसके बाद ध्यान करना है। ध्यान हमें केवल बैठ के सांसों को देखना है, कैसे सांस आ रही है कैसे सांस जा रही है, और हफ्ते में थोड़ा सा एक दिन पहले 6 घंटा, फिर 8 घंटा, फिर 12 घंटा, फिर 24 घंटा उपवास करना है। उपवास का मतलब फास्टिंग रखना है, थोड़ा सा हम पानी पी सकते हैं, जूस पी सकते हैं, या एक फल खा सकते हैं, धीरे धीरे करके उसको कम करना। जब कम हो जाए तो उसको आनंद लेना, उसी में हमें अच्छा लगने लगेगा कि हम लोग भोजन नहीं करते हैं तो और हमारा शरीर एक्टिव रहता है। क्योंकि जब हम लोग भोजन करने का एक नियम है संजय जी, हमको भूख है 4 रोटी की, हमने 5 खा ली तो इसी से सारा चीज बिगड़ता है। हमें अगर 4 रोटी की भूख है तो हमने 2 खानी है, 1 रोटी की जगह हमने एयर के लिए छोड़नी है और 1 रोटी की जगह हमने वाटर के लिए छोड़नी है। अगर हम भोजन आधा करते हैं जितनी भूख का, तो हमारे शरीर में ऊर्जा बनती है, और अगर हम ज़्यादा खाते हैं तो हमारे सारी ऊर्जा जो शरीर की है वो उसको पचाने में लग जाती है, तो फिर हमारा घाटा ही घाटा है। इस बात को हम केवल एक जीभ का स्वाद के लिए और एक पेट की आग के लिए नहीं समझ पाते हैं, लेकिन साहून हिंदुस्तानी रेडियो के माध्यम से जो लोग इस चीज़ को सुन रहे हैं वो सब समझ जाएंगे और इस चीज़ को फॉलो करेंगे। जब फॉलो करेंगे तो उसको बड़ा लाभ होगा, और फिर कॉल करके तार करके बताएंगे कि हमने क्या साहून हिंदुस्तानी रेडियो के माध्यम से सीखा है। इस प्रकार का हम जो कार्यक्रम रख रहे हैं वो बहुत ही उपयोग में आने वाला है। मैं आशा करता हूँ कि सब लोगों को ये कार्यक्रम पसंद आएगा और आगे भी आता रहेगा। यही हमारा साहून हिंदुस्तानी रेडियो का उद्देश्य है कि हम इस प्रकार के कार्यक्रम में आगे बढ़ेंगे और इसको मनन करेंगे, मनन करके कार्य करेंगे। जब कार्य करेंगे तो हमारा लाभ पूर्ण रूप से लाभ प्राप्त होगा। क्यों ना संजय जी, आप सुंदर सा नगमा की ओर बढ़े।
2: हाँ राजेंद्र जी, जरूर हम बढ़ेंगे नगमा की ओर, पर उससे पहले जो आपने कहा वज्र आसन और सभी जो पॉइंट आपने बताए कि योग का और जीवन में क्या करना चाहिए ताकि हम तंदुरुस्त रहे, वाकई में जो हमारा दोस्तों जो है, जो भाई बहन सुनते हैं, हम सब ये फॉलो करें तो वाकई में कोई एक ऐसा बीमारी शरीर में नहीं आएगा।
0: अरे हाँ, मैं इस पे कुछ और रखना चाहता हूँ मास्टर जी। एक समस्या हुआ ना, किसी को हाई प्रेशर हो गया, तो बोलेंगे बीपी,
1: अगर
0: तो
1: अगर किसी को
0: नहीं नहीं पर ये हुआ किसी को ना, तो वो गया डॉक्टर में, तो डॉक्टर ने उसे दवा दे दिया तो दवा दे दिया तो फिर दो तो कुछ समय बाद मेरे ख्याल से 4 हफ्ता बाद फिर डॉक्टर के पास गया तो फिर उसका प्रेशर की नापा बीपी तो घटा नहीं था, तो उससे कहा कि तू अब एक गोली के
2: बदले
0: दो गोली खा। पर उन्होंने ऐसा नहीं किया, उन्होंने बस वही एक गोली खाया और थोड़ा योग का प्रयोग किया
1: जी।
0: तो योग का प्रयोग किया तो जो प्रेशर हाई प्रेशर था, बीपी जो ऊंचा था, वो धीरे धीरे निकलने लगा, नीचे आ गया। तो डॉक्टर ने के पास फिर कुछ मसला हुआ तो उसके पास गया तो कहने लगा कि डॉक्टर, क्योंकि वो यहाँ कंप्यूटर में रख देते तो सभी देख लेते कि कौन कौन गोली खा रहे हैं। तो डॉक्टर ने कहा गोली खा रहे ना दो दो, तो उन्होंने कहा नहीं मैं गोली एक ही खा रहा हूँ। पर डॉक्टर ने बोला कि एक ही खा रहा हूँ बैठो, और बैठा तो उसे नापने लगा। तो जब नापा तो देखा कि प्रेशर कमती है और लाख हो गया, तो डॉक्टर घबरा गया और कहने लगा कि अरे ये तो माजरा कुछ और हो गया। तो उन्होंने कहा कि ऐसा कर तू रोज और 2 हफ्ता लगातार ये अपना प्रेशर को यानी कि अपन ब्लड ग्रुप को नापते रहो और धीरे धीरे गोली आपको छोड़ना पड़ेगा। तो उसके बाद में उन्होंने जब जो यहाँ पर दवा लेना जाते लेने लेते हैं ना अपोतेक में, तो अपोतेक में गया क्योंकि माजरा कुछ और था, तो वहाँ अपोतेक वाला कह रहा कि अभी तो यहाँ 2 गोली खाने का लिखा था, कैसे अभी एक ही गोली हो गया। तो देखो योग का शक्ति क्या है ना
1: जी,
0: कि योग का शक्ति है कि अब यहाँ पर सब चाहते हैं कि गोली बढ़ाते जाओ।
1: हाँ।
0: वो न सिर्फ डॉक्टर पर अपोतेक वाला भी घबरा जाता है कि भाई मेरा आमदनी कम हो जाएगा।
2: वो तो बात सही है।
1: हाँ, लेकिन अगर हम लोग योग प्राणायाम ध्यान करेंगे तो हमें गोली की तरफ जाने की जरूरत ही नहीं,
0: बिल्कुल नहीं पड़ेगा। बिल्कुल नहीं।
1: हाँ, वो तो क्योंकि वो केमिकल है और जब केमिकल हमारी बॉडी में जाता है तो कुछ चीज जो ठीक करता है वो बहुत सारी चीजों को बिगाड़ता भी है।

0: का सेंटर, उसको हैप्पीनेस हाउस हमने नाम दिया है, और सिकन हाउस तो आप जानते हैं हॉस्पिटल जो है, तो हमें लोगों को खुद समझ आएगा कि हम किस तरफ जाना चाहते हैं, उसी तरफ जाएंगे।
1: हाँ, आपने भी कहा कि खाना खाते समय तो ये भी ख्याल होना चाहिए कि थोड़ा से हमारा स्टमक जो है ना, माख जो है, उसमें थोड़ा से हवा खात, एयर खात जगह होना चाहिए, और थोड़ा से पानी खात जगह होना चाहिए, ताकि
0: 25% हाँ, स्वस्थ रहेंगे।
1: हाँ, ताकि वो जो स्टमक के कैसे बोलते हैं पता नहीं, स्टमक जो है, माह जो है, वो अपना काम भी अच्छा तरह से कर सके। मग जो हाँ, भी आपने कहा वज्र आसन, राजेंद्र जी ऐसा हुआ, मैं अपना अनुभव बताती हूँ कि कभी कभी खाना इतना स्वादिष्ट बनता है ना कि थोड़े में संतुष्ट नहीं होता, पर मन करता कि और खा ले, बस कि और खा लेते हैं ना, तो एकदम से संतुलन बिगड़ जाते, सांस नहीं ले पाते ठीक से। तो हम कई दफ़ा ऐसे किया है ये वज्र आसन, अगर उसका आपको प्रैक्टिस नहीं रहेगा तो शुरुआत में बहुत दर्द देगा।
0: हाँ, इसमें दो चीज़ें हैं, जब हम लोग स्वादिष्ट भोजन ज़्यादा कर लेते हैं तो अगली बार जो हम भोजन करें उसको छोड़ दें, सेकेंड जो राउंड है भोजन का उसको छोड़ दें। दूसरी चीज़, वज्रासन का जब कम हम करते हैं तो हमें हाथ भी टच करना चाहिए जमीन पे।
1: हाँ।
0: और 50% वेट हमारे हाथों में जाए, 50% पैरों में जाए, तो दर्द नहीं होगा।
1: हाँ।
0: धीरे धीरे हम उसको 60, 65, 70 ऐसे करके ट्रांसफ़र करते हैं, ऐसा हमने 10 दिन में करना है, तो धीरे धीरे हमारा आदत बन जाएगा, नहीं होगा।
1: हाँ,
0: तीसरी चीज जो आप कह रहे हैं कि हम लोग भोजन करते हैं,
1: हाँ,
0: तो उसके जो नियम हैं, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार, जब
1: हाँ,
0: हम प्रत्याहार की अवस्था में पहुंचते हैं, हमारे शरीर में यम नियम ऑलरेडी रहते हैं,
1: ये
0: यम और नियम, और जब हम आसन प्राणायाम करते हैं तो प्रत्याहार पांचवी स्थिति है योग की, अष्टांग योग की, उस अष्टांग योग की जो पांचवी स्थिति है, हमें स्वतः ज्ञान हो जाता है हमें कौन सा भोजन कितना करना चाहिए, कब, जब ये चार चीज़ें हमारे शरीर में पहले आ गई, इसके बाद हमें खुद ज्ञान हो जाएगा कि हमें नहीं खाना चाहिए। जैसे डायबिटीज मरीज को शुगर नहीं खाना है, और लेकिन उसको शुगर पसंद है, लेकिन जब वो पाँचवीं स्थिति में पहुँच जाएगा योग प्राणायाम वाली, यम नियम आसन प्राणायाम वाली, तो खुद उसको स्वतः अनुभव हो जाएगा, और उसको वो चीज़ पता चल जाएगी कि भाई ये चीज़ मेरे लिए अच्छी नहीं है, तो उसको वो चीज़ अच्छी नहीं लगेगी,
1: नहीं लगेगा। बात सही है हाँ, 100% सही आपने कहा है, ये मैं भी अनुभव कर रही हूँ।
0: हाँ, लेकिन जब हम इसको नहीं, वो पता नहीं चलेगा, क्योंकि पता कब नहीं चलेगा, जब हम इसमें आगे नहीं बढ़ेंगे, योग प्राणायाम प्रत्याहार, योग प्राणायाम आसन प्राणायाम में, लेकिन जब हम केवल खाने में रहेंगे तो ये चीज़ हमारी ऐसी चलती रहेगी और स्वास्थ्य बिगड़ने का खतरा रहता है। इसलिए हम कहते हैं कि अष्टांग योग जरूर करना चाहिए। जब हम अष्टांग योग में प्रत्याहार यानी भोजन के बारे में पता चल जाता है, तो फिर हमारा योग प्राणायाम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा आ जाती है, धारणा सबके प्रति एक जैसी होनी चाहिए, इसके बाद ध्यान आ जाता है, मेडिटेशन, और फिर समाधिस्थ हो जाते हैं।
1: हाँ।
0: अपने आप में हम खुश रहना सीख जाते हैं, किसी की कोई जरूरत नहीं है।
1: हाँ।
0: यही हमारा उद्देश्य है पावन हिंदुस्तानी रेडियो का, कि सब लोग सुखी रहें, समृद्ध बने और अपने आप में खुश रहें। मैंने देखा है कि नीदरलैंड में बहुत सारे लोग अकेले रहते हैं, अकेला महसूस करते हैं, लेकिन जब वो लोग इस स्थिति में आएंगे, योग प्राणायाम ध्यान धारणा में आ जाएंगे, तो उनको फील नहीं होगा कि हम अलोन हैं, हम ऐसा लगेगा कि हम कुछ, आपो दीपो भव, आप अपने दीपक स्वयं बनो, भगवान बुद्ध ने कहा है, लास्ट प्रवचन था उनका मरते समय, उनके शिष्य ने पूछा कि गुरुजी अब आप जा रहे हो, आप लास्ट कुछ चीज बता के जाओ, तो उन्होंने बताया कि सब चीज मैंने बता दी, एक चीज रह गई, उन्होंने बोला बताओ, उन्होंने बताया तो बोला आपो दीपो भव, इसका मतलब आप अपने दीपक स्वयं बनो, बस यही यही हमारा उद्देश्य है, किसी की जरूरत नहीं किसी को, आप अपने दीपक स्वयं बनो, अपना दीपक जलाओ, उसी उजाले से चलो।
1: गौतम बुद्ध का संदेश है ये,
0: गौतम बुद्ध का लास्ट संदेश।
1: हाँ जी, हाँ नहीं, बाकी मैं जो मैं कह रही थी ना, खाना खाते समय ये भारी सा फील होता है ना, तो वज्र आसन जो आप हम मैं करती थी, तो ऐसे कुछ 4-5 मिनट में जो भारी सा फीलिंग होता वो सब गायब।
0: हाँ, वज्र आसन का यही उद्देश्य है कि वो सिर्फ जब खाना खाते पेट भर जाता है तो ऊपर की तरफ गैस जाती है।
1: हाँ,
0: वज्रासन में जब वज्रासन में बैठते हैं तो रिलीज हो जाती है डाइजेशन सिस्टम में।
1: हाँ,
0: जो शरीर हमारा तेजाब बनाता है उसमें जाता है,
1: हाँ ये रेयर के

0: हाँ पीठी जो है वो एकदम रेक्ट हो जाता है, राइट।
1: हाँ फिर उसको क्लिंजिंग पॉइंट में चले जाता है, पेट खाली हो जाता है और एकदम शरीर की जो गैस ऊपर ना जाके नीचे चली जाती है, इसलिए हमको रिलैक्स फील होता है
0: जी। और जो आप हाँ जो आपने कहा कि यो योग ना योग करते समय और इसमें बढ़ते बढ़ते, तो जो खाना पीना जिसमें हम पहले से जिसका हम पसंद करते थे तो, और हम ये योग करेंगे तो ये खाना पीना जो है ये शरीर अपने आप कहेगा नहीं ये नहीं चाहती हूँ अपने आप।
1: जी हाँ, जब हम हमारे अंदर ज्ञान अपना आप है, किसी की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन उसको जागृत करना है, जो हमारा सेल्फ नॉलेज है उसको योग के माध्यम से जागृत करना है, तो फिर शरीर हमारा स्वयं बताएगा कि हमारे लिए क्या अच्छा है क्या अच्छा नहीं है।
0: बिल्कुल,
1: किसी डाइटिशियन के पास जाने की जरूरत नहीं है, आप सेल्फ डाइटिशियन हो।
0: बिल्कुल सही है, सहमत है एकदम बिल्कुल, क्योंकि ये भी मैं अनुभव की अपने जीवन में, इसलिए मैं जानती हूँ। तो आप जो बता रहे हैं ना तो सेम याद आ जाता है, इसलिए कहती हूँ कि हाँ नहीं ये कोई गपशप नहीं है या कोई आम से तोड़ कलाई नहीं, ये सही है, ये हकीकत है,
1: यही हकीकत है, यही हकीकत है।
0: अरे देखो ना हमारे पूर्वज जो है जो ऋषि मुनि में ये सब तो कित सालों सौ साल सब जिए है बगैर खाना पीना से।
1: हाँ ये जो हमारे ऋषि सतयुग में तो हजारों वर्ष रहते थे, त्रेता में थोड़ा कम हुए, सौ वर्ष लेने लग गए, द्वापर में और कम हुए, कलयुग में हमारी आयु 120 वर्ष की है, अगर हम खान पान अच्छे रखते हैं फिर भी हम लोग 120 वर्ष जी सकते हैं, लेकिन डिपेंड किसके ऊपर है, हमारे ऊपर स्वयं, खान पान का आसन प्राणायाम का नियंत्रण रखे तो हमारी बॉडी 120 आज भी अच्छे से रह सकती है, कलयुग की एज है।
2: मास्टर जी आज आप संदेश काफी रख चुके हैं, जरूर हमें भी बहुत अच्छा लगा संदेश, कितना अच्छा लगा सुनत ना
0: जी।
2: पर शांता जी वो मंत्र जो मास्टर जी ने अभी सुनाए कि अकेल अलोन रहने वाला मंत्र अभी आपको मालूम है,
0: आपो दीपो भव,
2: आपो दीपो भव
0: या
2: तो आपो दीपो भव, ये सभी सुनने वालों इसको हम जानबूझ करके दोहरा रहे हैं कि आपो दीपो भव, जो अलोन जो अकेलवा रहते हैं इंसान रहते हैं और अपने अंदर के ज्योत को जलाना है। तो दोस्तों सुनने वालों ये फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो है, हमारे मास्टर जी हम लोग के साथ संदेश के ऊपर संदेश रख रहे हैं और देखा जाए कि शांता जी भी इस समय कुछ कर रहे हैं कंप्यूटर से, मेरे ख्याल से कि अभी हम लोगों को बढ़ना है कमर्शियल्स के ओर, पर शांता जी एक गीत भी रखने वाले थे आप।
0: हाँ हाँ उसको
2: तो गीत को चला देते हैं मास्टर जी, आपको बहुत बहुत सा धन्यवाद और आशा यही है कि हम सबको इसी प्रकार से आपका कार्यक्रम है हम लोग चलाते रहे और आप हम सबको ऐसे ही सहयोग देते रहना।
1: बहुत बहुत धन्यवाद फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के श्रोताओं को, हमारा कार्यक्रम सुनने के लिए अपना समय निकालते हैं और मनन करते हैं, फिर इसके बाद थर्ड में उनको फायदा होता है, तो अगली बार हम फिर अपना कार्यक्रम को लेके मिलेंगे, तब तक के लिए सबको नमस्कार।
2: नमस्कार
0: राजेंद्र जी, आपको भी, आप भी अपना मूल्य वक्त निकाल कर और आकर सेवा करें, आप चाहे आप विदेश में हो भारत में हो पर नहीं लगता है कि आप यहाँ हैं
2: और हम लोग के साथ सहयोग देते हैं।
0: जी
1: जी जी, जी।
0: आप बहुत आभारी है,
2: बहुत बहुत आभारी है,
1: बहुत बहुत धन्यवाद
0: आप लोग के भी।
1: धन्यवाद।

0: आपने सुना गुरु दक्षिणा, और कार्यक्रम में जो अभी अनुराधा जी अपना संदेश रखने वाले हैं गुरु दक्षिणा के अंतर्गत, तो अनुराधा जी मैं आपसे निवेदन करूंगा, हार्दिक से स्वागत करता हूं आपको, जो इस समय आप भारत से हम लोग के साथ जुड़ गए हैं, और हार्दिक से स्वागत करते हुए आपको, और मैं कहना चाहूंगा कि आप अपना संदेश जो आज के आपने और जो गुरु दक्षिणा के अंतर्गत में सुनाने वाले हैं, तो हम सबके लिए जरूर रखे।
1: ज्योति के प्रकाश में सभी सुनने वालों को अनुराधा का नमस्कार। मैं आशा करती हूँ आप सब मंगलमय होंगे और अपना जीवन अच्छा व्यतीत कर रहे होंगे। चलिए आज संजय जी, मैं सबको एक कहानी से शुरुआत करती हूँ, और मैं आशा करती हूँ आप सबको ये कहानी पसंद आएगी। इसका नाम है गुरु दक्षिणा। तो एक बार एक शिष्य ने विनम्रता पूर्वक अपने गुरुजी से पूछा, गुरुजी कुछ लोग कहते हैं कि जीवन एक संघर्ष है, कुछ अन्य कहते हैं कि जीवन एक खेल है, कुछ जीवन को एक उत्सव की संज्ञा देते हैं, इनमें आप बताइए कौन सी सही है। गुरुजी ने तत्काल बड़े ही धैर्य पूर्वक उत्तर दिया और बोले, पुत्र जिन्हें गुरु नहीं मिला उनके लिए जीवन एक संघर्ष है, जिन्हें गुरु मिल गया उनका जीवन एक खेल है, और जो लोग गुरु द्वारा बताए गए मार्ग पर चलने लगते हैं मात्र वे ही जीवन को एक उत्सव का नाम देने का साहस जुटा पाते हैं। यह उत्तर सुनने के बाद भी शिष्य पूरी तरह से संतुष्ट ना हुआ। गुरु जी को इसका आभास हो गया, उनको समझ में आ गया, उनको लगा कि ये उनका शिष्य मेरे जवाब से पूरी तरह संतुष्ट नहीं है। वे अपने शिष्य से कहने लगे, लो तुम्हें इसी संदर्भ में मैं एक कहानी सुनाता हूं, ध्यान से सुनोगे तो स्वयं ही अपने प्रश्न का उत्तर पा सकोगे। और वो कहानी सुनाने लगते हैं। संजय जी, मैं बताना चाहूंगी वो कहानी कि क्या गुरुजी ने कहानी सुनाई, पर क्यों ना एक गीत हो जाए और फिर आगे बढ़ते हैं।
0: जरूर जरूर जरूर जरूर अनुराधा जी, हम पहले गीत की ओर बढ़ेंगे, और ये सुंदर सा संदेश जो आप हम सब के लिए रख रहे हैं कि गुरु दक्षिणा, अभी क्या होने वाला है दोस्तों, सुनने वालों आप सुनते रहना। पर शांता जी ने एक गीत को चुन करके रखे, शांता जी क्यों ना वो गीत को आप चला देते हैं।
2: एकदम से सही।

0: ये सुंदर सा गीत जो आपने सुने, सुनने वालों, आज का संदेश जो अनुराधा जी रख रहे कि गुरु दक्षिणा, शांता जी इस पे आप क्या कहना चाहोगे?
1: गुरु का अर्थ जो है, जैसे मैं कथा पे सुनी हूँ, अगर आप भी कथा पे जाते हो, हमारा श्रोतागण जो है मंदिर में जाते हो, तो उसका कहते कि गुरु जो है जो अंधकार दूर करने वाले हैं, प्रकाशित करे, और जो बताते हैं सही रास्ता जो है, और अपना अनुभव के अनुसार जो हम सही रास्ते पे चले तो हमारा जीवन जो है, हमारा सड़क जो है चलने के लिए, वो प्रकाशित रहेगा, और गुरु के सहारे हमारा जीवन में और सारे प्रकाशित हो जाए।
0: पर शांता जी इस पे मैं थोड़ा से मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं सहमत नहीं हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है, पर इस पे मैं थोड़ा सा और प्रकाश डालने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि आजकल लोग सोचते हैं कि हम जीवन जीना सीख गए, कभी भी कोई भी कार्यक्रम करते हैं तो अपने मनमानी करते हैं।
1: तो आपने ठीक कहा, सोचने में और जानने में फर्क है।
0: सोचने और बड़े, अरे वाह बड़ा बात कह गए।
1: नहीं नहीं, सही बात है, सोचने में और जानने में ये फर्क है।
0: बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि हाँ। देखो अभी अब किस तरफ आप हम संदेश को ले जाए, अभी अनुराधा जी ये पूरा संदेश हम सबको रखने वाले हैं, पर जब देखा जाए कि हम लोग के जो सभ्यता है, हमारे संस्कृति है, हमारे जो संस्कार हो
1: जी,
0: ये तीनों में आजकल हम लोग कमती इस पे ध्यान देते हैं, और सभी चाहते हैं कि हम अपने मरने के बाद मोक्ष को प्राप्त करें। हम आजकल किसी को अब देखा जाए, लोग सोचते हैं कि भाई हाँ हमने तो सारा जीवन जी लिए, अब हमें क्या करना है, और कहते हैं कि भाई हम अपने बच्चों के लिए कोई परेशानी ना होए। अब देखा जाए जब मृत्यु का समय आ जाए ना
1: जी,
0: तो मृत्यु का समय ये तो हमारा है, होना है, आपका भी होना है, और सभी का होना है, एक ना एक दिन सभी को जाना है,
1: शरीर को छोड़ना है,
0: जाना है। तो हम लोग के संस्कृति और संस्कारों में कुछ भारत से लेकर के सूरीनाम को गए थे, सूरीनाम से लेकर के हॉलैंड में लेकर के आए हैं, अभी तक कोई कोई परिवार में, कोई कोई घरों में अभी तक उसी प्रकार से जो 150 साल पहले से लेकर के सूरीनाम को गए थे अभी तक चल रहे हैं, मगर कोई कोई है जो बिल्कुल बदल गया। हाँ, बोले कि आलस एन न्यू याश एक हफ्तर खेन टाइट फोर एन म केंद्र मुतहफदार खेन, बोले कोई प्रकार से पर शर्म ना हो हमारे लड़कन के, पर हमारे जो ग्रंथों है, हमारे जो सुंदर सुंदर संस्कारों है, क्या उसे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए?
1: देखो आप बहुत अच्छे से कहा ना कि हम नहीं करते हैं, कि जो हमारे पूर्वजों भारत से सूरीनाम गए, सूरीनाम से यहाँ आए और यहाँ पर आकर उसमें बदलाव लाते हैं, तो उसमें हमारा जो है सरनामी या
0: इंडियन, शांता जी एफतर कोरेक्शन, क्योंकि ये कार्यक्रम 188 देशों तक सुना जाता है, और हाँ, बदलाव सभी कोई नहीं करते, क्योंकि कितने हैं द आल्टाइट नोस्टम फस्तक द सेल ऑफ द परंपरा आल्टाइट, जो जैसे कि जो लेकर के भारत से सूरीनाम गए थे,
1: हाँ,
0: अभी तक कोई कोई उससे भी ज्यादा करते हैं।
1: हाँ, अतः वो सिर्फ ना ही सिर्फ हमें में, पर अन्य जात जो है वो भी उसको लेकर चलता है, वो अपना बना लिए, क्योंकि हमारा जो है सभ्यता उनको भी बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि उसमें कुछ रस है, कुछ जैसा हमारा राजेंद्र जी बताए ना योग के बारे में, योग हमारे अन्य जात जो है वो जाकर सीख कर आकर उसे यहाँ पर हम सबको सिखाते हैं, और जो संस्कार जो हमारे गुरु जी बड़े बड़े गुरु जो सब बनाई है, किताबें लिखे, पुस्तक लिखे, उसमें से ग्रंथ जो ली, उसमें से पढ़ पढ़ के वो संस्कृत जो नहीं जानते उसको सीखते हैं, पढ़ते हैं, और उसे अपने जीवन में अनुभव उतारते हैं, जीते हैं, और हम कहते हैं कि कितने लोग ऐसे कहते हैं, नहीं वो तो पुराना हो गया, न्यू याश, जैसे संगीत भी बना देते ना, जो लता जी रफ़ी जैसे गाए थे उसको भी न्यू याश में कर, अच्छा लगता सुनने के लिए, पर
0: अच्छा लगता पर धुन तो नहीं, वही धुन चलाते हैं पर आवाज़ दूसरा हो जाता है।
1: हाँ
0: जरूर मनोरंजन के लिए भी होना चाहिए।
1: रूट्स जो है वो रहेगा हमेशा,
0: रूट्स है जो रहेगा। कहते कि गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाओ बलिहारी, गुरु आपने दे दियो गोविंद दिखाई।
1: बहुत अच्छा,
0: इस पे भी थोड़ा से कुछ
1: बताओ।
0: पहले अनुराधा जी आप अपना संदेश
1: अच्छा,
0: रख दीजिए।
1: हाँ, अनुराधा जी,
0: अनुराधा जी जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं भारत से, तो अनुराधा जी कुछ अपना संदेश जो गुरु दक्षिणा के अंतर्गत सुनाइए।
2: ने क्या कौन सी कहानी अपने शिष्य को बताई, उन्होंने जो कहानी सुनाई वह इस प्रकार थी। एक बार की बात है कि किसी गुरुकुल में तीन शिष्यों में अपना अध्ययन संपूर्ण करने पर अपने गुरुजी से वह बताने के लिए विनती की कि उन्हें गुरु दक्षिणा में उनसे क्या चाहिए। गुरुजी पहले तो मंद मंद मुस्कुराए और फिर बड़े स्नेह पूर्वक कहने लगे, मुझे तुमसे गुरु दक्षिणा में एक थैला भर के सूखी पत्तियां चाहिए, ला सकोगे। वे तीनों जो शिष्य थे वे मन ही मन बहुत प्रसन्न हुए, क्योंकि उन्हें लगा कि वे बड़ी आसानी से अपने गुरुजी की इच्छा पूरी कर सकेंगे। उनको लगा ये कौन सी बड़ी बात है, ये पत्ती तो हम ढूंढ के ले आएंगे, सूखी पत्तियां तो जंगल में बहुत ज़्यादा बिखरी रहती हैं, तो उनको लगा ये तो बहुत ही आसान सा कार्य है, वो आराम से कर लेंगे। वो तीनों बड़े उत्साहपूर्वक एक ही स्वर में बोले, जी गुरुजी, जैसी आपकी आज्ञा। अब वे तीनों शिष्य चलते चलते एक समीप पास में एक जंगल में पहुंच चुके थे, लेकिन यह देखकर कि वहां पर तो सूखी पत्तियां केवल एक मुट्ठी भर भी ही थी, उनके आश्चर्य का ठिकाना ना रहा, क्योंकि वो तो सोच रहे थे कि जंगल है वहां तो बहुत सारी सूखी पत्तियां बिखरी होंगी तो यह बहुत ही आसानी से उठा लेंगे, पर जब देखा तो वहां तो खाली एक मुट्ठी भर ही जितनी पत्तियां बिखरी हुई थी। अब वे बड़े आश्चर्य रह गए कि क्या करें, वे सोच में पड़ गए कि आखिर जंगल में कौन सूखी पत्तियां उठाकर ले गया होगा। उन्होंने सोचा ऐसा कैसा हो गया कि ये जंगल में एक भी सूखी पत्तियां नहीं है। इतने में ही उन्हें दूर से आता हुआ कोई किसान दिखाई दिया। वे उसके पास पहुंचकर उससे विनम्रता पूर्वक याचना करने लगे कि वह उन्हें केवल एक थैला भर सूखी पत्तियां दे दे। अब ये समझ लीजिए कि जब जरूरत पड़ती है, जंगल में तो हर पेड़ से सूखी पत्तियां गिरी रहती हैं, पर जब ना पाने पर वो उनको वो तीनों शिष्य घबरा गए कि भाई यहाँ तो पत्तियां नहीं है, अब उनको तो गुरुजी की आज्ञा का पालन करना है और थैला भर पत्तियां लानी है। तो उनको जब वो किसान मिला तो उन्होंने उससे कहा कि भैया थोड़ा सा कहीं से हमें पत्तियां दिलवा दो। अब उस किसान ने उनसे क्षमा याचना करते हुए कहा, उन्हें ये बताया कि वह उनकी मदद नहीं कर सकता क्योंकि उसने सूखी पत्तियों का ईंधन के रूप में पहले ही उपयोग कर लिया था। तो उसने बताया कि जो जितनी सूखी पत्तियां थी उसने उनका उनको इकट्ठा करके ईंधन यानी कि उनको इस्तेमाल कर लिया एज अ फ्यूल, इस्तेमाल कर लिया और उनको जलाकर सूखी पत्तियों से जलाकर अपना इस्तेमाल कर लिया। तो अब वो उसने तो मना कर दिया कि मैं तो आपकी मदद नहीं कर पाऊंगा। अब आप सब उत्सुक होंगे जानने के लिए कि क्या होगा, और मैं भी जानना चाहूंगी कि आगे क्या होगा। पर आगे जाने से पहले संजय जी, क्यों ना एक गीत हो जाए और फिर हम कहानी में आगे बढ़ते हैं।
0: बिल्कुल अनुराधा जी, गीत तो हम लोग तैयार करके रख चुके हैं। शांता जी जो पनेल के पीछे बैठे हुए, शांता जी कौन सा गीत चलाने वाले हैं आप?
1: गुरु जी के बारे में, मेरे सतगुरु जी के तुझसी मेहर करो, सिद्धार्थ मोहन की आवाज में।
0: सिद्धार्थ मोहन की आवाज में हम सब एक सुंदर सा गीत के ओर बढ़ेंगे, फिर और संदेश अनुराधा जी हम लोग के लिए रखने वाले हैं।

0: ये सुंदर सा गीत सुनने को प्राप्त हुआ। और किसके आवाज में फिर ये गीत जो आपने रखे शांता जी?
1: सिद्धार्थ मोहन जी की आवाज में।
0: सिद्धार्थ मोहन जी की आवाज में ये सुंदर सा गीत हम सबको सुनने को प्राप्त हुआ। हमारे साथ जुड़े हैं भारत से अनुराधा जी। और अनुराधा जी, आज का विषय जो है कि गुरु का दक्षिणा, तो गुरु का दक्षिणा कैसे और किस प्रकार से है, आप सुनते रहना, क्योंकि अनुराधा जी खूब जोर तोर से हम सबको इसके बारे में सुनाने वाले हैं।
2: तो चलिए आगे बढ़ते हैं और पता लगाते हैं कि आगे क्या हुआ। जो कहानी जो गुरुजी सुना रहे थे वो खत्म हुई। तो जब कहानी खत्म हुई, वह शिष्य जो गुरुजी की कहानी एकाग्रचित होकर सुन रहा था, बड़े ध्यान से सुन रहा था, अचानक बड़े उत्साह से बोला, गुरुजी अब मुझे अच्छी तरह से ज्ञात हो गया है कि आप क्या कहना चाहते हैं। आपका संकेत वस्तुतः इसी ओर है ना कि जब सर्वत्र सुलभ सुखी पत्तियां भी निरर्थक या बेकार नहीं होती हैं, तो फिर हम कैसे किसी भी वस्तु या व्यक्ति को छोटा और महत्वहीन मानकर उसका तिरस्कार कर सकते हैं। चींटी से लेकर हाथी तक और सुई से लेकर तलवार तक सभी का अपना अपना महत्व होता है। गुरुजी भी तुरंत ही बोले, हाँ पुत्र, मेरे कहने का भी यही तात्पर्य है कि हम जब भी किसी से मिले तो उसे यथा योग मान देने का भरसक प्रयास करें, ताकि आपस में स्नेह, सद्भावना, सहानुभूति एवं सहिष्णुता का विस्तार होता रहे और हमारा जीवन संघर्ष के बजाय उत्सव बन सके। दूसरे यदि जीवन को एक खेल ही माना जाए तो बेहतर यही होगा कि हम निविशेष स्वस्थ एवं शांत प्रतियोगिता में ही भाग ले और अपने निष्पादन तथा निर्माण को ऊंचाई के शिखर पर ले जाने का प्रयास करें। तो गुरुजी ने जब बोला कि हमें किसी को भी नीचा नहीं समझना चाहिए, हमें किसी को कम नहीं, जीवन में अपने से कम नहीं समझना चाहिए, ना कि उनका अनादर करना चाहिए और दूसरे को हीन भावना से उनको छोटा नहीं कभी समझना चाहिए, क्योंकि हर इंसान में कुछ ना कुछ अच्छाई होती है, योग्यता होती है। तो जब हमें ये समझ में आ जाएगा कि हर इंसान, चाहे वो बाहरी रूप से कैसा भी हो, वो हर उसमें एक योग्यता है और वो कुछ हर इंसान अपने में अच्छा है, और हम जिस दिन उस इंसान की, दूसरे लोगों की इज्जत करना सीख लेंगे और उसी दिन हमारा जीवन एक उत्सव के तरह बन जाएगा और हम सब एक दूसरे से खुशी खुशी जीवन अपना व्यतीत करने लगेंगे। तो ये जो बात सुनकर अब शिष्य जो था वो पूरी तरह से संतुष्ट था। तो अंततः मैं यही कहना चाहती हूँ, यदि हम मन, वचन और कर्म इन तीनों ही स्तरों पर इस कहानी का मूल्यांकन करें तो भी यह कहानी खरी ही उतरेगी। सबके प्रति पूर्वग्रह से मुक्त मन वाला व्यक्ति अपने वचनों, यानी जो हम बोलते हैं, जो हम वचन हमारे बोलते हैं, से कभी भी किसी को आहत करने का दुस्साहस नहीं करता और उसकी यही ऊर्जा, उसकी यही एनर्जी उसके पुरुषार्थ के मार्ग की समस्त बाधाओं को हर लेती है। और वस्तुतः हमारे जीवन का सबसे बड़ा उत्सव। तो पुरुषार्थ ही होता है, ऐसा विद्वानों का मानना है। तो हम इस कहानी से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला कि जो गुरु ने अपने शिष्यों को कहानी सुनाकर उनको बताया कि हम भी उसी तरह अपने जीवन में हम सब भी यही सीखें कि हमारे हम हर इंसान को, हर व्यक्ति को हम उनको इज्जत दें, उनको कभी हीन भावना से छोटा ना सोचें कि हमारे सामने वाला हमसे छोटा है। और जो हमारे गुरुओं ने हमें, गुरु ने हमें शिक्षा दी है, हमारे बड़े हमें शिक्षा देते हैं, उनको जिस दिन हम वो समझ लेंगे कि वो क्या कहना चाहते हैं, हमें जो हमें सिखाया गया है कि हम दूसरों की इज्जत करें, दूसरों को हमेशा अपने कभी किसी को नीचा ना समझें, सबकी इज्जत करें और मिलजुल कर रहें, तो जिस दिन हम ये सीख लेंगे हमारा जीवन भी उस दिन एक उत्सव के समान हम व्यतीत कर सकते हैं और खुशी खुशी मिलकर एक दूसरे के साथ इस संसार में हम अपना जीवन मंगलमय होकर व्यतीत कर सकते हैं। आशा है ये आपको कहानी पसंद आई होगी। तो चले संजय जी आगे एक सुंदर सा गीत हो जाए।
0: अनुराधा जी बिल्कुल, आशा तो ये बात तो शायद आशा के लिए छोड़ दिया जाए, क्योंकि ये बिल्कुल बहुत अच्छा संदेश आपने रखे आज कि गुरु बिना। कबीरदा ने जो सुंदर संदेश रखे शांता जी,
1: सुनाओ जी।
0: कि गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाओ, बलिहारी गुरु आपनो दियो गोविंद दिखाई। बस यही बात पे अनुराधा जी भी अपना संदेश को रखे, और बिल्कुल जैसे कि आपने कहा कि आशा रखता हूँ, पर ये आशा रखने के बाद बिल्कुल है ही नहीं, बगैर गुरु के कुछ हो ही नहीं सकता, ऐसा है कि नहीं शांता जी? थोड़ा से नीदलांस में उसे आप निचोड़ दो
1: जी। संजय जी ऐसा है, गुरु जी का मतलब आपने पूछे थे तो यहाँ से मैं थोड़ा से सर्च की है, खोज कर लाई हूँ। तो गुरु है वर्ड, गुरु इज अफकलेट ए ट्वे वर्ड इन संस्कृत, द गु एंड द रू। The gu betekent duisternis en de ru betekent vernietiger. Een guru staat dus voor degene die de duisternis vernietigt en verlichting kan geven. Oftewel, een spirituele gids wie zijn leerlingen verlicht met zijn kennis en leringen. Dat is dan dat woord guru wat het betekent. En guru zelf die doen dat, zijn verlichte mensen, spirituele leraars of gids.
0: Shanta ji ne ati sundar roop se ye sandesh ko bhi Nederlands mein thora se translate kar diya, kyunki pura vritant to hum sab Nederlands mein nahi translate kar payenge, par kyun na ek geet ki aur badhte hain Shanta ji, to kuch aur aap use koshish karna Nederlands mein rakhne ko.
1: Ji Sanjay ji, main ek sawal karti hu ki jo hamara lehrar jahan pe hum school jate hain, कॉलेज जाते हैं, यूनिवर्सिटी जाते हैं, वो लेरार को हम भी गुरु कह सकते हैं ना?
0: क्यों ना?
1: हाँ तो वो भी हमारा,
0: पहले कहते हैं कि मातृ भव पितृ भव, माता पिता गुरु, फिर उसके बाद में शिक्षा गुरु, ऐसे इस प्रकार से कितना गुरु हमारे जीवन में
1: आते हैं जो हमको राह दिखाते हैं,
0: राह को दिखाने वाले।
1: हाँ।
0: अब आपने छेड़ी दिया तो मैं एक वृतांत और रखना चाहता हूँ, अगर आप मुझे मौका देंगे।
1: बिल्कुल,
0: तो
1: बिल्कुल,
0: क्योंकि पनेल के पीछे तो आप बैठे हुए हैं ना और बटम घीत लिया तो बोल नहीं पाएंगे।
1: नहीं नहीं, बटम नहीं गया, हमको यहाँ बात करना है, लोगों को जानना चाहिए कि गुरु क्या है, उसका और महत्व क्या है, और उसमें गहराई क्या, और अनुभव जो है उससे हम भी कैसे कहते हैं विश्वास दिला सकते हैं।
0: जरूर। तो दोस्तों, एक अवसर जब मिल गया तो जरूर हम कुछ रखने को कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि एक बार ऐसा हुआ, एक आश्रम में एक शिक्षक, एक चेला ने अपने गुरु से कहा कि गुरुजी, मुझे आपके सब बात अच्छा लग रहा है, और आप कहते हैं कि सब कोई के लिए, सब जीव के लिए कोई ना कोई अच्छा संदेश है।
1: ये
0: पर वो चेला ने कहा, पर गुरुजी मुझे एक बात से मैं सहमत नहीं हूँ, जो गटर में होते हैं जानवर, जिसे हम जानते हैं जोक।
1: हाँ?
0: तो पहले जो ये रेडियो सुन रहे हैं, पहले जो धान लगाए है,
1: हाँ?
0: घास लगाए है गोत्रों में घुस करके, और घास को काटे है गाय के लिए,
1: हाँ?
0: बकरी के लिए, तो सबको ये बात को पता है कि जोक क्या चीज है।
1: हाँ?
0: क्योंकि वो गटर में रहने वाले जानवर है।
1: हाँ?
0: और एक बार गोड़ में पकड़ लेवत रहा तो छोड़त ना रहा।
1: हाँ?
0: बड़ा मेहनत से छूटा था। तो चेला ने कहा कि गुरुजी ये जोक जो है ये कोई काम का चीज नहीं है। तो गुरुजी ने उसे उसी समय कोई और यानी कि ओके आंतोर्त ना देश, उसे कोई संदेश नहीं रखा, और कहा कि समय आने पे मैं जरूर इस पर ध्यान देंगे। और ऐसा होते हैं कुछ दिन विपरीत होते हैं, और एक प्राणी अपने पति के साथ और वहाँ गुरुजी के आश्रम में आकर के पहुँचे।
1: हाँ।
0: और बहुत सा बीमारी था उसे, उसके शरीर में से, और वो मत यानी कि जो बोलते ना पीप,
1: हाँ,
0: जो निकल रहा था,
1: हाँ, दो दो
0: वेतब्लुत्सेल। तो निकल रहा था, तो वो अपने और डॉक्टर से कोई तरक्की नहीं हुआ था, तो वो आकर के आश्रम में गुरुजी के पास और संत के पास पहुंचते हैं। तो गुरुजी जो कहते हैं, वही शिक्षक यानी कि वो चेला को बुलाते हैं और कहते कि जाओ गटर से कुछ जोक को पकड़ के लेकर आओ। तो वो जो शिक्षक है, चेला है, जो जा करके गटर में से और कुछ जोक को पकड़ के लेकर आते हैं, और गुरुजी वो जो घाव था वो व्यक्ति का,
1: हाँ?
0: वो घाव पे छोड़ देते हैं, और वही जोक जो पकड़ करके वो घाव को चूस करके और बिल्कुल सुखा देते हैं।
1: हाँ?
0: तभी गुरुजी क्या कहते हैं अपने शिक्षक को बुला करके, अपने चेला को बुला करके कहते कि देखो, आपने कहा कि ये जीव जो जोक के नाम से है उसमें कोई महत्व नहीं है, और देखिए आज इसका जो इतना बीमार व्यक्ति है, इसका जो दर्द था उन्होंने चूस करके और निकाल लिया वो बीमारी को, तो देखो कि सब चीज में कुछ ना कुछ गुण होता है।
1: हाँ।
0: तो वहां पर जाकर के चेला ने गुरुजी का प्रणाम करके नमन करते कहे कि गुरुजी गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाओ, बलिहारी दोनों आपने गुरु आपने दियो गोविंद को दिखाए। कहने के तात्पर्य है गुरु बिना तो गोविंद को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, मुमकिन है ही नहीं।
1: हाँ, जोग जो है वो स्लक कहते हैं उसे।
0: स्लक कहते हैं?
1: हाँ,
0: नहीं, स्लक कहते हैं मेथन हेल्सल है, और जोग के हेल्सल नहीं होते हैं।
1: हाँ, उसे भी स्लक कहते हैं।
0: बड़ा कटियड़ा है।
1: हाँ, हाँ।
0: शांता तू आप शहर में रह ले, हम लोग गांव में रहते ही।
1: नहीं, मैं भी गांव में, मैं भी गांव की हूँ।
0: और आपको जोग काटा कभी?
1: नहीं, हाँ काटा नहीं है, हम गए थे हम गए थे पहुँचने के लिए नई गोत्रों को दे रहा ना, तो उसमें गांव के ऐसे कोई साथी सहेली गए थे, तो मैं भी गई। हाँ, उसके बाद जो मैं घर आई और नहाने लगी तो देखे मेरे पाँव में वो ऐसे चपका था, माय गॉड
0: तो दोस्तों आप भी, आपको भी ख्याल हो गया होगा घास काटते समय, और पहले सबके पास लाट्स भी नहीं होता था ना।
1: वही तो, और जो ये आप कहते हैं ना संजय जी, एक ये डॉक्टर का अनुभव में भी देख रही देखा है।

0: खून लेगा ना अपने आप में, तो सर्कुलेशन से ऐसे होते हुए वो उसका उंगली जो कट के निकल गया था ना, वो जुड़ गया। तो सभी का जैसा आपने कहा, सभी में एक गुण है, सब सब चीज में, सब जीव में एक गुण है,
1: सब जीव में एक गुण है। तो क्यों ना आज पिटारा से निकाले हुए गुरु का गीत सुना दो।
0: सुना देती हूँ
1: अनुराधा जी, शांता जी।

0: सुनो लो, आज का विषय जो अनुराधा जी ने रखे कि गुरु दक्षिणा के अंतर्गत में हम सब भी कुछ बातचीत हुआ,
1: बहुत सुंदर सा है, वो भी गुरु जी के बारे में। और पता है कि लोग सुनते हैं और फीडबैक देते हैं, जो हमको भी मिलते हैं और फ़ोन करके भी देते हैं कि ये प्रोग्राम उनको बहुत अच्छा लगता सुनने के लिए। तो यहाँ से मैं, हम सब भी ज्योति का प्रकाश जो हम बनाते हैं, हमारे सभी साथी की ओर से आप सभी की भी बहुत बहुत धन्यवाद है कि आप सुनते हैं और जो सुनकर अपना जीवन में प्रयोग लाते हैं, उससे हम भी और खुशी होते, हमारे सभी साथी।
0: तो एक गीत जो शांता जी, मेरे साथ है गुरु जी।

0: अवश्य सिद्धार्थ मोहन की आवाज़ में हम सुने कि तू मेरे साथ है, ये सुंदर सा गुरु के प्रति अपना प्रेम और प्यार संगीत के रूप में हमको सुना दी है।
1: और वही गीत की ओर हम सब बढ़ने वाले हैं दोस्तों, सुनने वालों, जो हमारे प्रोग्राम के आखिरी सीमा जो हम लोग पहुंच जाते हैं, तो वही गीत हम लोग हर सप्ताह चलाते हैं कि लागी छूटे ना
0: अब तो सनम।

और शब्द ही लोगों को। तो अंत में मैं ये कहना चाहूँगी कि कोई भी व्यक्ति हमारा मित्र या शत्रु बनकर संसार में नहीं आता, हमारा व्यवहार और शब्द ही लोगों को मित्र और शत्रु बनाता है। इन्हीं विचारों के साथ सभी सुनने वालों को अनुराधा का नमस्कार।

जी मेरे प्यारे सुनने वालों, ज्योति का प्रकाश प्रोग्राम सुनने के लिए आपको दिल से धन्यवाद किया जाता है और यहाँ से स्वीकार कीजिए सेविका शांता की प्यार भरी नमस्कार।

दोस्तों, जिंदगी छोटी नहीं होती है, लोग जीना ही देरी से शुरू करते हैं। जब तक रास्ते समझ में आते हैं तब तक लौटने का वक्त हो जाता है। बस यही जिंदगी है दोस्तों। लोग अक्सर कहते हैं कि जिंदगी यानी जिंदा रहेंगे तो मिलेंगे, मगर एक अच्छे सच्चे दोस्त ने ये भी कहा है कि मिलते रहेंगे तो जिंदा रहेंगे। हम सभी मिलकर के कार्यक्रम को आपके साथ और जुड़े रहे। आज के कार्यक्रम में सहयोग दिए अनुराधा चंदर जी जो भारत दिल्ली से, राजेंद्र सिंह जी जो हमारे मास्टर जी जो राजस्थान से, हम सबको सहयोग दिए। हमारे साथ स्टूडियो में पनेल के पीछे शांता खेमई जी और मैं हूँ आपका सेवक संजय। यही आशा रखकर कि कुछ न कुछ संदेश आप तक जरूर पहुंचे होंगे। सभी के शुभ दिवस। नमस्कार।

0: दोस्तों सुनने वालों, ये फाहन हिंदुस्तानी रेडियो है। यहाँ कुछ सुंदर सुंदर गीतों के साथ और लेकर के कार्यक्रम में आपके साथ जुड़े हुए हैं। तो बबली जी, अभी आप आज जो पैनल के पीछे हुए हैं, बैठे हुए हैं, तो संजय तो कुछ गलती कर ही देता है। और अगला गीत जो हम सबके लिए आपने कौन सा चुन करके रखे?
1: अगला गीत मैंने चुन कर रखा है फिल्म पठान।
0: फिल्म का नाम पठान?
1: हाँ जी, जिसमें शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण ने अभिनय किए हैं।
0: जिसका, जैसे कि आपने कहा कि उसमें शाहरुख खान और दीपिका ने अपना
1: अभिनय किया है,
0: अभिनय किया है, तो क्यों ना वो गीत को हम रखते हैं और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते। और शांता जी, आप भी माइक के पाछे चले जाओ। भला ये तो बताइए, कैसे आपका दिन बीता आज?
2: मेरे दिन तो बहुत खास थे और बहुत अच्छा से, बहुत सुंदर से और बहुत प्यार से मेरी दिन जो गुजरी है और बीते हैं, और उसके साथ प्यार के साथ हम यहाँ पे अभी स्टूडियो में उपस्थित हो गई हूँ आप लोग के सेवा करने के लिए और आप लोग के प्यार भी पाने के लिए।
0: हम सब तो उपस्थित हो गए हैं स्टूडियो में और कुछ समय तक हम सब सभी सुनने वालों के साथ जुड़े रहेंगे। फ़ोन का नंबर जो हम सबके, जो आप फ़ोन कर सकते हैं, तो हम जरूर कोशिश करेंगे आपके लिए ख़ास गीतों को और रखने के लिए।
1: हाँ जी, फ़ोन का नंबर है 07 3 6 2 2 0 7 7।
0: तो गीत की ओर हम बढ़ते हैं सुनने वालों।

0: सुनने वालों, अभी आपने सुना फिल्म पठान से गीत, अब प्ले पर रखेंगे सूर्यवंशी फिल्म का गीत।
1: सूर्यवंशी जो आपने चुन करके रख दिए है, पर उस ओर बढ़ने से पहले कहीं थनी से अंतरिक्ष ब्लिक इन ऑन से यार, ज्योति का प्रकाश जो कार्यक्रम हम लोग बनाते हैं, तो उससे आप कुछ लाभ हुआ आपके कि नहीं?
0: उससे ये लाभ हुआ कि जो चीज़ें हम नहीं जानते थे वो भी पढ़ने को मिली, और रेडियो में थोड़ा एक्सपीरियंस हुआ कि रेडियो में कैसे बातचीत की जाती है।
1: तो ये साल आपका ये हुआ कि आप रेडियो से कैसे काम कर सकते हैं, और यानी कि कुछ संदेश जो हमारे खोजी सेना रखते हैं ना।
0: हाँ,
1: तो शांता जी इस पे आपके और भी मैं इशारा कर रहा हूँ कि क्योंकि आप हैप्पी बिसोंद्र दिंगस में ही हमाग बेचार।
2: वही जो मैं कहना चाहती थी, बबली तो भी कह दी, ज्योति का प्रकाश में ये भी जो ऐसे बहुत सारे बातें जो मेरी को पता नहीं था, तो उस पर मेरे आज भी उससे साथ में बहुत कुछ सीखी हूँ।
1: पर ये बात है शांता जी, अनाउंसर जो आपको लोग जानते हैं, आप गाना भी गाते हैं, हम लोग कॉन्सर्ट में भी गए, तो उसके बारे में कुछ अपना एक्सपीरियंस हम सबसे बांटे।
2: अपने मुंह से अपनी तारीफ करना तो अच्छा नहीं लगता।
1: नहीं, तारीफ ना, पर हु बैं बलांत इन द रेडियो वर्ल्ड, हु बैं बलांत इन द सॉन्ग वर्ल्ड, ये तो हमारे साथ सुनने वालों के भी अच्छा लगे इस बात, इन बातों को सुनने को। पहले रेडियो के ओर बढ़ते हैं क्योंकि यह प्रोग्राम अलकवंसदा, और बीच बीच में हम लोग का भी कार्यक्रम होते हैं ना।
2: रेडियो में मैं तो अपने आप तो नहीं आई, आपने मेरी को यहाँ पे इनवाइट की, और उसके बाद मेरी को मेरी कैसे कहते हैं, मैं हमारे क्वालिटी देखकर यहाँ के अनाउंसर मेरी को कहा कि आप आओ, तो इसी तरह से मैं इसमें आ गई।
1: बस आ गए और कार्यक्रम चलने लगा। और ये भी है कि आप, मैं एक कॉन्सर्ट में गए थे आपके, तो वहाँ आप कितने दिन से और संग में हो?
2: संग तो ये तो बचपन से है, छोटे थे तो उन्हीं से सीखे, तब इससे तो लोग सुनते सुनते तो मेरी को भी इनवाइट की, मेरी को भी कहा कि आओ मेरे साथ भी कुछ हमारे सेवा कर दो, तो उसमें भी इस तरह से हो गई।
1: पर शांता जी ये भी है कि आप इन द औदर तहस आदि में भी जा कर के सहयोग देते ना संगीत के साथ,
2: सेवा। हाँ, उस पे तो चाहिए सेवा करने के लिए मौका बनाकर, और सेवा चाहिए करने के लिए, सेवा तो हमारी धर्म है। धन्य
1: जहाँ धर्म है ना सेवा, क्योंकि सेवा हम लोग फाक कहीं भी कुछ भी जाओ और सेवा करने का मौका मिले तो उसे हमें जरूर करना चाहिए।
2: सेवा इज ब्रेथ है, इट इज नॉट अलोन फॉर औदर द एंड औदर सॉर्ग लाइफ ऑफ वोन, मा सेवा इज गोन ओक वार वार बे इमान द वेग कान वेस द सुकंदे इज जो रास्ता खोजते कहाँ पे जाने
1: शायद कभी
2: ना जैसे कोई रास्ता गूगल मैप से खोजते हैं या कहाँ पे जाना चाहते हैं, तो आपको रास्ता में पूछे कि ये आप जानते हैं ये रास्ता कहाँ, ये ऐसे जगह कहाँ है, तो अगर आपको पता है तो उसको भी बता दो।
1: जरूर, हाँ,
2: वो भी सेवा है।
1: में गिनती है।
2: हाँ, अगर दुकान में चला जाए या बाजार में चला जाए, ऐसे कोई व्यक्ति जो कुछ खरीद नहीं पाते तो उसको भी आप मदद कर दो, वो भी सेवा है।
1: बबली जी, सेवा के बारे में आपके क्या ख्याल है?
0: सेवा है कि सबका साथ देना, सेवा करनी चाहिए और मिलजुल के भी करनी चाहिए, अकेले भी करनी चाहिए सेवा। मिलजुल के करें तो थोड़ी आसानी होती है, अकेले करेंगे तो थोड़ी मुश्किल भी हो सकती है।
1: ऐसा है कि कितने मैं भारत जाता रहता हूँ, और वहाँ पर जैसे कि गुरुद्वारा आरी में कितने प्रकार के सेवा सवेरे से शाम तलक और सेवा होते हैं। अभी गत दिनों हम इंग्लैंड में था, और इंग्लैंड में एक मंदिर को गया, तो वहाँ गया तो पूछ रहे थे, पंडित जी से पूछ रहे थे कि पंडित जी यहाँ बताइए कि कितने समय तलक आप रहते, तो बोले हमें 8 से 8 बजे तलक अलाउट है, यानी कि 8 बजे सुबह से 8 बजे रात्रि तलक और खुला रहता है मंदिर। हाँ, पर बोले पर कह रहे थे कि हमें हमने ये मांग की है कि हम अपना कार्यक्रम, खुद का कार्यक्रम जो आ करके साढ़े छः हलफ सोइफा से हम अपना कार्यक्रम प्रारंभ कर देते हैं, तो वो भी अपना सेवा में लगे हुए हैं। और जैसे कि आप कुछ कहने वाले थे शांता जी।
2: हाँ जी, आपसे हम यहाँ सेवा के बात करते हैं थोड़ा में, तो जैसे कि हमारा तय सौरख भी है ना, बुजुर्गों भी जो घर पे रहते हैं तो और भी उसको भी जाते हैं दवा देने के लिए, नहवाने के लिए, वो भी सेवा है।
1: वो भी सेवा, पर वो तो बताल बांध है ना,
2: मैं फिर भी सेवा है,
1: है सेवा, कुछ
2: सेवा है।
1: तो बबली जी, अगला गीत जो आप चुन रखे हैं, क्यों ना हम चला देते हैं।
0: हाँ जी जरूर, फिल्म सूर्यवंशी से।
1: फिल्म का नाम सूर्यवंशी, जो किसका खेलल के नया एक्टर है ना।
0: हाँ जी, अक्षय कुमार कैटरीना कैफ।
1: अक्षय कुमार और कैटरीना कैफ जिन्होंने अपना कला से प्रदर्शन दिए हैं।

दोस्तों ये गीत जो फिल्म सूर्यवंशी से निकाला गया और रखा गया, और हम सब अगले गीत की ओर बढ़ेंगे जो बबली जी इस समय रख रहे हैं हम सब के लिए।

0: सुनने वालों, ये सुंदर सा गीत हम सब सुने और अगले गीत की ओर अभी जरूर बढ़ेंगे। पर ऐसा है कि शांता जी, पिछले साल आपने योगा में कुछ किया या नहीं किया? बबली जी, आप किया कुछ योगा के अंतर्गत? क्योंकि लोग कहते हैं कि योगा करने से, योग करने से ना,
1: हाँ,
0: योग करने से लोग 100 साल तक जी सकते हैं।
1: हाँ जी,
0: तो आपने कुछ इसके बारे में कुछ किया?
1: योगा किया, लेकिन ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत।
0: पर मैंने देखा कि शांता जी भी एक सर्टिफिकेट पाए है योगा के अंतर्गत। तो शांता जी, आपने भी कुछ योग के बारे में और किए और कुछ करते हैं, या सिर्फ सर्टिफिकेट लेने के लिए था?
2: योग के कोर्स हमने फॉलो किए, योगा कोर्सेस हमने फॉलो की, तो उसी के वजह से हमको वो सर्टिफिकेट मिला। और ये है कि उसको हमें रोज करना चाहिए,
0: रोज
2: योगा, हमको योग हमको रोज करना चाहिए।
0: क्या है कि आप रोज थोड़ा से करते हैं?
2: हाँ, मैं तो करती हूँ।
0: और शांता जी, ये भी अब यही अवसर है हमें कुछ प्रश्न रखने के, क्योंकि ज्योति का प्रकाश से हम सब काफ़ी संदेश लेकर आए हैं साल में। तो जो सेस दर्शन स्तप हम लोग के एक दिन में रखना है, क्या उस पर आप फिर ध्यान देते हैं कि नहीं?
2: वो तो मेरे प्रतिदिन के,
0: प्रतिदिन
2: प्रतिदिन के, हाँ, तो वो भी एक योग है,
0: जैसे कि भी आपने कहा रोज करते हैं।
2: हाँ, रोज, हाँ, हाँ, प्रतिदिन। उसके बाद मैं थोड़ा से रेक करती हूँ, यानी कि कसरत थोड़ा से करती हूँ
0: रोज।
2: हाँ,
0: ताकि ये रोज एक एक बहुत अहम बात हो जाता है ना।
2: हाँ, तो समय निकालना पड़ता है,
0: समय निकालना, हाँ, पड़ता है।
2: और ये समय ये कोई और के लिए नहीं, ये अपने आप के लिए है। अगर आप है तो जहान है, दुनिया है, सब कुछ है, अपरात्रन दोस्ती सब कुछ है, तो आप माला माल है।
0: जब ये तन है तो है सब कुछ, हाँ। ये तन नहीं तो चाहे जितना सब कहने वाला बात हो जाता है, हाँ। यही तन से सब चीज करना है, तो योग।
2: हाँ, इस पर मेरे को बात आ गए पैसे के बारे में, पैसा जो है ना, तो हमको जीते जी बहुत कुछ प्राप्त करा सकते हैं।
0: हाँ, पैसा जो है तो हमें जीते जी बहुत कुछ प्राप्त करा सकते हैं,
2: प्राप्त करा सकते हैं, पर पैसा हम लेकर नहीं जा सकते। हम मरते हैं तो पैसा लेकर नहीं जा सकते हैं,
0: मरने के बाद वो साथ नहीं जाते।
2: हाँ, तो जो है हमारे पास पैसा, तो उसे इस्तेमाल करना जीते जी
0: है, पैसा तो उसे इस्तेमाल करना जीते। तो यही कारण है आप जब देखो तब फकांसी चले जाते हो।
2: ये ऊपर वाले की देन है और आप लोग के आशीर्वाद है।
0: तो दोस्तों, ये भी बात हो जाता है कि अतिशन हेल बिसुंदर यार, इस साल जो जैसे कि अभी प्रश्न रखा गया कि आप योग में क्या और किए, और जैसे कि शांता जी ने और बबली जी ने बताए कि कुछ ना कुछ तो किए हैं, और देखो हम लोगों भी और जा करके कुछ कोर्स किए और आगे ये योग के अंतर्गत आगे बढ़ते, धीरे धीरे आगे बढ़ रहे, बढ़ते जाना
2: अच्छा
0: चाहिए भी।
2: जी हाँ संजय, आपने मेरे से प्रश्न किए तो मैं आपसे भी प्रश्न करती हूँ, और मैं बबली से प्रश्न करती हूँ कि आप लोग योगा करते हो? वैसे बबली जी मेरे से भी कहा कि वो जब उसको समय मिलती है तो वो जाते हैं सैदर पार्क में राउंड करने के लिए, वॉक करने के लिए।
0: जी बबली जी, तो चक्कर प्रश्न मेरे लिए भी था ना शांता जी?
2: हाँ हाँ, तुम्हारे लिए भी।
0: तो जैसे कि आपने कहा कि रोज,
2: प्रतिदिन,
0: रोज वाला बात, ये सुबह हमारे जो कुछ कार्य होता है उसके बाद में थोड़ा योग करना, ये हमें, वो बिना, उसके बिना तो हमारा दिन शुरू ही नहीं होता। तो योग रोज, जो जैसे जो शब्द प्रयोग किए कि रोज प्रतिदिन और जा कर के थोड़ा योग किया जाता है। तो बबली जी, इसमें दूसरा गाना आपने, मैं देख रहा हूँ, तैयार करके रख चुके हैं।
1: हाँ जी, मैंने दूसरा गाना तैयार कर लिया।
0: पर अभी तो प्रश्न ये रखना था कि जैसे कि अभी हमने थोड़ा सा इशारा किया कि फकांसी से हम सब जाते रहे, क्योंकि हम लोग हॉलैंड देश एक ऐसा देश है, यहाँ से कहीं भी जाना, जाने का इच्छा करे तो आप जा सकते हैं। तो इसके बारे में आप कुछ संदेश रखना चाहते हो हमारे सुनने वालों के, क्योंकि वत्स एन आनर आदर्स जस ओम नारतूत खान।
2: मैं तो यही सोचती हूँ कि जाना अगर आपको हो तो आप ज़रूर से जाएं, मुमकिन हो और आपके पास वो सुविधा हो तो आप ज़रूर से जाएं विदेश में घूमने के लिए। पर मैं ये भी सोचती हूँ और देखती हूँ कि बाहर देशों के बाहर मुल्कों जो है वो भी देखते हैं हमारे तरफ, इस देश की तरफ यहाँ पे आने के लिए। अब बाहर ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा लोग आते हैं इस देश में, हर शायद ये सोचते हैं कि हमारा देश भी बहुत अच्छा है।
0: शांता जी, ये बात जो आप छेड़ी दिया है तो मैं कुछ और इस पे रखना चाहता हूँ।
2: जरूर से सुनाओ।
0: क्योंकि औरों देशों में स्किफॉल से, जैसे हमारे हवाई अड्डा जो सबसे बड़ा वाला है, वैसे और भी हवाई अड्डा है हॉलैंड देश में, मगर लगभग 160,000 लोग प्रतिदिन वो एयरपोर्ट का प्रयोग करते हैं। उसमें से कितने लोग हॉलैंड देश देखने के लिए आते हैं, और हम सब ये दनहाग शहर में शायद रहते हैं। दनहाग शहर जो एक कैपिटल यहाँ हॉलैंड का एम्स्टर्डम है, और ये जो रखेरिंगस्टाद कहा जाता है ना,
2: ये
0: पर जो लोग यहाँ आते हैं, तो कभी ये बात मैंने अपने प्रश्न में किया कि यहाँ हम अपने दनहाग शहर में, क्या हम कभी इस पे सोचे कि कितने म्यूजियम से जो औरों देशों से यहाँ लोग आते हैं देखने को, जो दूसरों देशों से यहाँ आकर के लोग देखते हैं।
2: बात सही है।
0: दूसरा कि जो हॉलैंड एक मिनी हॉलैंड बनाया गया मधुरुदाम जैसे, तो कितने देश से लोग विंटर और समर में यहाँ, जो दनहाग शहर में और वेस्टरब्रुक पार्क, सी लाइफ, ये सैमुअल बसिन्सवार्द खैदे जो हम सबके यहाँ पर है। और बबली जी, आप उंगली उठा दिए तो आप तो कहेंगे कुछ।
1: हाँ जी, मैं ये कहना चाहती हूँ कि जैसे यहाँ का चीज़ कितना फेमस है पूरे दुनिया में, लोग वो खाना पसंद करते हैं और देखना भी चाहते हैं कि कैसे, अरे बनता नहीं देखते, फैब्रिक में तो नहीं जा सकते, लेकिन नई नई यहाँ का जो वो फूल है, जो
0: फूल
1: सब फिल्मों में देखो शूटिंग होती है यहाँ पर आके।
0: तो ये जैसे कि आप कह रहे हैं बबली जी, वो जो चीज़ जहाँ से, और अगर आप चाहे तो एर्सेनवेल एक बेनवेलस खवेस जहाँ पर कास बनाया जाता है,
1: हाँ जी,
0: तो अवसर है जा कर के देखने के लिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ जो दुकान में आता है तो वो तो सब फरवरक प्रोडक्ट आता,
1: हाँ जी,
0: है,
1: पर वो तो पैकिंग में होता।
0: अवसर है ये, पर ऐसा है कि हॉलैंड जैसे कि शांता जी अभी कहा कि एर्सेनवेल हेल फील प्लेक वाई नुकन,
2: बिल्कुल वैसे है ऐसे कि भी हम देख सूरीनाम से यहाँ आए ना, और यहाँ से हम हॉलैंड से हम जाते हैं देश विदेश घूमने के लिए, देश विदेश जाते हैं हम घूमने के लिए। अगर हम सोचे तो सूरीनाम से हम यहाँ आए, और अपने आप से पूछो सूरीनाम, सूरीनामा होते हुए हम सूरीनामा के कौन कौन कोना देखे, और नीदरलैंड में भी हम होते हुए आज सालों से हम बातें यहाँ, सोचो आप कितने लोग ऐसे हैं जो अभी आरनहेम नहीं देखे, और जो आरनहेम है शायद आम्स्टरडाम अभी नहीं देखे, मधुरुदाम जो आपने कहा ना वो नहीं देखे, पर विदेशों से आए के वो लोग वो सब जगह घूम कर और जा जाते हैं, और हम यहाँ इसी देश में रह कर और नहीं देख पाते। तो मैं कहती हूँ पहले अपना देश के भेष जानो तो फिर जाओ परदेश।
0: ऐसा बबली जी,
1: शांता जी आपने बिल्कुल ठीक कहा, यही बात भारत में लागू होती है। भारत में भी लोग पूरा भारत नहीं देख सकते, और जो बाहर विदेश से जाते हैं वो बल्कि और ज़्यादा देखते हैं भारत को।
0: तो ये बात है शांता जी, पर ये भी बात है कि हम लोग दनहाग शहर में हम सब बाजार तो जानते हैं।
2: हाँ हाँ, देख
0: बाजार का हर एक गेड़ा जानते हैं।
2: हाँ, दनहाग शहर भी बहुत बड़ा है, और दनहाग के निवासी भी अबे शायद कोई कैकडोइन भी नहीं जानते हैं,
0: सही बात है,
2: कात्वेक नहीं जानते
0: हैं, यहाँ की दनहाग के निवासी ऐसा मैंने सुना है,
2: हाक्सोबोस कितने नहीं जानते होंगे,
0: स्केफनिंग भी नहीं जानते हैं। तो ऐसा ये बात बिल्कुल है कि हमें अपना देश में जाना,
2: वही तो मैं कह रही हूँ, देश के भेष जानो फिर जाओ परदेश,
0: देश के भेष जानो फिर जाओ परदेश।

0: दोस्तों सुनने वालों, हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और हम आशा ये रखते हैं कि कुछ ना कुछ संदेश, कुछ ना कुछ जो हमारे जो हम साथ में मिलकर के यहाँ स्टूडियो में हैं, कुछ ना कुछ संदेश आपके लिए रखे। सुनने वालों, हम अगला गीत की ओर बढ़ेंगे और अगला गीत का बोल क्या है शांता जी?
1: बबली जी पनीर के पाछे बैठी है, तो बबली जी अगला गीत क्या है?
2: हाँ जी, अगला गीत है फिल्म बजरंगी भाईजान से, तू जो मिला।

सुनने वालों, यहाँ तक हम सब अपना सहयोग दिए और यहाँ से कार्यक्रम जो हमारे, हम आशा ये रखते हूँ कि जरूर कुछ ना कुछ अच्छा लगा होगा। फिर मिलेंगे, नमस्कार।

0: ख्यालों में जय हंगामा, कहां भाग रही तू? मैं या अल्लाह, काले से डर गए क्या?
1: हमें काले हैं।

आणि तग जम तग झाला आमचं ताग जग ताक ताडी गेन ताग नाक ताग जम ताक नाक नाक जम ताक नाक नाक जम ताक नाक नाक जम तारिता जग तारिता जन जाने को गुदारी दाबू तारी गेटे ताली जम तारिता जग तारिता जन जाने को गुदारी दाबू तारी गेटे

0: भाई यूसुफ जी, कभी लेफ्ट कभी राइट आप चल रहे हैं, ऐसा क्यों आप इस बार ऐसा करते हो?
1: इंसान कैसे चले क्या पड़ेगा, सोझा ना चल पाइए।
0: सोझा ना चल पाओगे?
1: जी ना,
0: बिल्कुल ना।
1: कभी लेंग्स कभी रेक्स,
0: कभी लेफ्ट कभी राइट,
1: वही गाना में सुना दे से, चल बेटा लेफ्ट चल बेटा राइट।
0: सुनने वालों, ये गीत पे थोड़ा से ध्यान देना, क्योंकि ये हमारे यूसुफ जी का ओपनिंग नंबर होते हैं। और जीवन में कुछ ना कुछ तो सीखना पड़ता है ना।

0: कभी लेफ्ट कभी राइट, तो कभी लेफ्ट तो कभी राइट होता है, यही जीवन का और संदेश है। हमारे साथ हमारे भाई यूसुफ जी, जो इसके बारे में और कुछ सुनाने वाले हैं जरूर। यूसुफ भाई जी, ये फिल्म का नाम दो दिल का दास्तान, दिलों का दास्तान है ना?
1: और दो दिलों का दास्तान,
0: तो ये पुराना फिल्म और अनहेल ऑफ फिल्म जिसमें बड़ा संदेश है। भाई यूसुफ जी, पहले के समय पे जैसे कि आप बात कर रहे थे कि बायोस्कोप जो होते थे सूरीनाम में ना?
1: जी हाँ।
0: मेरे ख्याल से बहिन यार सस्तक की फैफ्तक से और वहाँ बायोस्कोप होने लगे थे।
1: जी हाँ।
0: और वहाँ पर भले ये बताओ कि कौन पहला फिल्म साइट वहाँ चलाया गया?
1: पहला फिल्म जो चला था सूरीनाम में?
0: जी, यानी खास करके हिंदुस्तानी फिल्म।
1: हिंदुस्तानी फिल्म वो रहा ना द पारल के ओपनिंग फिल्म रहा, जो फिल्म मदर इंडिया
0: द पारल के ओपनिंग फिल्म होते थे
1: मदर इंडिया।
0: और ये इन द यार अंबेच बखिन यार फाइव तक के द पारल जो कहाँ पर रहता था?
1: वानिकास्त्रात
0: अब द भोग वहाँ जहाँ वाटर लाइडिंग के तोरण और उस तरफ थे। पर हमारे साथ शांता जी बैठे हुए और बाद में बायोस्कोप के सिवा एक ओपलुख थिएटर बन गया था जहाँ पर शांता जी भी शायद और वहाँ उसके बारे में और बता सकते। शांता जी क्या वो मेरे ख्याल से अब नहीं है ना?
1: अब ना है वो।
0: जो ओपलुख बायोस्कोप बनाया गया था तो वो कौन साल में बनाया गया आपको पता है? मेरे ख्याल से इन द यार सैफन तक एन तख तक
1: उसे आगे रहा,
0: उससे पहले अख्तसस्तक नहीं ना, इतना इतना पुराना जो
1: तो लेके चल जाओ भीतर बड़का पर्दा है,
0: बड़का पर्दा पे
1: नहीं मतलब दत्वार खसाल खो एंड मोय तय तो मत। और अफलाइडें ढेर ना रहा है हम लोग के हिंदुस्तानी के,
0: अफलाइडें ढेर ना,
1: हफ्ता भर काम करो वीकेंड चल जाओ फिल्म कोनो चल जाता रहा कोला क्रेक बॉस फीफा कर रहा निकेरी कोनो चल जाए कोनो कमवेना कोनो शर्मक्का।
0: देखो जो हम लोग तनी से और बड़ा होने लगे तो हम लोग का हर हफ्ता कभी फुटबॉल हिया तो फुटबॉल वहाँ वो उसमें हम लगे रहते थे।
1: हाँ, फुटबॉल में भी ज़्यादा हम लोग हिंदुस्तानी लोग ढेर भी करी से ना।
0: और ये जो बायोस्कोप है भाई यूसुफ जी, इसमें आपको ज़्यादा जानकारी क्योंकि वीडियो जो बाद में जो घर घर पे वीडियो किनाने लगा तो वो बखिन यार ताख्तक के बात है ना?
1: मैं जहाँ लग पता है सूरीनाम में
0: बखिन यार ताख्तक एंड यार सैफन तक बखिन यार ताख्तक
1: तब तब तब पहले इंडस्ट्री जान ले जो थिएटर रहा उस सब तने कमती हो लगल आदमी लोग अब घरे घर फिल्म अपन ताके तना जाए थिएटर में देखे
0: तो थिएटर नहीं जाते थे देखने को। कि कुछ आपके ओर से जब रखना है बायोस्कोप के बारे में जो सूरीनाम में हुए है और उसके बारे में जानकारी है तो जरूर आप हमारे स्टूडियो में फ़ोन कर सकते हैं। स्टूडियो का और टेलीफोन नंबर जो यूसुफ जी आपको सुनाने वाले हैं,
1: टेलीफोन नंबर है 07-365-22-47। वो इस वो नंबर है जो इस साइट है
0: इस समय जो हमारे पुराना नंबर है ना यूसुफ जी, जो फिर से दोबारा चालू हो गए हैं।
1: या एंड द अंदर नंबर द आउट नंबर इज ऑल इन वर्क एंड दैट इज 07-36-22-077। और एक वन नंबर जो है वो आंखसलोते है है आए गए हम लोग के मिल गए हैं मबे आंखसलोते ना है दिस काबल आज भी हां दोनों पुराना नंबर हो जाएगा हम लोग के।
0: तो ये भी एक बढ़िया बात है, नया स्टूडियो ना जो पुराना नंबर होते थे फिर हम लोग का फिर दोबारा और चालू हो जाएगा। सुनने वालों, हम एक सुंदर सा गीत की ओर बढ़ेंगे और अभी और भी संदेश हमारे भाई यूसुफ जी हम सबको सुनाने वाले हैं।

0: यूसुफ भाई, अभी आपने कुछ कह रहे थे कि ये एक्टर का क्या नाम है?
1: भगवान।
0: और इनका फेवरेट कुछ इसके बारे में आप कह रहे थे?
1: ये एकर डांस जोन रहा पहले, वो अमिताभ बच्चन ढेर कॉपियर करी से उसका स्टाइल के डांस।
0: तो अगर आप अमिताभ बच्चन के कहते तो मुझे कुछ ख्याल आ गया। अमिताभ बच्चन जब 80 साल का उसका हैप्पी बर्थडे मनाया गया तो कौन बनेगा करोड़पति में, शायद आप देखे होंगे?
1: जी
0: नहीं देखा
1: ना, ना, ना।
0: पर जो देखे होंगे तो उसके लिए स्पेशल एक और कलाकार आए थे गाने के लिए, क्योंकि अमिताभ बच्चन जो बंगाल से बिलोंग होते हैं और उनके लिए बंगाल में सबसे और जो बेस्ट सॉन्गर है कहलाते हैं, उसका नाम कहा जाता है श्री गौतम दास बाउल जी। अगर हम उसके बारे में एक छोटा सा सॉन्ग उसका मैं रख देता हूँ।

0: सुनने वालों, जो बड़ा कलाकार है जो जिन्होंने और बड़े बड़े फिल्मों में भी काम किए ना बबली जी।
1: हाँ जी, इनकी एक फिल्म आ रही है सुनाक्षी सेना के लुटेरे, उसमें भी इन्होंने गाना गाया है और मिर्ची अवार्ड में भी गाना गाया है और एक इंडियन आइडल प्रोग्राम आता है उसमें भी इन्होंने गाने गाए हैं।
0: भाई जो हमारे यूसुफ जी है, और भी फिल्म के बारे में और भी कुछ संदेश रखने वाले यूसुफ जी, तो ये बताइए कि परमारिबो एक छोटा सा शहर ना?
2: Ja, hoofdstad Rap.
0: Hoofdstad.
2: Van Suriname met ongeveer, Utemem, Sochila, 80 tot 90.000 mensen.
0: 80 tot 90.000 mensen. Of bioscoop raal hoi, dat is wel ik.
2: Er is bara bioscoop raal. Als sap full house raal.
0: Sap full house.
2: Zoek sanitja ratuar.
0: Ik bioscoop bij Rust en Vredestraat meer uit dit heen.
2: Waar een familie Harkisun ke raal, waar een empire.
0: एम्पायर,
2: yeah.
0: और एक बियोस्कोप हमें ख्याल है, मैं अभी स्कूल जाते थे तो यहाँ दोमनी स्त्रात जहाँ पर एक लकड़ी का
2: बेलफ्यू,
0: वो बेलफ्यू रहा।
2: जी हाँ, वो बेलफ्यू, वो रहा एमिल लाफेंटा के, वो के चार को तैयार रहा।
0: और एक जो आपने क्लाइन सर मक्का स्त्रात में,
2: वो रहा फैमिली मानी चंद के जसोदरा।
0: जसोदरा,
2: जसोदरा।
0: ऐसे ऐसे भी यहाँ भी शांता जी, आपको कुछ ख्याल आता होगा कौन सा बियोस्कोप में आप गए वहाँ पहले के समय पे?
3: कंडाल में रहा।
0: कंडाल में भी?
3: कंडाल में, थिएटर शांति,
2: शांति वाज फन। ओ या
3: कंडाल में,
2: हाँ शांति रहेगा वो तो।
3: 10 नंबर की सरह 10 पे रहा थिएटर शांति, तो उस थिएटर में हम गए। सबसे पहला फिल्म अपन जीवन में स्टार्ट की है हाथी मेरा साथी से।
0: हाथी मेरा साथी से
3: पहला फिल्म जो हमने देखे बियोस्कोप में, थिएटर बियोस्कोप में। हाँ, हाथी मेरा साथी,
2: रजेश खन्ना।
3: हाँ, एक हिट फिल्म,
2: हिट फिल्म रहा वो, का सब बैनर फिल्म है तरह। अच्छा,
3: रजेश खन्ना के लगातार उस सुपरस्टार रहा ना, सबसे पहला सुपरस्टार वही था फिल्म इंडस्ट्री में। और क्योंकि उसका 14 या 15 फिल्म लगातार जो हिट हुआ है, 15 फिल्म लगातार अख्तरल का लगातार जो बने गए हिट होते आया है, और पहला और आखिरी ओकर बराबर आज तक कोई ना, सुपर सुपर स्टार है।
1: हम मैं भी कुछ कहना चाहती हूँ शांता जी, उससे पहले राजेंद्र कुमार जी जुबली कुमार कहलाए, उनकी फिल्में जुबली होती थी, सिल्वर जुबली।
3: 15 फिल्म अख्तरल का हिट हुआ जो है, तो वो सिर्फ राजेश खन्ना के है। हाँ, जैसे कि
2: हाँ,
3: और जैसे कि कुमार शानू, उसको भी उसको भी अवार्ड्स मिला है लगातार, 5 अख्तरल का 5 अवार्ड्स मिला अख्तरल का, तो वो भी कुछ महत्व होना चाहिए ना। हाँ, राजेंद्र जी जुबली हिट हुआ है, वो तो कुछ अलग से हमारा हिट हुआ है लगातार फिल्म बनाने, 15 फिल्म राजेश खन्ना के अख्तर अलकार हिट हुआ, सोचो तो
2: ना। वो सही बात है, देख एक फिल्म जो यहाँ पर रहा दोली से फिल्म रहा दो रास्ते राजेश खन्ना के, वो फिल्म एक को बुन रेखलामा ना भैल, तब वो 3 हफ्ता लगातार वो फिल्म चलल।
3: हम सूर्यनामा के भारत पहुँच गए।
4: मेहरबानों

0: दुनिया में रहना है तो काम करो प्यारे, ये बात नहीं है कि रोज़ सुबह जाकर खुयो मोर्ख कहना है, पर जब सुबह जागते हो तो अपने का तैयारियां करना है, घर बार कर काम, घर बार साफ सुथरा करना है, अपने आप को ख्याल कर रखना है, बच्चों को ख्याल करना, ये सब काम है रे मेरे भाई। अपना नखून साफ करना ये सब काम है, अपना दाढ़ी साफ करना, मुस्ताश अपना बनाना, मुस्ताश यानी कि मोच, पहले पहले हाँ पहले लोगों ने ऐसे मोच रखाते थे ऐसे कालम के ढकनागत चल हाँ चलते थे और ऐसे ड्राई करते थे अपना मोच। आज के ज़माने में मोच का ये मोद जो ना है बल्कि बकम बाट के और बाट के मोद है, ये सब समय से चलता है, हो सकता है कि आगे में चल के ये सब कालम का ढकना रखाएगा, इसे हमारे आने वाले पीढ़ी जो है नौजवान लोग। हाँ तो दुनिया में रहना है तो काम करो प्यारो,
1: ये तो सही बात है।
0: हाँ बगैर काम करे हम आज जो सांस लेते वो भी एक काम है, हालांकि वो ऑटोमेटिक चलता है वो भी एक काम है, बगैर काम करे हम एक क्षण नहीं रह सकते, है ना बबली जी?
2: बिना काम के तो एक क्षण नहीं रह सकते, लेकिन आपने अभी बोला कि जो सांस चलता है वो ऑटोमेटिक है, लेकिन जिस दिन सांस बिगड़ जाए उस दिन आप हाल देखो, 5 मिनट नहीं लोग रहते।
3: इस पे यूसुफ भाई आपके क्या राय है, जब सांस बिगड़ जाए तो बबली कहते हैं 5 मिनट 5 साल की तरह लगने लगता है ना?
1: ये तो सही है कि जहाँ रुक गया तो गया,
3: रुक गया
1: तो
3: गया।
2: सांस रुकने से पहले अगर सांस उखड़ जाए हमारी क्या हालत हो जाएगी वो भगवान ही जाने।
0: तब उस समय पे पता चलता हैगा कि एक जीवन का कीमत कितना कितना अनमोल है, एक सांस के इस सांस के जरिए से हमारा ये शरीर है जो चल रहा है, अगर इसका संतुलन बिगड़ जाए, सांस के संतुलन जो बिगड़ जाए तो समझ में आता है कि देखो ये जीवन कितना कीमती है। और तो मासिस जो सब कुछ हो रहा है तो सोचते हैं कि अच्छा चले दे ठीक होगा, मगर उसमें जब कुछ संतुलन बिगड़ जाता है, शरीर में कुछ संतुलन बिगड़ जाता है, तब पता चलता है कि शरीर कितना कीमती है। इसमें आपका क्या राय है संजय जी?
3: मैं इस पे एक गीत चला देता हूँ।

0: ये सुंदर सा गीत जो महेंद्र कपूर के आवाज़ में हम सब सुने। भाई यूसुफ जी, पहले हमने और जब जा कर के STFS पे रिक्लामा आवे तो ये भी सुनने को मिलता था कि ये एक फिल्म इंडिया ओवरसीज और कुछ और कहा जाता था, उसके बारे में आपके कुछ संदेश या उसके बारे में आप कुछ जानकारी है?
1: या वेल, द पारल के वर्तक रहा वो इंडिया ओवरसीज और जसोदरा के रहा द लुक्स फिल्म जो नावत रहा।
0: तो इंडिया ओवरसीज और द लुक्स, व्हाट इज द एसेंस? दिट वार बद्रैफ या फिल्म?
1: ट्वे मस्खपेयो वार दैट
0: दी फिल्म्स बिनब्रख्त ओम ओम अटलांट उदेश में चल सके
1: है। और द पारल लेवत रहा इंडिया ओवरसीज से उसे रहा कॉन्ट्रैक्ट और जसोदरा वाला रहा द लुक्स।
0: और यहाँ भी कहा जाता है कि हिंदुस्तानी के और भी बायोस्कोप थे, तो जैसे कि मेर सौरख में
1: रहा फन द हेयर बालदेव।
0: हाँ,
1: मैं ओकर थिएटर के नाम हम भुलाई गई ली है,
0: डोम्बोरग के वासी लोगन, पर वहाँ बायोस्कोप थिएटर डोम्बोरग एहर जहाँ पारानाम भी होते थे और ऐसे ऐसे भी उसको ऊपर अपने शहरों को नाम भी रखा जाता था ना।
1: हाँ, पारानाम में रहा, डोम्बोरग में रहा,
0: क्वारासांग में, मेरे ख्याल से क्वारासांग
1: लेडिंग कंती रहा, भीम
0: सरमक्का में भी रहा।
1: हमें जहाँ लग पता सरमक्का में रहा है, वो मक्का पर हम ना वो कर पाते, वहाँ हम लोग ढेर शहर से ना ताल्लुक करते थे। द पारल और जसोदरा
0: यही। और कोनिंग स्ट्रीट में भी एक बायोस्कोप होता था,
1: सुन ली लातेर गोयल, हमने नहीं लिबर्टी की कौन सी नाम रहा पता ना है, इगोरा लिंकोलन इगोरा डायमंड लिबर्टी इगोरा डायमंड हुआ लिफोर्नो बतेस्टा फैमिली सोलेमन।
0: ओके, डायमोन, हाँ हाँ, जैसे हमें ये बात, मुझे ख्याल है कि मेरा बचपन में फिल्म जाने का बहुत इच्छा था, तो उस समय पे मेरे ख्याल से चोन्नी में रहा टिकट, पर चोन्नी वाला टिकट पे एकदम आगे बैठना पड़ता था, तो वो लकड़ी के बांगी होते थे जैसे कि नौता में होते थे।
1: ओके,
0: नौता में होते थे ना, लंबा लंबा
1: पिंदा बांगी बोले तरह सर। हम लोग आते तो मारे पार्टेर में
0: हाँ,
1: ऊपर तो रहा।
0: उस समय के टिकट कितना होते थे भुला गए होंगे आप, पर हमें ये ख्याल है कि हाँ कुछ चुन्नी या अठन्नी होते थे तो एकदम आगे बैठना पड़ता था और पूरा फिल्म बैठ करके, और जैसे अब आराम से बैठा जाता है यहाँ जाओ बायोस्कोप में, वो नहीं होते थे
1: ना। हुआ रुस्तख से अपन फिल्म खतीन आदमी लोग जाता रहा, एक्टर है और राज कपूर और दिलीप कुमार, शमी कपूर, देवानंद, प्रेमनाथ, तो और मोई गाना भी मेरा आदमी लोग खनित करते रहा। तो एना हाफ तीन घंटा में, साढ़े तीन घंटा फिल्म संगम देख, साढ़े तीन घंटा रहा,
0: साढ़े तीन घंटा का फिल्म। अब देखा जाए कि भारत में भी अगर जब जावल जा है तो कभी वहाँ भी उसको बड़े बड़े मॉल बन गए ना बबली जी, तो मॉल में भी बड़े बड़े मॉल जो बन गए हैं तो वहाँ पर भी कुछ बड़ा सुंदर रूप से और रखा गया, पर वही भारत में, वही दिल्ली में कहीं जो जा कर के लोकल जो बायोस्कोप है उसमें जब आप जाकर और बैठो तो मज़ा कुछ और होता है, ऐसा है बबली जी कि नहीं?
2: हाँ जी, वो तो है, फ़र्क तो दोनों में है। और भारत में भी पहले सबसे आगे वाली कुर्सी पे बैठने 5 रुपये टिकट होती थी और उससे थोड़ा पीछे 15 रुपये, अगर बालकोनी में बैठना है तो 25 रुपये।
0: ये रुपए की बात हो रहा है। हाँ, और पहला का बात है हो रहा है। और जब देखा जाए कि बायोस्कोप जो इंडिया ओवरसीज और द लिक्स पर, इसमें सिर्फ एक ही दो बायोस्कोप होते थे जो उससे फिल्म लेते थे कि
1: खाली दुई गो रहा मास्क पे, हमें जहाँ लग पता है दुई गो, और द पारल वास खलिंग में क्या बोले है सावित्री हुआ पर ना पराख के जोन रहा पथफावनिका
0: में।
1: हाँ, और फैमिली बालदेव ये सब साथ काम करता रहा, और जसोदरा वाला रहा उसे ताजमहल लोग ये सब साथ करते रहा काम।
0: और मेरे ख्याल से भी निकेरी में भी कुछ बियोस्कोप होते थे और
1: के हुआ के उरा फरते खबर दखर द पारल के अफजे सदरा के वो पता ना है,
0: वो ना पता है
1: जी ना।
0: शांता जी इसमें आप कुछ और, क्योंकि आपने पहला फिल्म जा कर के देखे थे हाथी मेरे साथी,
3: हाथी आते और शांति में,
0: तो
3: और जैसे यूसुफ जी बता रहे हैं ना, तो फिल्म वो सब जहाँ से लाते थे ना भारत से आता था, तब वहाँ पे फ्लैम्बोयंट वीडियोटेक जहाँ था हॉफस्ट्रात में, तो वहाँ पे सब लाकर धरते थे और जेके जेके जहाँ जहाँ पर लेना था ड्राई करना था फिल्म, तो वहाँ पे से आकर फिर से ले जाते थे बड़ा बड़ा डिब्बा में ऐसे पानती धर ले और हाँ रोल में ऐसे धर देवे, जैसे आजकल में कैर्स के तहत में शुक्ला दोन आवे मेंतुन में ऐसे एरो वन दो ऐसे और इसने इसने बड़का बड़का एन बहना दोष नेफा में ही तरह हाँ और लोन तो में ऐसे रोल वन आए फिल्म दराय हुए जो ऐसे खट खट खट दराय हुए या सो है एक क्या पता सो में ही खामा कैंडी में ऐसे कुआं मोक दार हन फिल्म्स हाल ओम नान फरफोल्खंस इन हन बियोस्कोप आफ्टर दरायन फॉर द लिफ्हेबर्स तुंदर टाइट क्या धमाका था वो समय
1: वो वो जहाँ डबल धर देवे मिडनाइट तब देख रे में खड़ा हो अगोरो
3: हाँ
1: जाओ भीतर
3: अब मुझे लगे वहाँ पौस इंतर फाल जो हो तो पौस हो तो चिराग जब भर जा फिर से सब कोई बोले अ अब का है, तो सब कोई जाए बहरे कोई कोला कीने और पहले शौचस था शौचस और कोला ये दो ही चीज बहुत मशहूर था।
0: बियोस्कोप का एक स्पेशल बोतल बनाया जाता था ना, बियोस्कोप का कोला का एक स्पेशल बोतल होता था,
4: भारत में भी ऐसे
1: कोका कोला
2: कोका कोला छोटी बोतल होती थी कोका कोला की। अब भारत में 400 चलते थे, सुरीनाम में कितने चलते थे शांता जी? भारत में थे सुबह 12 से 3, 3 से 6, 6 से 9 और रात वाला 9 से 12, अभी तक ऐसे हैं।
1: अच्छा अच्छा। नाम सुरीनाम में रहा 8 बजे से 12 बजे हाँ, तो 12 फिर और मिडनाइट रहा फिर 9 से तो द्री उर फिर और अतवार के रात डबल एम्पायर करत रहा हाँ मती नहीं दुई दुई वो देवत रहा अपन
3: मती नहीं बोला था मती नहीं जो सबेरे ओफर दाख जो अंदराय होता है सबे सुबह के वक्त अरे दिन में जो अंदराय हो के बोले मती नहीं
0: माती नहीं कहा जाता। शांता जी शायद आपको ख्याल होगा कि एसटीवीएस पे भी नाद न्यूज में बुझा है एक प्रोग्राम आता था रोनी रेंस का, जिसमें वो फिल्मों के बारे में जो कौन बियोस्कोप में कौन फिल्म आने वाले है उसके बारे में अखेंदा
3: हो सकता है मुझे पता नहीं
0: पर रखा जाता था।
3: अच्छा
0: इसमें भी कितने हमारे सुनने वाले हो शायद जिन्हें थोड़ा से ख्याल आता होंगे या आती होंगे
3: तो तुरंत आप तार उठाकर आप तार लगा दो। तार का नंबर कितना संजय जी?
0: तार का नंबर आप मुझसे पूछ रहे हैं पर तार का मालिक होते हैं यूसुफ भाई और मालिक से हम थोड़ा बचा के रहना पड़ता है ना।
1: अच्छा तार का नंबर है 070-362-2077। ये तार पुराना जो आप खुल गया है और we zijn bezig met die andere telefoon, dat is 070-365-2247.
3: Ik bar weer ze herhaal karte to jo aaj pe tar kar sakte.
1: Ha jo 070-362-2077.
3: Ha mere sunne walon aap jhijhkna mat darna mat, aap jo zarur se tar lagao aur hamare sath bhi apna wo purana khayalat jo hai jo hum sab us dino mein guzare hai आप यहाँ हमारे साथ भी बांट सकते हो।

0: यूसुफ भाई वहां पर और क्या कहते
1: सिपोस जो रहा
0: सिपोस
1: पुराना वाला रहा फैमिली बेचान लोग रहा दो तीन भाई लातर आयल है भाई शिव
0: और कौन सा भी उसको का बात
1: दपारल के बाद बताइए
0: दपारल में तो उसमें ये होता था सिपोस के जब अगर आप कोई जान पहचान वाला हो तो बस चुप्पे से अंदर चल जाते थे कि नहीं
1: तनी
0: गोलमाल होता था कभी काल के
1: वहाँ पर रहा मुफरोका राजी सिंह क्लॉक से सब तक तक तक तक सब गिनत रहा ना क्लॉक हुई तब सिपोस के बोला आओ यहाँ और दिमोफरो वॉज हिल स्ट्रेंथ

जी हाँ, सुन लो वालो, यहीं से यह प्रोग्राम ख़त्म है और सब को के मैं शुक्रगुजार हूँ। खुदा हाफिज और नमस्कार।

फन हम हिंदुस्तानी रेडियो के माध्यम से यह कार्यक्रम आपके घरों तक पहुंचाया जाता है। अगर आप भी हमारे साथ देने के वादा करें तो हम यूं ही मस्त नंग में लुटाते रहेंगे। साथ देने के लिए रेडियो फाहून के मेंबर बन जाइए और हमारे कार्यक्रम से आनंद उठाइए। लेट होने के लिए तार कीजिए 9735 तक 3 तक 7 फेटा फाहून हिंदुस्तानी रेडियो।

0: एक फिल्म जो बनाया गया 1973 में, जंजीर 1973 में बनाया गया, जिसमें अमिताभ बच्चन ने और अपना काम किए ना बबली जी।
1: हाँ जी, आपको पता है कि इससे पहले जब ये फिल्म बननी थी तो सब एक्टरों से पूछा, धर्मेंद्र, जितेंद्र, राजेश खन्ना, राजकुमार, सब ने मना कर दिया। क्यों? क्योंकि इस फिल्म में एक भी गाना नहीं था जो एक्टर ने गाया,
0: यानी कि हीरो के लिए कुछ नहीं था,
1: हीरो के लिए गाना नहीं था, इसलिए सब ने मना कर दिया।
0: तो इसलिए सब ने मना कर दिया ये फिल्म को, और तभी अमिताभ बच्चन को और प्राप्त हुआ ये फिल्म करने को।
1: तो अमिताभ बच्चन को फिल्म मिली और फिल्म इतनी हिट बॉक्स ऑफिस में हिट हुई कि अमिताभ बच्चन को एंग्री यंग मैन नाम दिया गया।
0: उस समय पे एंग्री यंग मैन कहा गया अमिताभ बच्चन को।
1: हाँ जी।
0: सुनो वालो, हम एक और सलीम जावट का लिखा हुआ फिल्म जो हम सभी जरूर देखे होंगे, फिल्म का नाम शोले है, और उस फिल्म से एक गीत को और आपके लिए रखने के तैयार हूँ।

0: सुनो लो जब तक है जान मैं नाचूंगी फिल्म शोले से निकाला गया और हेमा मालिनी ने खूब एक्ट किया ना बबली जी।
1: हाँ जी, और जब ये फिल्म बनी थी और उन्होंने नहीं सोचा था कि इतनी बड़ी हिट होगी,
0: क्योंकि ये फिल्म लगातार 5 साल तक वहाँ भी उसको ऊपर में चला ना।
1: हाँ जी,
0: भारत में।

0: भी कुछ कहने वाले थे अभी कुछ पुरानी फिल्म के अंतर्गत।
1: हाँ जी जरूर, मैं बताने वाली थी एक दो जोड़ी बहुत मशहूर हुई थी 70-75 में। एक हुई थी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी की जोड़ी और एक थी सलीम जावेद जी की जोड़ी।
0: सलीम जावेद जी की जोड़ी, क्योंकि ये 2024 में सब दोबारा फिर एक दूसरे को मिलाया गया ना।
1: हाँ जी,
0: और ख़ास करके ये फिल्मी के अंतर्गत जिन्होंने बहुत सा बड़े बड़े फिल्मों मिल करके लिखे थे।
1: हाँ जी, इनकी फिल्में बहुत हिट हुई। ये फिल्मों में लेखक थे, राइटर थे, स्टोरी लिखते थे और इन्होंने शोले, जंजीर जैसी फिल्में बनाई।
0: ऐसे बड़े बड़े फिल्मों में और अपना यानी कि बनाए। हम फिल्म शोले का एक गीत की ओर बढ़ेंगे, सुनो लो।

शोले से निकाला हुआ ये इंस्ट्रूमेंटल, और आप एक गीत की ओर बढ़ेंगे।

0: सुनने वालों, एक फिल्म जो 1975 में बनाया गया, बबली जी ये किस दिन रिलीज किया गया था ये फिल्म जो 1975 में, और ये डायरेक्टर कौन थे इस फिल्म का?
1: 1975 में जो फिल्म बनी उसका नाम था शोले, और 15 अगस्त 1975 को रिलीज हुई। 15 अगस्त यानी भारत का स्वतंत्रता दिवस, इंडिपेंडेंस डे, और इसके डायरेक्टर थे रमेश सिप्पी।
0: भारत में तो दुनिया पे सबसे ज़्यादा फिल्म जो कहा जाता है कि बॉम्बे में बनाया जाता है, एक साल में कुछ 600 फिल्में कहा जा गया है कि बनाया गया, तो ये देखा जाए तो एक दिन में 2 फिल्म भी और बन सकते हैं, पर ये बड़े बड़े फिल्म, आप ऐ सही कितने प्रकार के फिल्म होते हैं ना।
1: हाँ जी,
0: जो बड़े बड़े फिल्में होते हैं तो उसके लिए डेट निकाला जाता है, और हर साल ऐसे 15 अगस्त को भी बड़े बड़े फिल्मों जो और प्रीमियर में जाते हैं, तो 1975 में ये एक बड़ा फिल्म था, रमेश सिप्पी जी ने बनाए थे ना।
1: हाँ जी।
0: कलाकार उनमें?
1: कलाकार थे संजीव कुमार जी, अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र, हेमा मालिनी, और एक नया विलन आया अमजद खान।
0: उस समय के लिए एक नया विलन आया था अमजद खान।
1: हाँ जी, और जो इस फिल्म के डायरेक्टर हैं रमेश सिप्पी जी, उनको लोगों ने बोला कि आप नया विलन क्यों ले रहे हो, क्योंकि ये फिल्म कहीं पिट ना जाए, आपको एक अच्छा मजबूत और विलन लेना चाहिए।
0: तो उस समय के बात है कि जब अजीत आदि जो विलन,
1: अजीत, प्रेम चोपड़ा, प्रेमनाथ,
0: ये लोग जो विलन का रोल करने लगे थे, पर अमजद खान के लिए ये एक नया रोल था जो जिसमें उसका नाम भी रखा गया था गब्बर सिंह ना।
1: हाँ जी, और जो इस फिल्म के लेखक हैं, अरे सलीम जावेद जी, दोनों जोड़ी हैं जिनकी, वो कहते हैं कि हमने जब उनके गांव में, उन्होंने एक कहानी सुन रखी थी गब्बर सिंह, और सच्ची कहानी है, तो इसी के ऊपर उन्होंने गब्बर सिंह, अरे सुझाव दिया डायरेक्टर जी को कि विलन का नाम गब्बर सिंह ही रखना चाहिए।

0: और इस फिल्म को बहुत सारे अवार्ड मिले हैं, फिल्म फेयर अवार्ड, बेस्ट फिल्म, बेस्ट एक्टर।
1: उस समय के लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला था और अमिताभ बच्चन जी उस समय सुपरस्टार बन गया था ना इसी फिल्म से, यानी कि सुपरस्टार का और जो जगह प्राप्त किए थे ना।
0: हाँ जी, लेकिन इनसे पहले उनकी फिल्म आई थी जंजीर,
1: जंजीर में जिससे हाँ पहचाना गया,
0: एंग्री यंग मैन।
1: एंग्री यंग मैन, एंग्री यंग मैन के नाम से पहचाना गया था। तो ये फिल्म शोले का और एक गीत और मैं कोशिश करूंगा रखने के,

0: क्या आपको पता है जब शोले फिल्म के पोस्टर लगे तो उसमें जो राइटर थे सलीम जावेद जी, उनका कहीं नाम नहीं था।
1: उनका कहीं नाम नहीं था तो क्या पोस्टर पे नाम लगाया जाता था उस समय पे?
0: हाँ जी, निर्माता, निर्देशक, संगीतकार, लेखक सबके नाम होते थे।
1: सलीम जावेद का नाम नहीं रखा गया था वो पोस्टर पे, और तो हुआ क्या?
0: तो फिर उन्होंने दोबारा से पोस्टर बनवाए और उस पर अपना नाम लिखवाया।
1: यानी कि पोस्टर पे अपना नाम लिखवाए ये सलीम जावेद का, रिटन बाय सलीम जावेद। ये सुंदर सा फिल्म जो 1975 में जाकर के रिलीज हुआ, और कहा जाता है कि रमेश सिप्पी ने ये बड़ा फिल्म बनाने का फैसला लिया था, पर उनका बजट कहा गया था 1 करोड़ था ना?
0: हाँ जी, उस समय में 1 करोड़।
1: उस समय के लिए 1 करोड़ बड़ा बड़का पैसा होता था।
0: बहुत ज़्यादा, अब भी ज़्यादा है।
1: और पर बनते बनते ये फिल्म बन गया था 3 करोड़।
0: हाँ जी, 3 तक पहुँच गई।
1: और 3 करोड़ हो गया था और ये फिल्म यानी कि बजट से बाहर को और खर्चा हुआ।
0: सही बात।
1: और शुरू शुरू में तो जब प्रीमियर पे आया तो डर गए थे कि ये फिल्म चलेगा नहीं।
0: हाँ जी, तो फिर सब कहते हैं अच्छा 1 हफ्ते तक देख लो कि क्या रिजल्ट निकलता है।
1: तो हफ्ता बाद जब रिजल्ट अभी पूरा नहीं हुआ था, फिल्म बस फिल्म के डायलॉग के माध्यम से फिल्म खूब चल पड़ा ना।
0: हाँ, इतनी लंबी लंबी लाइनें कि लोगों को कितनी, अरे घंटे लाइनों में लगना पड़ता था टिकट लेने के लिए।
1: कितने घंटे लाइनों में लगता था और टिकट लेने के लिए।
0: हाँ जी।

0: बड़ा बोझ है आप पर।
1: लेकिन बेटा, इस बोझ को कोई कुएं में तो फेंक नहीं देता। बुरा नहीं मानना, इतना तो पूछ नहीं पड़ता है कि लड़के का खानदान क्या है, उसके लक्षण कैसे हैं, कमाता कितना है।
0: कमाने का तो यह है मौसी कि एक बार बीवी बच्चों की जिम्मेदारी सर पे आ गई तो कमाने भी लगेगा।
1: तो क्या अभी कुछ भी नहीं कमाता?
0: नहीं नहीं, ये मैंने कब कहा मौसी, कमाता है, लेकिन अब रोज रोज तो आदमी जीत नहीं सकता ना, कभी हार भी जाता है बेचारा।
1: हार जाता है?
0: हाँ मौसी, अब ये कमबख्त जुआ चीज ही ऐसी, अब मैं क्या कहूँ।
1: तो क्या जुआरी है?
0: छी छी छी छी मौसी, वो और जुआरी ना ना, वो तो बहुत ही अच्छा और नेक लड़का है, लेकिन मौसी एक बार शराब पी ली ना, फिर अच्छे बुरे का कहाँ होश रहता है। हाथ पकड़ के बैठा लिया किसी ने जुआ खेलने, अब इसमें बेचारे वीरू का क्या दोष है।
1: ठीक कहते हो बेटा, जुआरी वो, शराबी वो, लेकिन उसका कोई दोष नहीं।
0: मौसी आप तो मेरे दोस्त को गलत समझ रही हैं, वो तो इतना सीधा और भोला है। अरे बसंती से उसकी शादी करके तो देखिए, ये जुए और शराब की आदत तो दो दिन में छूट जाएगी।
1: अरे बेटा, मुझे बुढ़िया को समझा रहे हो, ये शराब और जुए की आदत किसी की छूटी है आज तक?
0: मौसी आप वीरू को नहीं जानती, विश्वास कीजिए वो इस तरह का इंसान नहीं है। एक बार शादी हो गई तो वो उस गाने वाली के घर जाना बंद कर देगा, बस शराब अपने आप छूट जाएगी।
1: हाय हाय, बस यही एक कमी रह गई थी, तो क्या किसी गाने वाली के घर भी आना जाना है?
0: तो इसमें कौन सी बुरी बात है मौसी? अरे गाना सुनने तो राजा महाराजा और ऊंचे ऊंचे खानदान के लोग जाते हैं। हाँ?
1: अच्छा, तो बेटा ये भी बताते जाओ कि तुम्हारे ये गुणवान दोस्त किस खानदान के हैं?
0: बस मौसी, खानदान का पता चलते ही हम आपको खबर दे देंगे।
1: एक बात की दाद दूंगी बेटा, भले 100 बुराइयां हैं तुम्हारे दोस्त में, फिर भी तुम्हारे मुंह से उसके लिए तारीफ ही निकलती है।
0: क्या करूं मौसी, मेरा तो दिल ही कुछ ऐसा है। तो मैं ये रिश्ता पक्का समझूं?
1: पक्का? भले सारी जिंदगी लड़की कुंवारी बैठी रहे, लेकिन मैं ऐसे आदमी से बसंती को नहीं ब्याहने वाली। सगी मौसी हूं, कोई सौतेली मां नहीं।
0: अजीब बात है, मेरे इतने समझाने पर भी आपने इनकार कर दिया, बेचारा वीर ना जाने क्या करेगा।

0: सलीम जावद के लिखा हुआ डायलॉग मौसी का भी कितना सुंदर सा डायलॉग है ना बबली।
1: हाँ जी, मौसी जी का डायलॉग, और वो भी डायलॉग जो धर्मेंद्र टैंकी के ऊपर चढ़ के मौसी को गाली देते हैं।
0: ऐसे उसमें मेरे ख्याल से उस समय पे भी डायलॉग, सिर्फ डायलॉग से एक एलपी भी बनाया गया था ना, वो जो भारत में लोग खरीद सकते थे, वो सूरीनाम में नहीं आया था मेरे ख्याल से। तो लोग लाइन में खड़े हो करके, और सभी डायलॉग जो बनाया गया, जो लिखा गया था और जो आवाज़ में रखा गया था, लोग बहुत पसंद करते थे उस समय पे, और आज भी वो अभी तक लोग भी पसंद करते हैं ना।
1: हाँ, क्योंकि जब मर्जी हो तो डायलॉग सुन सकते हैं।
0: हम एक गीत और, यानी कि सलीम जावद के फिल्म, उसी प्रकार से उन्होंने फिल्म शान मेरे ख्याल से और बनाए लिखे थे।
1: हाँ जी, शान भी थोड़ी शोले की तरह थी, लेकिन वो लोगों ने इतनी पसंद नहीं की जितना शोले पसंद की।
0: शान उतना नहीं चला था मेरे ख्याल से
1: ना, शान से ज़्यादा दीवार चली थी। दीवार भी 1975 में आई।
0: दीवार फिल्म, वो भी सलीम जावद के लिखा हुआ, 1975 में वो रिलीज हुई।
1: हाँ जी, और वो ये एक्शन और क्राइम ड्रामा फिल्म थी।
0: एक्शन क्राइम ड्रामा फिल्म। दीवार फिल्म में भी कुछ सुंदर सुंदर गीतों भी थे ना।
1: गीत भी थे, और ये दो भाइयों की कहानी थे।
0: दो भाइयों की कहानी।
1: हाँ जी, और उसके डायलॉग भी बहुत मशहूर हुए। और एक भाई इंस्पेक्टर होता है, और एक भाई, अरे बाद में पहले छोटे मोटे क्राइम करता है, फिर बाद में बड़ा चोर कह लो या कुछ ऐसे बन जाता है। यानी कि एक अमिताभ बच्चन और शशि कपूर, परवीन बॉबी, नीतू सिंह, इन सब ने इस फिल्म में काम किया था। इस फिल्म में काम किया था अमिताभ बच्चन, शशि कपूर, नीतू सिंह, परवीन बॉबी, निरूपा राय।
2: या चुप रहूं
3: ना,
2: दिल में मेरे आज क्या है?
3: क्या है?

सुनने वालों, ये फिल्म दीवार से निकाला गया ये सुंदर सा गीत उसी समय के बात है जब सलीम जावद का जोड़ी थे तो बनाया गया फिल्म शान, और फिल्म शान से ये निकाला गया ये सुंदर सा गीत मैं प्लेयर पे चुन करके रख चुके हैं।

यहाँ तक जो मेरे हिस्से के कार्यक्रम हमने और आपके लिए प्रस्तुत किया। हमारे साथ दिए बबली आसरा जी भी और मैं हूँ आपका सेवक संजय, और यही आशा रखता हूँ कि आपका कार्यक्रम भी कुछ न कुछ रूप में अच्छा लगा होगा। हम फिर मिलेंगे। नमस्कार।

फन हंट हिंदुस्तानी रेडियो के माध्यम से यह कार्यक्रम आपके घरों तक पहुंचाया जाता है। अगर आप भी हमारे साथ देने के वादा करें तो हम यूं ही मस्त नंग में लुटाते रहेंगे। साथ देने के लिए रेडियो फाहून के मेंबर बन जाइए और हमारे कार्यक्रम से आनंद उठाइए। लेट होने के लिए तार कीजिए 9735 तक 3 तक 7 फेटा फाहून हिंदुस्तानी रेडियो।

1970 में बनाया गया एक फिल्म जिसमें जाकर के हेमा मालिनी, देवानंद और प्राण ने अपने कला से प्रदर्शन किया, क्राइम एक्शन फिल्म। जिसमें देवानंद और प्राण दो भाई जो बिछड़ जाते हैं, ओ बाबुल प्यारे, लता मंगेशकर जी की आवाज में, ग्रेट सॉन्ग ऑफ द फिल्म जॉनी मेरा नाम 1970। सुन वालों, मैं हूं संजय और आपके साथ जुड़ गए हैं

जाता है कि यदि प्लान आ काम नहीं कर रहा तो कोई बात नहीं, अभी 25 और भी लेटर बचे हुए है, ट्राई करते रहना। सुनने वालों, और भी सुंदर सुंदर गीतों के साथ मैं आपके साथ जुड़े रहेंगे, और बॉलीवुड सॉन्ग्स में से निकाला गया जो अगला गीत हम अपने प्लेयर पे चुन करके रखे हुए हैं।

फन हंट हिंदुस्तानी रेडियो के माध्यम से यह कार्यक्रम आपके घरों तक पहुंचाया जाता है। अगर आप भी हमारे साथ देने के वादा करें तो हम यही मस्त नंग में लुटाते रहेंगे। साथ देने के लिए रेडियो फाहून के मेंबर बन जाइए और हमारे कार्यक्रम से आनंद उठाइए। लेट होने के लिए तार कीजिए 9 7 3 5 6 7 20 7 फाहून हिंदुस्तानी रेडियो।

कुछ रिश्तों को मुलाकातों की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बस याद आते ही चेहरों पर मुस्कुराहट आ जाती है। सभी सुनने वालों को मेरी ओर से नमस्कार।

मैं हूँ आपकी सेविका बबली आसरा। मैं आप सबके लिए प्रोग्राम लेकर आई हूँ जिसका विषय है स्वप्न विज्ञान।

सपने तो हम सबको ज़रूर आते हैं, कभी अच्छे सपने तो कभी बुरे सपने। अच्छे सपनों में हम खुश होते हैं, बुरे सपनों में हम डर जाते हैं। सपने भी बहुत प्रकार के होते हैं सुनने वालों। सपने हमें क्यों आते हैं, सपनों का मतलब क्या है, सपनों से जुड़ी और भी बहुत सी जानकारी, जिसे सुनकर आप सबको कुछ ना कुछ जानकारी अवश्य प्राप्त होगी।

आज हम विचार करेंगे शकुन विचार, और आज हम करेंगे कुत्ते के ऊपर शकुन विचार। कुत्ता, गमन समय जोशवन, फर फर दे कान, तुरंत यात्रा टाल दो, अशुभ शकुन पहचान। यानी कि इसका मतलब है कि जब हम गमन यात्रा पर जा रहे हैं और सामने से फरफर करता हुआ कुत्ता दिखाई दे तो अपनी यात्रा को तुरंत टाल देना चाहिए। शकुन यात्रा में कुत्ते को शकुन रतन कहा जाता है। देवराज इंद्र शर्मा के कर्तव्य पालन से प्रसन्न हुए और गिद्ध को क्रोधित होकर श्राप दिया कि तू रिश्वत के वशीभूत होकर कर्तव्य से विमुख हो गया था, इसलिए इस विश्वासघात का परिणाम तुम्हें अवश्य भोगना होगा। तुम भविष्य में मृत प्राणियों का भक्षण करोगे और प्राणियों को तुम्हारा दर्शन अशुभ फलदायक होगा। इसके साथ ही शर्मा को वरदान दिया कि तुम कर्तव्य निष्ठा के कारण समस्त गृहस्थी प्राणियों में सम्मान प्राप्त करोगी।

विद्वानों का मत है कि प्रेतग्रस्त व्यक्ति को देखकर कुत्ता अवश्य भौंकता है। श्वेत वर्ग वाला कुत्ता विप्र, रक्त वर्ण वाला क्षत्रिय, पीत वर्ण वाला वैश्य और कृष्ण वर्ण वाला शूद्र कहलाता है। यदि गमन कर्ता के सम्मुख श्वान सुनने वालों, जैसे हम यात्रा पर जा रहे हैं और कुत्ता आगे से आ गए तो क्या होता है? दाहिने पैर से दाहिना अंग खो जाता है तो उत्तम फल मिलता है। बाएं पैर से दाहिना अंग खो जाए या बाएं पैर से बाएं अंग खो जाए, अशुभ फल मिले। जमाई ले, मल अथवा मूत्र का त्याग करें, निर्धबी होकर जमीन पर लेट जाए, यात्रा कार्य में विघ्न, असफल। जिन वृक्षों पर अंकुर फूल लगे हों, जिनमें दूध निकलता हो, गंदे पानी से भरा मटका, गोबर, खेत, ईंट, मंदिर, अन्न के समूह, भंडार, अन्य शोभायुक्त स्थान या वस्तु पर कुत्ता मूत्र त्याग करता दिखे, अनेक प्रकार के लाभ।

सुनने वालों, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि कुत्ता अगर हम यात्रा पर जा रहे हैं, अगर रास्ते में दिखाई दे, अगर वो अपना दाहिने पैर से दाहिना अंग को खुजलाता है तो हमें उत्तम फल प्राप्त मिलता है, और अगर बाएं पैर से दाहिना अंग खुजाए तो उससे हमें अशुभ फल मिलते हैं। सुनने वालों, अगर हम यात्रा पर जा रहे हैं, वो जमाई लेता है यानी उबासी आती है उसको, मल मूत्र का त्याग करता है तो यात्रा कार्य में विघ्न आने वाले हैं, तो यात्रा को स्थगित कर देना चाहिए। सुनने वालों, और जिन वृक्षों पर फूल लगते हैं, फल लगते हैं, दूध निकलता है और पानी से भरा मटका या गोबर या खेत कुछ भी दिखाई दे और वहाँ पर कुत्ता यानी मूत्र त्याग करे तो वो उससे लाभ प्राप्त होता है। सुनने वालों,

आसन, छत्र, छाया, भीड़ या धूल के ढेरे ढेर पर मूत्र त्याग करें तो धन की प्राप्ति होती है। सुनने वालों, ओखली, मूसल, कांजी से भरे पात्र, सूप पर अपने दाहिने अंग को उठाकर मूत्र त्याग करें तो बहुत सा धन प्राप्त होता है। सुनने वालों, मुख में रोटी, पूरी, मिठाई, फल, मांस आदि दिखे सदा ही धन का लाभ होता है। सुनने वालों, ऊंचे स्थान पर बैठकर अपने दाहिने पैर से अपने मस्तक को खुजाता है तो सभी कार्यों में सफलता प्राप्त होती है। सुनने वालों,

सुनने वाले, मैंने आपको ये जितनी भी बातें बताई, अगर ये सब कार्य कुत्ता करता दिखाई दे तो उन सब कार्यों में धन प्राप्ति होती है और सभी कार्यों में सफलता मिलती है। अब हम आगे चलते हैं सुनने वालों। दूध अथवा जल के पात्र को देखकर आंख मीच ले, बाद में उसी स्थान पर सो जाए, वस्त्र भूषण का लाभ। सोता हुआ गर्दन ऊंची करके देखें, अर्थ हानि असफलता। कीचड़ से सना हुआ मुख में पत्थर अथवा हड्डी लेकर आ जाए, यात्रा में चोरी का भय। मुख में हड्डी लेकर भौंके, मृत्यु समकष्ट। समुख आया कुत्ते की पूंछ कटी, कान कटे। रोगी दुर्बल हो, चिंता हो, भयतुर हो, असफलता की प्राप्ति। जल से बाहर निकलकर अंग हल्लाता हुआ, चोरी का भय।

सुनने वालों, मैंने आपको बताया कि दूध अथवा जल के पात्र को देखकर कुत्ता अपनी आंखें बंद कर ले और बाद में उसी स्थान पर सो जाए तो वस्त्र आभूषण का लाभ मिलता है। सुनने वालों, अगर सोता हुआ कुत्ता गर्दन ऊंची करके देखे तो उसमें असफलता मिलती है। सुनने वालों, अगर कुत्ता कीचड़ से सना हुआ है और मुख में पत्थर अथवा हड्डी को लेकर आए तो यात्रा में चोरी का भय होता है। सुनने वालों, मुख में हड्डी लेकर भौंके तो उसमें असफलता प्राप्त होती है। सुनने वालों, जल से बाहर निकलकर अंग हिलाता है तो चोरी का भय होता है। सुनने वालों,

घर से बाहर निकलते हैं तो कुत्ता बार बार भौंके तो राज्य दंड का भय तथा चोरी का भय। घर में घुसकर खंभे को आलिंगन करे अथवा चूल्हे पर चढ़ जाए तो प्रियजन से समागम। पिछले पैर को अगले से खुजाए सभी कार्यों में सफलता। बहुत देर तक आकाश गोबर मांस विष्ठा को देखता रहे तो सुंदर स्त्री धन का लाभ। अर्धरात्रि में उत्तर मुख होकर भौंकता है तो ब्राह्मण को बाधा किसी प्रियजन का मरण हो। रात्रि के अंत में ईशान मुख होकर बोले औरतों का गर्भपात बलात्कार की दुर्घटना अग्नि कुंड से जन धन हानि।

सुनने वालों, अगर हम घर से बाहर जा रहे हैं और कुत्ता भौंक रहा है तो इसमें हमें राज्य दंड कि हमें किसी चीज़ के चोरी का भय भी होता है, कोई हमारा चोरी कर लेगा या फिर हमें किसी चीज़ की सज़ा मिल जाएगी। और घर में घुस कर अगर खम्भे को पकड़े या चूल्हे पर चढ़ जाए तो हमारे प्रियजन से मिलन होता है। पिछले पैर को अगले से खुल जाए तो सभी कार्यों में सफलता प्राप्त होती है। बहुत देर तक आकाश, गोबर या मास्ट को देखता रहे तो सुंदर स्त्री का लाभ होता है और धन का लाभ प्राप्त होता है। सुनने वालों, अर्धरात्रि में उत्तर मुख होकर भौंकता है तो ब्राह्मण को बाधा मिलती है और किसी प्रियजन का मरण का समाचार सुनाई देता है। अगर रात्रि के अंत में ईशान मुख होकर बोले तो औरतों का गर्भपात, बलात्कार की दुर्घटना और अग्निकुंड में जल हानि ये सब प्राप्त होते हैं। सुनने वालों,

अब हम आगे बढ़ते हैं सुनने वालों। प्रातः अग्निकोण में सूर्य को देखकर भौंके, अग्नि या चोरी का भय। दिन के मध्य में भौंके, मृत्यु का भय। सायंकाल में भौंके, लड़ाई झगड़े में रक्तपात। सायंकाल में सूर्य की तरफ मुख करके रोए, महान दुख। किसी भी घर में बार बार दीवार कूदे, निश्चित रूप से चोरी। घर के द्वार पर सिर रखकर स्त्री को देखे और कू कू करे, स्त्री को रोग। सुनने वालों, इन सब का ये मतलब है कि जब सूर्य की किरणें सुबह धरती पर पड़ती हैं और कुत्ता उसे देखकर भौंकता है तो अग्नि या चोरी का भय होता है, यानी आग लगने का खतरा या फिर चोरी का डर लगता है सुनने वालों। और दिन के मध्य में भौंके तो मृत्यु का भय, और सायंकाल शाम को भौंके तो लड़ाई झगड़े में, लड़ाई झगड़ा यानी ऐसे सुनने को मिलता है। और शाम रात को भौंके और फिर महान दुख। और किसी भी घर में बार बार दीवार कूदें तो निश्चित रूप से उस घर में चोरी का भय, चोरी का डर है। और घर के द्वार पर सिर रखकर किसी स्त्री को देखे और कुकू की आवाज़ करें तो इससे स्त्री को किसी भी रोग का खतरा रहता है सुनने वालों।

घर के भीतर धीरे करके मुख बाहर निकाल कर किसी स्त्री को देखे और ऊंचा स्वर करे, स्त्री के व्यभिचरणी का संकेत। मांस हड्डी भोज्य को राख के ढेर में छुपाए, अग्नि भय परवासी के पीछे आकर रोए, मृत्यु भय की संभावना। परवासी को कूकू करता हुआ बार बार आलिंगन करे तथा उसकी प्रदक्षिणा करे, अवश्य ही कारगार में जाना पड़ता है। गोबर से लिपे चौक में आकर बोले, अति संपदा प्राप्त। सुनने वालों, अगर कुत्ता किसी के घर की स्त्री को देखकर ऊंचे स्वर में बोले तो स्त्री के व्यभिचरण का संकेत मिलता है। अगर मांस हड्डी भोज्य को देखकर राख के ढेर में छुपाता है तो उससे अग्नि का खतरा रहता है। सुनने वालों, अगर प्रवासी के पीछे रोए, अगर कोई अरे प्रियजन आता है और उसके पीछे पीछे जाए तो मृत्यु की संभावना रहती है। अगर प्रवासी को कुकू करता हुआ बार बार उसके गले मिले और उसकी प्रदक्षिणा करे तो अवश्य ही उसको जेल में जाना पड़ता है। और गोबर से लिपे चौक में आकर बोले तो बहुत सारा धन प्राप्त होता है। सुनने वालों, अब हम एक गीत की ओर बढ़ते हैं।

सुनने वालों, अभी आप लोगों ने गीत सुना। अब गीत के बाद हम फिर आगे बढ़ते हैं। मैं आपको आज बता रही थी कि स्वप्न विज्ञान और उसमें कुत्ते के शकुन और अपशकुन। अब हम आगे चलते हैं सुनने वालों। कुत्ता अगर जगह को खो दे तो महान कष्ट, एक आंख से रोए कल्याण और शुभ, परवासी के आगे मूत्र करके आ जाए कार्य में असफलता, फल मुख में दबाकर गर्भवती महिला के सम्मुख आ जाए तो निश्चित रूप से पुत्र प्राप्ति, गमन करता के सम्मुख आए धन धन्य की प्राप्ति, परवासी के आगे दोनों कानों को फड़फड़ाए दोनों नेत्रों को नचाए मृत्यु सम कष्ट, परवासी के आगे अपने दक्षिण ओरों को बार बार चाटे उस व्यक्ति की 5 दिन में मौत। सुनने वालों, अगर कुत्ता किसी जगह को खोदता है तो महान कष्ट होता है, अगर कुत्ता एक आंख से रोता है तो कल्याण और शुभ की प्राप्ति होती है, परवासी के आगे मूत्र करके आ जाए तो कार्य में असफलता की प्राप्ति होती है। सुनने वालों, फल मुख में दबाकर गर्भवती महिला के सम्मुख आ जाए और निश्चय रूप से उस स्त्री को पुत्र की प्राप्ति होती है। सुनने वालों, गमन कर्ता के सम्मुख आए तो धन की प्राप्ति होती है। सुनने वालों, प्रवासी के आगे दोनों कानों को फड़फड़ाए यानी दोनों कानों को हिलाए और दोनों आँखों को नचाए तो मृत्यु का समय कष्ट होता है। सुनने वालों, प्रवासी के आगे अपने दक्षिण ओरों को बार बार चाटे उस व्यक्ति की 5 दिन में मौत की संभावना होती है। सुनने वालों,

तो मैं आप सबको बता रही थी कि कुत्ते के बारे में कि अगर कुत्ता हमारे सामने आ जाए या सपने में आ जाए तो उससे क्या हानि होती है और क्या लाभ होते हैं सुनने वालों। अब मैं आगे बढ़ती हूँ सुनने वालों। उदार को बार बार चाटे उसी दिन यमलोक की प्राप्ति। रोगी के सम्मुख अपनी पूँछ तथा अपना हृदय स्थल बार बार चाटे या सूंघे 2 या 3 दिन में उसकी मृत्यु। यदि कोई किसी से प्रश्न कर रहा हो और उसी समय कुत्ता आंगन में आकर सो जाए फल की सिद्धि नहीं होती। किसी रोगी के सम्मुख कानों को फड़फड़ाकर शरीर समेट कर सो जाए रोगी शीघ्र यमलोक को चला जाता है। यदि रोगी के सम्मुख देह को समेट कर दोनों नेत्र बंद करके मुंह फड़फड़ा लंबा श्वास छोड़े यमराज रोगी को अपनी गोद में ले लेता है। किसी घर में जिसमें रोगी हो किसी मुर्दे का कोई अंग लेकर या रस्सी मुख में लेकर प्रवेश करे रोगी निश्चित उसी दिन मर जाएगा।

सुनने वालों, इन सब बातों का ये मतलब है कि कुत्ता बार बार अपने को चाटे तो उसी दिन यम लोग की प्राप्ति होती है सुनने वालों। और रोगी के सम्मुख यदि कुत्ता अपनी पूंछ अपने हृदय से बार बार लगाए, चाटे या सूंघे तो यो दो या तीन दिन में रोगी की मृत्यु हो जाती है। यदि कोई किसी से प्रश्न कर रहा हो और उसी समय कुत्ता घर के आंगन में आकर सो जाए तो फल की प्राप्ति होती है सुनने वालों। किसी रोगी के सम्मुख दोनों कानों को अगर हिलाता है और शरीर को समेट कर सो जाता है तो रोगी सीधे यमलोक को चला जाता है सुनने वालों। यदि रोगी के सम्मुख अपने शरीर को समेट कर और दोनों आंखें बंद करके और लंबा श्वास छोड़ता है तो यमराज रोगी को अपनी गोद में ले लेते हैं सुनने वालों। किसी घर में जिसमें रोगी हो या किसी मुर्दे का कोई अंग लेकर या किसी मुख में लेकर प्रवेश करें तो रोगी निश्चित उसी दिन मर जाएगा सुनने वालों।

प्रवासी के सम्मुख फिष्टा या सुंदर वस्त्र का टुकड़ा लेकर आगे आकर भाग जाए तो उत्तम वस्तु की प्राप्ति होती है। सुनने वालों, थोड़ी दूर साथ चलकर पीछे लौट जाए, बहुत धन मिलने। प्रवासी के सम्मुख पुष्प लेकर आए, अति विपुल संपदा मिले। यदि वह श्वन काला हो, कार्य नाशक का सूचक। प्रवासी के संग दो बाई ओर चले, सुंदर स्त्री तथा धन प्राप्ति। यदि दाहिनी ओर चले, चोरी से धन की हानि। प्रवासी का जूता लेकर भाग जाए या किसी और को लेकर आ जाए, निश्चित ही चोर धन चुरा ले जाएगा। सुनने वालों,

वह कुत्ता यात्री के सम्मुख बैठ जाए और सुंदर वस्त्र का टुकड़ा लेकर, तो इसका मतलब है उत्तम वस्तु की प्राप्ति, कि उसे कोई अच्छी वस्तु प्राप्त होगी सुनने वालों। और कुत्ता अगर थोड़ी दूर चलकर पीछे वापस लौटाए तो बहुत सारा धन मिलता है सुनने वालों। और अगर कुत्ता फूल लेकर आए अति विपुल संपदा और बहुत सारे धन प्राप्त होता है सुनने वालों। अगर सुनने कुत्ता बाईं ओर चले तो सुंदर स्त्री और धन दोनों की प्राप्ति होती है सुनने वालों। और यदि कुत्ता दाहिनी ओर चले तो चोरी से धन की हानि, के हमारा धन कोई चुरा लेगा सुनने वालों। प्रवासी का जूता लेकर भाग जाए या किसी को लेकर आगे आ जाए तब भी चोर को धन चुरा लेगा सुनने वालों।

यात्री के समक्ष ताज़ा हड्डी लेकर आए शुभ, सूखी चमड़ी हड्डी लेकर आए अशुभ, अपने शरीर को बार बार खुजाए कार्य में असफलता, दाई और जोड़ा साथ लेकर चले या आलिंगन करे तो स्त्री या धन की प्राप्ति, दाई ओर से बाई ओर को घुमाता हुआ चला जाए संग्राम में पराजय कार्य का नाश, क्रोधित होकर आगे बढ़े श्राप एवं बंधन मिलता है, कान फड़फड़ा कर घर में प्रवेश करे राजा धन छीन ले, गमन अथवा प्रवेश समय युद्धरत युद्ध में पराजय, प्रवासी को देखकर क्रोध से घूर घूर करे या भय से भौंके निश्चित रूप से धन हानि।

अगर कुत्ता यात्री के आगे पीछे ताज़ा हड्डी लेकर घूमे सुनने वालों, तो उसका मतलब है कि शुभ प्राप्त होते हैं, शुभ समाचार प्राप्त होता है सुनने वालों। और सूखी चमड़ी हड्डी लेकर आए तो अशुभ समाचार प्राप्त होता है सुनने वालों। अगर कुत्ता अपने शरीर को बार बार खारिज करता है तो कार्यों में असफलता प्राप्त होती है। दाई और जोड़ा साथ लेकर चले और तो स्त्री या धन दोनों की प्राप्ति होती है सुनने वालों। और कुत्ता दाई ओर से बाई ओर घूमता हुआ चले तो संग्राम में पराजय और कार्य का नाश होता है सुनने वालों। क्रोधित होकर आगे बढ़े, श्राप एवं बंधन मिलता है। कुत्ता अरे क्रोध से गुस्से से आगे दौड़ा आए तो उससे श्राप मिलता है सुनने वालों। अगर कुत्ता अपना कान फड़फड़ा कर घर में प्रवेश करे तो राज धन सब छीन जाता है सुनने वालों। अगर कुत्ता घर में प्रवेश करे या रात में तो युद्ध में पराजय, तो युद्ध में हानि मिलती है सुनने वालों। और अगर कुत्ता यात्री को देखकर क्रोध से घुर घुर की आवाज़ करे या भौंके तो निश्चित रूप से उससे धन की हानि होती है सुनने वालों। अब हम एक गीत की ओर बढ़ेंगे।

सुनने वालों, जो भी आपने गीत सुना वो गीत अमिताभ बच्चन की फिल्म का था। अब हम आगे बढ़ते हैं सुनने वालों। प्रवासी के सम्मुख अपनी पीठ को सूंघ कर दांत अथवा नख से वस्त्र खींचे, धन का लाभ। प्रवासी के बाएं अथवा पीठ पीछे क्रूर शब्द करे, युद्ध में पराजय। एक आगे और पीछे भोंके, अनेक दुख। पैरों को सूंघे, शीघ्र यात्रा गमन हो। जीभ से दाएं अंग को चाटे या खुजाए, कार्य सिद्ध। जीभ से पेट को छुपाए, लाभ। विष्टा करे या जमाई ले, चिंता से मुक्त। याद रखें, प्रवासी पुरुष हो तो कुत्ते का दाया अंग और प्रवासी कन्या हो तो कुत्ते के बाएं अंग को चेष्टाएं अनुकूल और शुभ होने वाली होती हैं। इसके विपरीत पर प्रतिकूल फल मिलता है। सुनने वालों, जो अभी मैंने आपको बताया तो इसमें ये था कि अगर हम यात्रा पर जा रहे हैं और कुत्ता यात्री की पीठ को सूंघे और अपने नखों से वस्त्र खींचे तो धन का लाभ होता है। सुनने वालों, अगर यात्रा पर अगर कोई जा रहा है और कुत्ता उसके पीछे पीछे क्रूर शब्द करे यानी जोर से बोले तो युद्ध में पराजय होती है, और अगर पीछे पीछे भोंके तो अनेक दुख प्राप्त होते हैं। सुनने वालों, अगर पैरों को सूंघे तो शीघ्र यात्रा गमन हो, तो शीघ्र यात्रा पर चले जाना चाहिए। जीभ से दाएं अंग को चाटे या खुजाए तो कार्य सिद्ध होते हैं। सुनने वालों, जीभ से पेट को छुए तो लाभ मिलता है। सुनने वालों, विष्टा करे या जमाई ले तो चिंता से मुक्त, तो चिंता सारी दूर हो जाती है। सुनने वालों,

फल ले जाते हुए बाई ओर, घर आते दाई ओर मिले उपज अच्छी। जुआरी को जुआ खेलने जाते दाई ओर मिले जुए में अत्यधिक लाभ। उसी को दाई ओर अंगड़ाई लेता, नींद लेता, मल त्याग करता, मिले तो लाभ प्राप्त। किसी गर्भवती के दाई ओर भवन में या दीवार पर पेशाब करे पुत्र लाभ। यदि बाएं ओर ऐसा करे पुत्री का जन्म। मूत्र त्याग की बजाय प्रस्तन हो गर्भपात। सुनने वालों, ये सब जितनी भी बातें हैं ये सब स्वपन विज्ञान पुस्तक से निकाली जाती हैं। अब हम आगे चलते हैं। सुनने वालों, अगर कोई किसान हल ले जा रहा है और कुत्ता उसकी बाई ओर आता दिखाई दे तो उपज अच्छी होगी, यानी कि उसकी फसल अच्छी होती है। सुनने वालों, जुआरी को जुआ खेलने जाते हुए दाई ओर कुत्ता मिल जाए तो जुए में उसे बहुत लाभ प्राप्त होता है। सुनने वालों, उसी को दाई ओर अंगड़ाई लेता हुआ, नींद लेता हुआ, मल त्याग करता हुआ कुत्ता दिखाई दे तो बहुत सारा धन प्राप्त होता है। सुनने वालों, और अगर किसी गर्भवती स्त्री की दाई ओर भवन में या दीवार पर पेशाब करे तो पुत्र लाभ, यानी स्त्री को पुत्र की प्राप्ति होती है। सुनने वालों, और यदि बाएं ओर ऐसा करें तो पुत्री का जन्म होता है। सुनने वालों, और मूत्र त्याग की बजाय प्रसन्न होकृत करे गर्भपात। अगर कुत्ता मूत्र त्याग करके प्रसन्न मुद्रा में दिखाई दे तो उस स्त्री का गर्भपात हो जाता है। सुनने वालों,

प्रवासी को नौकरी की तलाश हो उसके दाएं और प्रसन्नतापूर्वक विष्टा करें, विश्वास पात्र नौकर या उदार स्वामी मिले। चुल्लैया ऊंचे स्थान पर दाएं पैसे सिर खुजाए, इच्छित कार्य में सफलता। यदि ऊंचा स्थान मलबे का ढेर हो कार्य सिद्धि। यदि व्यक्ति कहीं जा रहा हो और कुत्ता सोता हुआ सिर उठाकर देखे और कान फड़फड़ाए अशुभ है। मुंह में पत्थर दबाए या मिट्टी उछालते दिखे या हड्डी मुंह में दबाकर घुराते दिखे भयंकर कष्ट। दाएं पैर से दाई आँख खुजाए मित्र आगमन। यदि सर को खुजाए अत्यंत प्रियजन का आगमन। गर्मी में छांव में बैठक घुराता है मित्रों से लड़ाई। प्रवासी को नौकरी की तलाश और दाएं प्रसन्नतापूर्वक विष्टा करें, विश्वास पात्र नौकर या उदार स्वामी मिलता है सुनने वालों। अगर ऊंचे स्थान पर कुत्ता बैठा है और अपने सिर को खुजाता है तो इच्छित कार्य में सफलता मिलती है सुनने वालों। यदि ऊंचे स्थान पर मलबे के ढेर पर बैठा है तो कार्य की सिद्धि होती है सुनने वालों। यदि व्यक्ति कहीं जा रहा हो और कुत्ता सोता हुआ दिखाई दे तो उससे अशुभ लाभ प्राप्त होता है सुनने वालों। अगर मुंह में पत्थर दबाए या मिट्टी को उछालता है या मुंह में हड्डी दबाकर कुत्ता घुराता है तो उससे भयंकर कष्ट प्राप्त होता है सुनने वालों। दाएं पैर से दाई आँख को खुजाए तो मित्र का मिलन होता है सुनने वालों। यदि सर को खुजाए तो प्रियजन का आगमन।

सुनने वालों, जो आज मैंने आप सबको बताया कुत्ते के शगुन अपशगुन के बारे में, ये पुस्तक स्वप्न विज्ञान से लिया गया और इसके लेखक है डॉक्टर जगदीश गौतम जी।

बिना स्वार्थ के किसी का भला करके देखे, आपकी तमाम उलझने ऊपर वाला सुलझा देगा। सभी सुनने वालों को मेरी ओर से नमस्कार। मैं हूँ आपकी सेविका बबली आसरा। सुनने वालों, मैंने आप सबको जो आज का कुत्ते के बारे में बताया, तो आशा रखती हूँ कि आपको उसमें से कुछ ना कुछ ज्ञान जरूर मिला होगा। सभी सुनने वालों को मेरी ओर से नमस्कार।

वैकुंठा महाकाय सूर्यकोटी संप्रभा निर्विधिनम कुरु मे देवा सर्व कार्यशु सर्वदा। रुब्ररू मिलने का मौका नहीं मिल पा रहा, अथ शब्दों से अपनों को नमन कर लेता हूँ। प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी रूप में श्रेष्ठ होता है, इसलिए आपकी श्रेष्ठता को हृदय से नमस्कार करता हूँ। ये फाउन हिंदुस्तानी रेडियो है और हम सब यहाँ से कार्यक्रम ज्योति का प्रकाश लेकर आपके साथ जुड़ गए हैं, जो होलांद डेन हाग शहर से ब्रॉडकास्ट किया जाता है। हमारे साथ शांता खेमई जी भी है और बबली आसरा जी भी है, और अभी दूर से सही पर भारत से हमारे मास्टर जी राजेंद्र सिंह जी भी जुड़ने वाले हैं इस कार्यक्रम में। तो दोस्तों, हम पहले बबली आसरा की ओर बढ़ेंगे, फिर शांता खेमई अपना एंट्री लेते हैं।

की खूबसूरती कहीं से भी मिले चुरा लो, क्योंकि चेहरे की खूबसूरती तो उम्र के साथ बदल जाती है, मगर विचारों की खूबसूरती हमेशा दिलों में अमर रहती है। सभी सुनने वालों को मेरी ओर से नमस्कार।

हाँ सुनने वालों, अभी आपने सुने संजय जी और संजय जी से बात आप सुने बबली जी की और मेरी है, मैं तो शांता जी हूँ। तो शुरुआत करने से पहले और आगे बढ़ने से पहले ये ज़रूर कहूँगी कि कदम कदम चाहे छोटे हो या बड़े, मंजिल को पाने के लिए बस चलते रहना वो ज़रूरी है। स्वीकार कीजिए सभी का शांता की प्यार भरी राम राम प्रणाम।

0: सुनने वालों हमारे साथ जुड़ गए हैं राजेंद्र सिंह जी जो भारत देश से और हम हमारे साथ जो कार्यक्रम में और सहयोग देते हैं। तो राजेंद्र जी आप अपना एंट्री लीजिए और फिर कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं।
1: यहाँ पे सब लोग खुशी से हैं, सबको दिक्कत नहीं है। तो फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के सभी श्रोताओं को हम सब लोग का भारत से हार्दिक शुभकामना और अभिनंदन। आज जो हमारा विषय रहेगा वो बहुत ही बढ़िया विषय रहने वाला है, जो कि नया विषय है और उस विषय के जो बारे में बातचीत रहेगी

0: सुनने वालों, यहाँ तक जो कार्यक्रम में ये सुंदर सा गीत रखा गया हरिओम सरन से, हम सब जो उन्हीं के गाया हुआ गीत जो हम सब हर बार ये कार्यक्रम में रखते हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं भारत से और राजेंद्र सिंह जी, जो अभी हम सब के लिए अपने ओर से संदेश रखने वाले। तो राजेंद्र जी, जरा आप अपना संदेश हम सब के लिए और रखिए।
1: एक कहानी के माध्यम से हम और जो सीखेंगे, वो आज की जो कहानी है वो वीर बर्बरीक की। बर्बरीक यानी जो महाभारत का युद्ध था वो इतना बलशाली था कि वो कहता था कि जो तरफ कमज़ोर पड़ जाएगी मैं उसी तरफ से युद्ध जीतूँगा। और भगवान कृष्ण जानते ही थे कि अगर बर्बरीक कौरवों की तरफ चले गया तो युद्ध जीतना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए बर्बरीक को पहले ही किनारा कर देना चाहिए। तो कहते हैं, यदा यदा हि धर्मस्य निर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य सदात्मानं सृजाम्यहम्। साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवानि युगे युगे। बात करते हैं वीर बर्बरीक की। हिसार में एक पीपल का पेड़ है जिसको वीर बर्बरीक ने श्री कृष्ण भगवान के कहने पर अपने बाणों से छेदन किया था। आज भी इन पत्तों में छेद है। सबसे बड़ी बात यह है कि जब इस पेड़ में नए पत्ते निकलते हैं तो उनमें भी छेद होता है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इसके बीज से उत्पन्न नए पेड़ के भी पत्तों में छेद होता है। यह पीपल का पेड़ महाभारत काल की घटना का प्रत्यक्ष प्रमाण है। और जो लोग रामायण और महाभारत जैसी घटनाओं को काल्पनिक करार देते हैं एवं यह कहते हैं कि इन घटनाओं को मानने वाले लोग काल्पनिक दुनिया में जीते हैं, उन लोगों के लिए यह किसी जोरदार तमाचे से कम नहीं होगा। यानी जो लोग ये सोचते हैं कि ये सब चीज़ काल्पनिक है, मतलब नहीं हुई है और ऐसी कहानी गढ़ी गई है, तो ये सब चीज़ जगह जगह देखे देख के आएँ और फिर तभी उनको समझ में आएगा। इसलिए कहते हैं कि जोरदार तमाचा की तरह है ये। जिन्होंने थोड़ी भी महाभारत पढ़ी होगी उन्हें वीर बर्बरीक वाला प्रसंग जरूर याद होगा। उस प्रसंग में कुछ हुआ यूं कि महाभारत का युद्ध आरंभ होने वाला था और भगवान श्री कृष्ण युद्ध में पांडवों के साथ थे, जिससे यह निश्चित जान पड़ता था कि कौरव सेना भले ही अधिक शक्तिशाली है लेकिन जीत पांडवों की होगी। ऐसे समय में भीम के पौत्र तथा और घटोत्कच के पुत्र बर्बरीक ने अपनी माता को वचन दिया कि युद्ध में जो पक्ष कमज़ोर होगा वह उनकी ओर लड़ेगा। इसके लिए बर्बरीक ने महादेव को प्रसन्न करके उनसे 3 अजेय बाण प्राप्त किए थे, परंतु भगवान श्री कृष्ण को जब बर्बरीक की योजना का पता चला तब वे ब्राह्मण का वेश धारण करके बर्बरीक के मार्ग में आ गए। श्री कृष्ण ने बर्बरीक को उत्तेजित करते हुए उसका मजाक उड़ाया कि वह 3 बाणों से भला क्या युद्ध लड़ेगा। कृष्ण की बातों को सुनकर बर्बरीक ने कहा कि उसके पास अजेय बाण हैं और वह 1 बाण से ही पूरी शत्रु सेना का अंत कर सकता है तथा सेना का अंत करने के बाद उसका बाण वापस अपने स्थान पर लौट आएगा। इस पर श्री कृष्ण ने कहा कि हम जिस पीपल के पेड़ के नीचे खड़े हैं, अगर अपने बाण से उसके सभी पत्तों को छेद कर दो तो मैं मान जाऊंगा कि तुम 1 बाण से युद्ध का परिणाम बदल सकते हो। इस पर बर्बरीक ने चुनौती स्वीकार करके भगवान कृष्ण का स्मरण किया। बर्बरीक ने चुनौती स्वीकार कर ली और स्मरण करा भगवान का और बाण चला दिया, जिससे पेड़ पर लगे पत्तों के अलावा नीचे गिरे पत्तों में भी छेद हो गया। इसके बाद वो दिव्य बाण भगवान श्री कृष्ण के पैरों के चारों ओर घूमने लगा, क्योंकि 1 पत्ता भगवान ने अपने पैरों के नीचे दबा कर रखा था। भगवान श्री कृष्ण जानते थे कि धर्म रक्षा के लिए इस युद्ध में विजय पांडवों की होनी चाहिए और माता को दिए वचन के अनुसार अगर बर्बरी कौरवों की ओर से लड़ेगा तो अधर्म की जीत हो जाएगी। इसलिए इस अनिष्ट को रोकने के लिए ब्राह्मण वेशधारी श्री कृष्ण ने बर्बरीक से दान की इच्छा प्रकट की। जब बर्बरीक ने दान देने का वचन दिया तब श्री कृष्ण ने बर्बरीक से उनका सिर मांग लिया, जिससे बर्बरीक समझ गया कि ऐसा दान मांगने वाला ब्राह्मण नहीं हो सकता। और बर्बरीक ने ब्राह्मण से वास्तविक परिचय मांगा तब श्री कृष्ण ने उन्हें बताया कि वह कृष्ण हैं। सच जानने के बाद भी बर्बरीक ने सिर देने स्वीकार कर लिया, लेकिन एक शर्त रखी कि वह उनके विराट रूप को धारण, जो उनका विराट रूप है, उनको देखना चाहता है तथा महाभारत युद्ध को शुरू से लेकर अंत तक देखने की इच्छा रखता है। भगवान ने बर्बरीक की इच्छा पूरी करते हुए सुदर्शन चक्र से बर्बरीक का सिर काटकर सिर पर अमृत का छिड़काव कर दिया और एक पहाड़ी के ऊंचे टीले पर रख दिया, जहां से बर्बरीक के सिर ने पूरा युद्ध देखा। ये सारी घटना आधुनिक वीर बर्बरान नामक जगह पर हुई थी, जो हरियाणा के हिसार जिले में है। अभी जाहिर सी बात है कि इस जगह का नाम वीर बर्बरान, वीर बर्बरीक के नाम से ही जान पड़ता है। तो इस प्रकार से जो बड़े अच्छे सुंदर प्रसंग हैं, ज्योति के प्रकाश का लक्ष्य यही है कि लोगों को अधिक से अधिक प्रसंग और नई से नई जानकारी मिले और ज्ञान बढ़े। और जो हमारे पौराणिक या पुरातत्व विभाग और जो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम, और हमारा जो खोजी विभाग है जो ढूंढ ढूंढ के लाता है और लोगों तक जानकारी पहुंचाता है, तो मुझे लगता है कि सब लोगों को बड़ा अच्छा लगता होगा इस प्रकार की जानकारी पाने के लिए। और क्यों ना संजय जी एक सुंदर सा नगमा की ओर बढ़ते हैं और फिर मिलते हैं आगे का कार्यक्रम की ओर।

0: बोलो।
1: सुनने वालों, मैं आपको बता रही थी, एक 70 वर्षीय डॉक्टर, और उनको एक दिन वो सुबह उठे और उनको पेशाब करने में थोड़ी दिक्कत हो रही थी, तो उन्होंने अपनी एक महिला दोस्त को फ़ोन किया जो भी पहले डॉक्टर थी। तो मैं आगे बढ़ती हूँ, तो उन्होंने क्या सलाह दी अब वो बताएंगे। उनकी महिला डॉक्टर ने कहा, ओह आपका मूत्राशय भर गया है और कोशिश करने पर भी आप मूत्र त्याग नहीं कर पा रहे, चिंता ना करें, जैसा मैं बता रही हूँ वैसा ही करें, आप इस समस्या से छुटकारा पा जाएंगे। और उसने निर्देश दिया, सीधे खड़े हो जाइए और ज़ोर से बार बार कूदिए, कूदते समय दोनों हाथों को ऊपर यूं उठाए रखो मानो आप किसी पेड़ से आम तोड़ रहे हैं, ऐसा 10 से 15 बार करें। बूढ़े डॉक्टर ने सोचा, क्या सचमुच मैं इस स्थिति में कूद पाऊँगा? इलाज थोड़ा संदिग्ध लग रहा था, यानी मुश्किल लग रहा था, फिर भी डॉक्टर ने कोशिश की। 3 से 4 बार छलांग लगाने पर उन्हें पेशाब की तलब लगी और उन्हें राहत मिल गई। उन्होंने इतनी सरल विधि से समस्या को हल करने के लिए अपने मित्र डॉक्टर को धन्यवाद दिया, अन्यथा उन्हें अस्पताल में भर्ती होना पड़ता, मूत्राशय की जांच, इंजेक्शन, एंटीबायोटिक्स आदि के साथ साथ कैथेटर लगाना होता। उनके और करीबी लोगों के लिए मानसिक तनाव के साथ लाखों का बिल भी होता।
2: हाँ सुनने वालों, तो यहाँ से बबली जी कितने शानदार तौर से, आसान तौर से हमको बताए, पर हम सोचते हैं इसको थोड़ा अपनी ही भाषा में बता दे ताकि हम और अच्छे तरह से समझ जाए। तो जैसे हमने समझी है, जो बबली जी ने कहा है कि मूत्र आसूनित कन प्लस आस्तात अंबी जो ओपोन्थोतेस्तनिक मकलक प्लस द एसरोकन ऑपरोसिंग दर फोर वाते क्या बखरे बबली जी। तो बबली जी कहते हैं कि अपना दोनों हाथ ऊपर कर ले जैसे आम तोड़ना हो ना।
1: हाँ जी शांता जी।
2: और 2-3 बार कूदना है।
1: हाँ 10-15 बार कूदिए।
2: ओ हाँ 10-15 बार बबली जी, 2 बार नहीं 10-15 बार आप थोड़ा से कूदना दोनों हाथ ऊपर करके जैसे हैंड्स अप करके।
1: सही बात शांता जी।
2: हाँ 2-3 बार ऐसे कूदना तो जो
1: आपका ये चीज बंद हो जाती है तो खुल जाती कूदने से शांता जी।
2: हाँ जो रुकावट है।
1: हाँ रुकावट है जो भी
2: तो
1: है
2: वो रास्ता बन जाता है ताकि आप आसान से पेशाब कर सकें।
1: सही बात शांता जी।
2: हाँ हाँ संजय जी कुछ कहना चाहते हैं?
3: जरूर मैं कहना चाहूँगा कि ऐसे कुछ बातें हो जाते हैं और शांता जी जैसे कि कुछ अवस्था पे हो जाता है, पर कोई लोग की जवानी पे भी ऐसा हो सकता है ना, कोई जैसे कि नीर सीन आदि हो जाता है
2: तो
3: और ब्लॉकेर हो जाए है। और बड़ा मैंने ऐसे इसके बारे में सुना है कि दर्द होने लगता है
2: जी।
3: और ख़ास करके जैसे कि अभी बबली जी ने सुनाई कि एक इसे शायद हर बार और सभी कोई इससे और सुलाव ना मिल पावे ना, पर फिर भी यह हमारे जो खोजी से ना खोज करके और ये संदेश रखते हैं तो शायद किसी किसी के इससे और उनके जो दर्द है उनका और जो निकल्स यानी कि दच फरहोल पर बैंत वत ख़ास करके इस पे रखा गया है कि हम दौड़ जाते हैं और हॉस्पिटल और हॉस्पिटल में जहां आप एडमिट हुए तो वहां मीटर जो पैसा वाला है वो चालू हो जाता है। जैसे कि आप पेट्रोल पंप में जाए और पेट्रोल पंप और जैसे कि गाड़ी से जुड़ गया तो वहाँ पर मीटर होता है वो चलने लगता है और वो नीचे के कभी नहीं जाता है, वो आगे के सिर्फ ऊपर की ओर जाते हैं। तो दोस्तों ये बात हो जाता है कि हमारे कार्यक्रम को सुनने वालों इस समय जो एंडहोफ शहर से सुन रहे हैं और हमारे भाई जी सभी को हार्दिक से अभिनंदन करते किया जा रहा है और हमारा ख़ास करके जो मिड फन अटलांट और जा करके और उत्रेख आदि में जो कार्यक्रम को सुनते और एक व्यक्ति जिसका नाम मुझे नहीं पता है पर ये कह रहा है कि मैं गाड़ी में बैठ कर के सुन रहे हूँ, तो भाई जी आपको भी बहुत सा और फाउन हिंदुस्तानी रेडियो द्वारा नमन किया जाता है और हम सब अपना संदेश रखते रहेंगे। आप बस सुनते रहना और संदेश कभी जब आवाज़ थोड़ा मध्यम रहे ना तो आपको पता है कि कौन सा बटन आपको राइट बगल घुमाना है। सुनने वालों हम एक गीत की ओर बढ़ेंगे और गीत के बाद अभी जो संदेश हम सब आपके लिए और भी रखने वाले हैं सुनते रहना, क्योंकि ज्योति का प्रकाश का लक्ष्य यही है कि हमारे जीवन का ज्योति जो जीवन का ज्योत जल रहा है उसमें और प्रकाश आए।

0: हाँ तो हम यहाँ से वापस आ गए एक गीत के बाद और जारी करेंगे सुनने के लिए बबली जी की आवाज में।
1: शांता जी,
0: हाँ जी,
1: 55 साल से जो लोग ऊपर हो जाते हैं,
0: हाँ,
1: तो उनके लिए कुछ और भी समस्याएं होती हैं और जिनका समाधान हम कर सकते हैं। वो सोचते हैं कि 60 साल की ऊपर होने पर हम फुर्तीले हैं, ताकतवर हैं, पर वास्तव में ढलती उम्र के साथ शरीर उनका ताकतवर नहीं रहता। शांता जी,
0: बात तो सही है।
1: और उनको कुछ ऐसे उपाय बताने जा रही हूँ, टिप्स यानी
0: जी,
1: कि जिससे शायद उनको कुछ फ़ायदा हो।
0: ज़रूर से
1: कोशिश करूँगी,
0: क्योंकि सभी का उम्र तो ढलते है ना, तो जो जिसका उम्र अभी नहीं है 60 साल के और जो भी सुनते हैं, तो उनके लिए भी ये एक सावधानी, एक टिप है, ताकि जब वो भी 60 साल के होंगे तो ज़रूर से इस्तेमाल कर अपने जीवन में प्रयोग कर सकें।

55 साल से ऊपर के लोगों का शरीर ढलान पर होता है, जिससे हड्डियां व जोड़ कमज़ोर होते हैं, पर कभी कभी मन भ्रम बनाए रखता है कि यह काम तो मैं चुटकी में कर लूँगा। पर बहुत जल्दी सच्चाई सामने आ जाती है, मगर एक नुकसान के साथ। सीनियर सिटीजन होने पर जिन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कुछ ऐसी टिप्स हैं।

धोखा तभी होता है जब मन सोचता है कि कर लूँगा और शरीर करने से चूक जाता है। परिणाम एक एक्सीडेंट और शारीरिक क्षति। यह क्षति फ्रैक्चर से लेकर हैंड इंजरी तक हो सकती है, यानी कभी कभी जानलेवा भी हो जाती है। इसलिए जिन्हें भी हमेशा हड़बड़ी में काम करने की आदत है, बेहतर होगा कि वे अपनी आदतें बदल डालें।

0: बबली जी, आपने बहुत सही कहा है, कही है। हमको भी ध्यान देना चाहिए पुरुष लिंग और स्त्रीलिंग के बारे में। हाँ, बहुत सही तरह इस तरह से आपने कही है कि जो हम हड़बड़ी में करते हैं उस पर हमको ध्यान देना चाहिए, ताकि वो उसको हम जो कैसे फेव द फर्स्ट नैलिंग जो बहुत जल्दी हम करते चाहते हैं उसको हमको हाल फेर में करना चाहिए। हाँ, आधे में
1: जल्दी वाला काम धीरे धीरे करना चाहिए। शांता जी
0: बिल्कुल, एगो छोटे से उदाहरण, जैसे हम पानी भी पीते हैं ना, एक जग मुँह में गिलास लगता है या बोतल, तो एक बार में वो बोतल या गिलास खाली हो जाता है। पर ऐसे नहीं चाहिए पीने के लिए, घूट घूट चाहिए।
1: सही बात, अगर जल्दी जल्दी पानी पीते हैं कई बार अचानक पेट में भी दर्द होने लग जाता है।
0: बिल्कुल,
1: मैंने देखा है।
0: हाँ, तो हम आगे बढ़ते हैं सुनने के लिए।
1: भ्रम ना पालें, सावधानी बरतें, क्योंकि अब आप पहले की तरह फुर्तीले नहीं रहे। छोटी सी चूक कभी बड़े नुकसान का कारण बन जाती है। सुबह नींद खुलते ही तुरंत बिस्तर छोड़कर खड़े ना हों, क्योंकि आंखें तो खुल जाती हैं मगर शरीर व नसों का रक्त प्रवाह पूर्ण चैतन्य अवस्था में नहीं हो पाता।
0: बिल्कुल सही कहा आपने बबली जी, ये भी हमारे डॉक्टरों भी कहते हैं, योग लेरार भी कहते हैं कि अगर हम सुबह जल्दी से जो जाग जाते हैं तो आंखें सिर्फ खुलते पर बदन तो अभी तो थोड़ा आलसी में रहते हैं, और खून के वृक्क या ब्लड स्ट्रोम जो है वो अभी उतना एक्टिव नहीं होते हैं। और वो भी कहते हैं कि अगर जल्दी से हम उठ जाए तो ये भी होता है कि हमको चक्कर आता है, आ जाते हैं और हम गिर सकते हैं।
1: सही सही बोला शांता जी।
2: ये बात हो जाता है बबली जी कि ऐसा होता है हर साल में कितने लोग का, और इसी कारण जो घर से अकेला रहता है ना और एक ही दायन में छलांग लगा कर के खड़े हो जाता है और चक्कर आ जाते हैं और फिर गिर जाते हैं, फिर कभी गलत और गिर भी गए, सिर में चोट लग गया, तो कितने लोग का भी मृत्यु ऐसा हो सकता है। तो दोस्तों इस बात पे ध्यान दो कि हमें जरूर ध्यान देना चाहिए कि हम जब अपने सोने के और ये सोने
0: जागने के बाद
2: ये तो चांदी वाला सोना हो गया था, तो दोस्तों ये वाला नहीं। पर आप अगर उठे तो जरूर अपने आराम से, जैसे कि यहाँ पर संदेश जो हमारी खोजी सेना ने खोज करके रखे हैं, तो उस पे ध्यान देना।
0: मेरे ख्याल से अगर जो जागे सुबह में जो जागे तो अपना हथेली को देखे, अपना सिर को थोड़ा सिरहा ले, अपने गाल को थोड़ा से सिरहा ले, या फिर से बैठ कर अपना घुटनों को थोड़ा से सुलहा ले, धरती को ताक ले, आसपास भी देख ले, तब जाकर तो उठो, तो वो रक्त जो है, खून जो ब्लड स्ट्रोम जो है वो नॉर्मली सेर हो जाएगा, तो अब ये चक्कर आने के लिए तो वो तो दूर रहेगा।
1: मैं भी कुछ कहना चाहती हूँ शांता जी, मैं ये सोचती हूँ कि बैठे बैठे थोड़ा भगवान का नाम भी ले सकते हैं।
0: हाँ वो तो है। हाँ

हाँ, तो घड़ी की तरफ देखे तो घड़ी भी इशारा कर रहे है कि हमको विज्ञापन चलाना है। तो विज्ञापन यहाँ से हम सुनेंगे, उसके बाद हम आपसे फिर मिलेंगे और जरूर से बबली जी का आवाज़ में सुनेंगे।

0: हाँ, ये सुंदर सा गीत अगर आपने शब्दों पर जो गौर की होगे तो शब्द या अपने आप सभी कुछ बता दी है, पर हम जरूर से दो बात कहना चाहती हूँ कि नहीं, मैं नहीं कहूँगी, बबली जी आपको
1: कि एक शब्द था शांता जी कि मीठा कम खाएं लेकिन मीठा बोलें।
0: एक वो तो सच है कि और भी कहते हैं कि जैसे खाओ जैसे पियो पानी वैसे बनेगा वाणी, जैसे खाओ अन्न वैसा ही बनेगा मन।
1: सही बात।
0: तो हम अन्न और मन के साथ और मीठा बोली के साथ आगे बढ़ते हैं सुनने के लिए हमारे बबली जी, और आगे क्या फरमा रहे हैं।

सुनने वालों, मैं आप सबको बता रही थी कि 55 साल से ऊपर के लोगों को थोड़ी सी टिप्स। अब हम आगे चलते हैं। बिस्तर पर कुछ मिनट बैठे रहें और पूरी तरह चैतन्य हो लें। कोशिश करें कि बैठे बैठे ही स्लीपर चप्पलें पैर में डाल लें और खड़े होने पर मेज या किसी सहारे को पकड़ कर ही खड़े हों। अक्सर यही समय होता है डगमगा कर गिर जाने का। गिरने की सबसे ज़्यादा घटनाएं बाथरूम, वॉशरूम या टॉयलेट में ही होती हैं। आप चाहे अकेले हो, पति पत्नी के साथ या संयुक्त परिवार में रहते हो, लेकिन बाथरूम में अकेले ही होते हैं। यदि आप घर में अकेले रहते हो तो और अधिक सावधानी बरतें, क्योंकि गिरने पर यदि उठ ना सके तो दरवाज़ा तोड़कर ही आप तक सहायता पहुंच सकेगी, तब जब आप अकेले पड़ोसी तक समय से सूचना पहुंचाने में सफल हो सकेंगे। याद रखें, बाथरूम में भी मोबाइल साथ हो ताकि वक्त ज़रूरत पर काम आ सके।

0: कहते कि बाथरूम में मोबाइल रखना आसान के लिए, तो मैं तो अपने दिमाग से बस घूम रहे थे, देख रहे थे कि कैसे अपना सावधानी के लिए धर मोबाइल पास में रहे ताकि कुछ दिक्कत आने पे तो उसके इस्तेमाल कर सके। हालांकि हम सोचते कि ऐसे कोई दिक्कत ना आवे ना हम पर ना किसी और पर भी, क्योंकि अच्छा नहीं लगता, दर्द बहुत होता है।
1: सुनने वालों, ये बात हो जाता है कि हम रहते हैं हॉलैंड में और यहाँ पर औदरन का जो और घर होते हैं ना, मकान होते हैं, तो उसमें ख़ास करके आज से जब हमें ये ख्याल आ रहा है कि अभी बखेन यार और अभी ताख्तक नहीं था, नहीं एंट यार सैफन तक में हम जो हॉलैंड आए, तो उसी समय पे हम लोग बच्चे थे और घर में जब नाना नानी के घर में तो एक बटन लगाया होता था, तो हम लोग जबरदस्ती बच्चे थे तो दबा दिया जाता था, उसका पता नहीं था
0: अलारम।
1: कि अलार्म था, पर यहाँ पर ऐसे बनाया गया है कि फॉर द औदरन के लिए ख़ास करके कि जो ऑनलाइन वार्निंग आदि में तो वो और उसके पास वो होते हैं, वो सामान होते, पर भारत में जब दिखा जाए सूरीनाम में देखा जाए तो ऐसा व्यवस्था नहीं बनाया गया
0: अभी नहीं है।
1: और जरूर शायद हमारे खोजी सेना के जो खोज करके रखे हुए कि आप अपना मोबाइल पास रहे पर गिरने से और उसे आप बच पाए, कोशिश करना कि गिरने से पहले अगर आपको कुछ भी महसूस होवे
0: तो बैठ
1: तो हाँ अपना आराम से और जा करके इंतजार करे। और जब क्योंकि ऐसा हो रहा है, हम लोग देखते हैं कि कभी कोई सफ़र करके आते हैं ना, सफ़र करके आते हैं प्लेन में से आ करके और जा करके और या ट्रेन में से आ करके उतरते हैं तो जा कर के और शायद कोई अपने लॉगेज अपने कॉफर को इंतज़ार करते हैं, तो कोई इंतज़ार करते हैं कि दूसरा ट्रेन कैसे ले सके, पर वहाँ भी ऐसा होता है कि हम लोग देखते हैं कि लोग अचानक गिर जाते हैं। और यहाँ हॉलैंड में बनाया गया है कि चारों बगल देव रखा गया है ना, जो अगर आपको ऐसा सिचुएशन हो गया तो लोग वहाँ पर आकर के मदद कर सकते हैं, तो ज़्यादा तादाद में हॉलैंड में ऐसे बच सकते हैं लोग। पर हमारे सुनने वालों जो अन्य देशों में ये कार्यक्रम को सुनते हैं तो हर बार ऐसा होता है शायद कभी समय पे मदद

0: थोड़ा खाया पचाया, ज्यादा खाया पछताया।
1: जी हाँ, हम वापस आ गए हैं गाना के बाद। और गाना में तो फिर आपने सुने हैं और जरूर से हंसती मस्ती इसमें आपको भी आए होंगे। और शब्द हम तो क्या कहे, अगर आपने गौर की होगी तो शब्द तो अपने आप ही कह दिए। और ये मुझे अच्छा लगे कि अच्छा खाओ, हेल्दी खाना और बहुत ज़्यादा नहीं खाना ताकि आपको पछताना पड़ेगा। तो ये आपको भी पता हो गया ना कि कभी पेट भर जाते हैं पर मन नहीं भरता, तो दोबारा हम स्कैप करके खा लेते हैं तो बहुत ज़्यादा हो जाता है पेट के लिए। और जब पेट बहुत अधिक भर जाते तो हम बहुत ज़्यादा भी बवेक नहीं कर पाते हैं तो पछताते हैं, तो ये नहीं चाहिए। और जैसे हमने सुना है ना, थोड़ा से कम खाओ ताकि थोड़ा से लुख्त भी जर है माख में, तो पचाने के लिए फरतेर करे खाद भी बहुत आसान हो जाता है।
2: सही बात शांता जी, ये तो है।
1: हाँ अच्छा, तो हम यहाँ से और आगे बढ़ेंगे। इस पे आपको कुछ कहना है संजय जी?
3: मेरे को कुछ नहीं कहना है शांता जी, मुझे तो ये बात हो जाता है कि हम और क्या संदेश अभी और सुनने वाले हैं, क्योंकि बबली जी तो अपना और जो यहाँ पर लेकर के उपस्थित हुए हैं आज का संदेश में, तो बस यही हमारे सुनने वालों भी इस बात के लिए और बेचैन हैं कि अभी और क्या संदेश रखने वाले, क्योंकि आज इस बात को हमें पता चल गया कि किस प्रकार से अगर आपको यूरिनलाइजिंग में जबकि और जा कर के कुछ बझाव आ गया, कुछ मुश्किल आ गया, तो कैसे आप बस यही ऐसे छोटे छोटे और संदेशों से हम अपने आप को कैसे बचा सकते हैं। और भी संदेश बबली जी ने रखे हैं पर